FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की द्वितीय है। तदनुसार 23 जून 2026 बुधवार का दिन है। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ बिनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने

0: बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 6:05 हो चुके हैं। अब आपको बताते हैं आज दिन भर में हमारे कार्यक्रमों का प्रसारण समय और उनका प्रसारण कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत।

अब से कुछ ही समय पश्चात 6:10 पर आप सुन पाएंगे चिंतन। 6:15 का समय होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। इसके पश्चात 6:45 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा गीत बहार। 7:20 पर आप सुन पाएंगे श्री रामचरितमानस गान। 7:30 पर कार्यक्रम नमस्कार चूरू। 8:00 दिल्ली से प्रसारण होगा समाचार प्रभात का। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर आप सुन पाएंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। इसके पश्चात 9:00 आप सुन पाएंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 9:10 पर देशकान। 9:15 का समय कार्यक्रम स्वास्थ्य आपका में आप सुनेंगे भेंट वार्ता। 9:30 का समय होगा फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक। 10:00 का समय आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम का। 11:05 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इसके पश्चात 12:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुन पाएंगे आप उमंग। समय होगा 12:00। 12:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। 1:00 जयपुर से प्रसारण होगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार का। 1:05 पर आप सुन पाएंगे महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला जगत। 2:00 का समय दिल्ली से मिड डे न्यूज का 2:00

बजकर 15 मिनट पर आप सुन सकेंगे दोपहर समाचार और 2:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने। इसके पश्चात सायंकालीन सभा में शाम 5 बजे युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी। 6 बजे का समय होगा दिल्ली से हिंदी में समाचार का। 6:05 पर आप सुन पाएंगे अंग्रेजी में समाचार और 6:20 का समय संस्कृत में समाचार का। 6:10 का समय होगा फिल्मी देशभक्ति गीत का। 6:30 पर जयपुर से प्रसारण होगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार का। 6:40 पर जयपुर से जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुन पाएंगे राजस्थान में प्रादेशिक समाचार। 7 बजे का समय होगा किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी का। इसके पश्चात 7:30 का समय होगा राजस्थानी लोक संगीत का। 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। 8:45 पर आप सुन पाएंगे दिल्ली से समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे News@9 जिसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से ही होगा। और इसके पश्चात 9:15 पर फरमाइश कार्यक्रम होगा मन भावन। रात्रि 10 बजे फोन इन रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा हेलो चूरू। रात्रि 11 बजे दिल्ली से हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण और अब समय है चिंतन का। चिंतन के लिए आज हमारा विचार है पुस्तकें मित्र और सच्ची पथ प्रदर्शक होती है। श्रोताओं, इस विषय पर अगर हम चिंतन करें तो इस चिंतन में हम पाएंगे कि मनुष्य के जीवन में जिस प्रकार से एक अच्छे मित्र का बहुत महत्व होता है, एक सच्चा मित्र हमें सही सलाह देता है, कठिन समय में हमारा साथ देता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, इसी प्रकार से पुस्तकें भी हमारी सच्ची मित्र और पथ प्रदर्शक होती है, क्योंकि पुस्तकों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। बिना किसी स्वार्थ के ये हमें ज्ञान देती है। जब हम अकेले होते हैं तब किताबें हमारा साथ निभाती है, नई नई बातें सिखाती है, हमारे विचारों को विस्तार देती है और जीवन में यही निर्णय लेने की समझ प्रदान करती है। एक अच्छी पुस्तक हमें इतिहास, विज्ञान, समाज,

जीवन के सही रास्ते को पाया। किताबें हमें बताती है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य कैसे रखना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ना चाहिए। पुस्तकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समय और स्थान की सीमाओं से परे होती है। हम घर बैठे दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छी पुस्तक हमारे सोचने का तरीका बदल सकती है और हमारे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकती है। जिस प्रकार एक दीपक अंधेरे रास्ते को रोशन करता है, उसी प्रकार से पुस्तकें हमारे जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। इसलिए हमें पुस्तकों को अपना मित्र बनाना चाहिए और नियमित रूप से अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। अगर आप किसी भी क्षेत्र के सफल व्यक्ति की जीवनी पढ़ेंगे, उसके बारे में जानना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से उसमें आपको पुस्तकों का कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का योगदान दिखेगा। आपको पता चलेगा कि ऐसे महान पुरुष नियमित रूप से एक दो घंटे अध्ययन के लिए दिया करते थे। बहुत से ऐसे विद्वान आपको मिलेंगे जो जब तक अपना जीवन जिए तब तक रोज कुछ न कुछ नया सीखते। किताबों के माध्यम से, किताबें पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमारे पहले जो भी महापुरुष हुए, जो भी व्यक्ति हुए जिन्होंने जिस जिस प्रकार की खोज की, उस सारे ज्ञान की प्राप्ति हमें उन किताबों के माध्यम से हो सकती है। यानी जो संघर्ष करके उन्होंने किसी विशेष बात को जाना समझा, उसको हम उनके द्वारा लिखी गई किताबों के माध्यम से बखूबी समझ सकते हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा संघर्ष हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वो सहज ही हमें एक किताब के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किताबें हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं। जब भी हम पढ़ते हैं तो पढ़ने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और उसमें जब हम अपना दिमाग और इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में हम कुछ और नया खोज कर लाते हैं जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी होता है और कारगर होता है। इसलिए किताबों को अपना मित्र बनाएं। किताबें, पुस्तकें हमारे मित्र और सच्ची पथ प्रदर्शक है। चिंतन में इतना ही और अब समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह के गाए इस भक्ति गीत के साथ।

शुद्ध ओम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जगजीत सिंह और साथियों की आवाज में।

श्रोतों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

दो रास्ते फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और इसे संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत फिल्म का नाम धुंध, गायक कलाकार महेंद्र कपूर, गीत लिखा सापीर ने और संगीत रवि का।

माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ये गीत आप नहीं सुन पाएंगे। सुनवाते हैं आपको दूसरा गीत।

दिल अपना और प्रीत पराई। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने और संगीत शंकर जयकिशन का।

मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, गीत लेखन आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मौसम फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, गीत के बोल गुलजार के और संगीत मदन मोहन का।

श्रोताओं, बाजार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, बोल लिखे मीर ताकी ने, और संगीत था खय्याम का।

उपहार फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं मुकेश की आवाज में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

श्रोताओं, दूसरा आदमी इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत था राजेश रोशन का। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

श्री रामचरितमानस की रचना का आरंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने न केवल अनेक देवों, सज्जनों तथा दुष्टों की वंदना की है, वरन काव्य सृजन में अपनी अक्षमता तथा हर प्रकार से असमर्थता भी प्रकट की है। उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा के दर्शन उनके इस कथन में होते हैं, जो व्यक्ति धन रूपी लोभ, क्रोध और काम के गुलाम है, जो धैर्य की झूठी ध्वजा फहराने के दंभी और कपट के धंधों का बोझ होते हैं, उनमें सबसे पहले गिनती मेरी है। वे ना तो कवि होने का दावा करते हैं और ना ही चतुर और ज्ञानी। कहते हैं, मैं तो अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार प्रभु श्री राम का गुणगान करता हूं। कहां तो प्रभु का आपार चरित और कहां सांसारिक मोह माया में लिपटा मैं और मेरी आसक्ति। सुधी पाठकों तथा श्रद्धालुओं से उनका निवेदन है कि उनकी विनती सुनकर राम कथा सुनते हुए कोई उन्हें दोष ना दे।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:30 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम नमस्कार चूरू का। नमस्कार चूरू का आज का अंक लेकर मैं हूं आपके साथ, आपका साथी राजीव कुमार शर्मा। स्वीकार कीजिए नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत आज करते हैं एक भेंट वार्ता से। केंद्र सरकार के 12 वर्ष, इस विषय पर अमित कुमार की बातचीत राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के साथ। आइए सुनवाते हैं आपको ये भेंट वार्ता।
1: चुरू सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को नमस्कार। साथियों, केंद्र सरकार के 12 वर्ष संपन्न हो चुके हैं। इन 12 वर्षों में देश ने सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य समस्त क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन भी देखे हैं। सेवा, संस्कार, सुशासन, सम्मान, इनके ये 12 वर्ष समर्पित हुए हैं। इन्हीं 12 वर्षों पर किस प्रकार से केंद्र सरकार ने कार्य किया है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ राजनेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजस्थान श्रीमान राजेंद्र राठौड़ साहब को। तो सर, सबसे पहले आपका स्टूडियो में स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। सर, जब हम बात करते हैं विगत 12 वर्षों में, केंद्र सरकार के 12 वर्षों को, तो आप किस प्रकार से इन 12 वर्षों की उपलब्धियों को देखते हैं?
2: मोदी सरकार के 12 वर्ष जनता के विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के। इन 12 वर्षों में हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली। आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था में शामिल हो गई। ब्रिटेन, जिसे हमें 100 वर्ष से ज्यादा समय तक गुलाम रखा, उसको हमने हराकर और जापान की अर्थव्यवस्था को हमने पछाड़ दिया। आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 7.7% की दर से बढ़ रही है। ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जिस प्रकार वातावरण बना हुआ है, युद्ध विराम अभी बड़े लंबे अंतराल के बाद अमेरिका, इजराइल और ईरान का हुआ है, उस वैश्विक आपाधापी के अंदर भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार की विकास दर बने रहना इस बात को सिद्ध कर रहा है कब हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रहा जिसको कभी 5 फ्रेजाइल कंट्रीज में कहा करते थे। नीचे से 5वें नंबर पर अब हमारी अर्थव्यवस्था

0: ऊपर से चौथे नंबर पर आ गई।
1: जी सर, निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ रहा है और हम आशान्वित भी है कि इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास माननीय प्रधानमंत्री का ध्येय वाक्य है और उसको हमने चरितार्थ भी किया है। तो जब हम बात करते हैं सुरक्षा की, तो विगत 12 वर्षों में देश की सीमाएं किस प्रकार से सुरक्षित हुई है?
0: देखिए, इन 12 वर्षों में हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, हमने एयर स्ट्राइक देखा, हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा। इन तीनों ऑपरेशन ने यह सिद्ध कर दिया कब हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद का जीरो टॉलरेंस के साथ समाप्ति की ओर है और जिस किसी ने नापाक इरादे किए उसको नष्ट नबूद करने के लिए हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान की जद में जाकर आतंकवादियों के ठिकानों को समाप्त किया। आज हमारी सेना के पास 65% जो रक्षा उपकरण है वो हमारे स्वदेशी है। आज हम लोग 1,54,000 करोड़ के हमारे यहाँ रक्षा उपकरण बनाकर हम विदेशों को देते हैं। हमारी सेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। आज नब से लेकर अंतरिक्ष तक और थल से लेकर नब तक हमारी सेना दुनिया की उन सेनाओं में शुमार है जिस पर आज हमें खुद को नाज है, हमारे देश को नाज है। हमें इस बात का गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित है बल्कि आम आदमी इस बात को लेकर अपने आप को आत्मविश्वास के साथ अभिमानित महसूस करता है कि हमारी सेना हमारी रक्षा के साथ साथ दुश्मनों के इरादों को समाप्त करने का पूरा बुलंदी हौसला रखती है।
1: जी, 12 वर्ष सम्मान के, जो 12 वर्षों में हमारा देश का अंत आता है उसको सम्मान है वो सरकार ने दिया है, तो किस प्रकार से किसानों के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कार्य किए हैं?
0: देखिए, पहली बार किसान के सम्मान में सम्मान निधि देना, 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को बिना मांगे किसान के सम्मान में फसल बीज के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान राशि पहुंच रही है और राजस्थान में तो एक और अभूतपूर्व काम हुआ। राजस्थान में 76 लाख किसानों के पास 6,000 के साथ साथ 3,000 रुपए की राशि यानी 9,000 रुपए प्रति वर्ष बिना मांगे किसान के खाते में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ा, वन रोप मोर क्रोप का अभियान आगे बढ़ा। आज आधुनिक खेती के साथ हम अपनी परंपरागत खेती दोनों को सामंजस्य बनाकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमारा देश अब अन्न का आयात नहीं निर्यात करने वाला हमारा देश बन गया। हमारा किसान और जिस प्रकार की मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस की राशि बढ़ी है, जो बात कही थी मोदी जी ने किसान की आमदनी दुगनी करने की, आज वो किसान की आमदनी लगभग दुगनी हो गई है। आज जैविक खेती का जमाना फिर एक बार केंद्र सरकार की योजना के अनुसार जैविक खेती को प्रोत्साहन मिल रहा है और मैं तो ये कह सकता हूं कि किसान और किसानी खेत और खलियान के लिए जितनी बड़ी राशि इस बार बजट में प्रावधित की गई है भूतों ने भविष्य पहले कभी नहीं दी गई।
1: जी, निश्चित रूप से जो किसान है उसको अब उसके श्रम का उचित मूल्य भी मिल रहा है और उसको सम्मान भी मिल रहा है। देश सशक्त तभी होता है जब देश की आधी आबादी है उसको भी पूरा मान सम्मान मिलता है। विगत वर्षों में चाहे नारी शक्ति बंधन अधिनियम हो, अन्य अधिनियमों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए गए हैं उन पर हमारे श्रोता साथियों को बताएं।
0: सबसे बड़ी बात है कि हमारी आधी आबादी, हमारी बहनें हर क्षेत्र में, चाहे वो क्षेत्र प्रशासनिक सेवाओं का हो, सेना का हो, व्यापार का हो, हर क्षेत्र में हमारी बहनों ने हमारी बेटियों ने शानदार प्रतिनिधित्व करने का काम किया है। हमारी अर्थव्यवस्था से लेकर हमारी आधारभूत संरचनाओं से लेकर हमारे सेवा क्षेत्र में हमारी महिलाओं का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है और एक नरेंद्र मोदी जी ने जिस लखपति दीदी की बात कही, आज 3 करोड़ से ज्यादा इस देश के अंदर लखपति दीदी है, राजस्थान में भी 16 लाख है। ये वो महिलाएं हैं जो घर की दहलीज के बाहर नहीं निकली थी। आज ये महिलाएं राजीविका के माध्यम से न केवल पैरों पर खड़ी हो रही है बल्कि घर में अर्थव्यवस्था को सहयोग करने में भी सहयोग कर रही है। आज सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर बड़ी संख्या में हमारी बेटियां जुड़ी है। आज सुरक्षा बलों के अंदर महिला अधिकारी और महिला कर्मियों की संख्या इन

0: 12 वर्षों में 3 गुना बढ़ गई है और विशेष तौर पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो दिन दूर नहीं जब संसद में और विधानसभा में हमारी आधी आबादी 33% वहां बैठेगी। मैं समझता हूं ये युग नारी उत्थान का युग, ये युग 21वीं सदी नारी को समर्पित सदी रही है। इसीलिए हमारी वो पुरानी भावना यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमते देवता, ये हमारी देवतुल्य भूमि में इसी प्रकार अब हमारी बहनें आगे बढ़ रही है और वो समृद्धि की ओर आगे बढ़ रही है।
1: जी, जब हमारी बहनें आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से देश भी आगे बढ़ेगा। जब हम बात करते हैं, जब हमारा देश विश्व का सिरमौर बनने की ओर बढ़ रहा है, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव है उनको लौटाने का कार्य भी केंद्र सरकार ने स्थापित करने का कार्य भी किया है, जैसे चाहे राम मंदिर का हो अन्य भी हो, तो किस प्रकार से आप सांस्कृतिक जागरण के रूप में आप इसको मान सकते हो?
0: मोदी जी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कही थी और ये कहा था कि हमारी संस्कृति हमारा गौरव है और हमारी संस्कृति में चाहे वो हमारी धर्म संस्कृति हो और चाहे हमारी सामाजिक रूप से हमारी परंपराएं हो, विरासत और विकास, उसका शानदार संतुलन अगर कहीं देखने को मिला तो मोदी जी की सरकार में मिला। वर्षों पुराना वो संघर्ष, रामलला का मंदिर बनना हो चाहे काशीनाथ कॉरिडोर बनना हो, मैं समझता हूं कि हमारी विरासतें, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कई पुराने देवी देवताओं की मूर्तियां वर्षों पहले विदेशों में चली गई, उनको लौटाने से लेकर और हमारे हर धर्म और धर्म के साथ जुड़े अध्यात्म को आगे बढ़ाने में इस समय जो वातावरण बना है, और मैं समझता हूं कहते हैं धर्म की जड़ हरी होती है, आज इसी कारण से सरकार हर मोर्चे पर लगातार आगे बढ़ती जा रही है। हमारी संस्कृति को एक वैभव मिला है, पहचान मिली है। अभी आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, 177 से ज्यादा देश ने हमारे साथ उस योग जो परंपरागत रूप से हमारी जीवन संस्कृति का अंग था उसके साथ जुड़ने का काम किया। ये कमाल है दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी।
1: जी, निश्चित रूप से जो भारत है वो पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। जहाँ पर भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं उस देश में अपने देश का झंडा है वो बुलंद होता है। जिस प्रकार से अभी हाल ही में जब पेरिस यात्रा हो या G7 का समिट हो, उसमें जिस प्रकार से भारत को जो रिस्पॉन्स मिला है वो निश्चित रूप से हमारे लिए उत्साहवर्धक है। तो आने वाले समय में भारत की वैश्विक भूमिकाएं किस प्रकार रहेगी?
0: देखिए, अब भारत दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ चुका है। G20 के अंदर वासुदेव कुटुंबकम की बात मोदी जी ने कही, 20 शक्तिशाली देशों ने उसमें सहमति व्यक्त की। आज दुनिया के 32 समृद्धिशाली देशों ने अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया। यही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत लगभग 15 देशों की संसद के अंदर मोदी जी ने अपनी बात उन लोगों के बीच में रखी, उनका स्वागत किया। और आपने देखा होगा अमेरिका के राष्ट्रपति जी की, ट्रंप की वो बदली हुई भाषा सुनी होगी, जिन्होंने कहा कि मोदी इस दुनिया के शानदार कामयाब नेता है। मोदी जी जहां भी जाते हैं वो देश मोदीमय हो जाता है। मोदी जी ने जिस पर यूक्रेन का युद्ध चल रहा था उसमें रूस और यूक्रेन को युद्ध विराम करके ऑपरेशन गंगा के माध्यम से हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निकालकर अपने देश से कुशल के लेकर वो आए। मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर अब भारत का डंका बज रहा है। आज भारत की हर चीज की ओर दुनिया आकर्षित हो रही है। आज चाहे योग का हो और चाहे वैक्सीन का हो, आपने देखा होगा वैक्सीन इजाद हमने पहली बार कोरोना में की। इससे पहले हम वैक्सीन को दूसरे देशों से मंगाया करते थे, टीकाकरण के काम में हम कई वर्षों पीछे चला करते थे, अब उसमें भी हम अग्रणी रूप से आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी, जब हम बात करते हैं विगत 12 वर्षों में तो समय भी काफी चुनौतीपूर्ण रहा था, जिसमें हमने 2 या 3 साल कोरोना का विकृत समय भी देखा था, जिसमें भारत ने विश्व को दिखाया किस प्रकार से बीमारी से डटकर सामना भी किया जा सकता है। जब हम बात करते हैं विकास की, तो 2047 में हमें अगर विकसित भारत बनना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती बहुत जरूरी है। जो केंद्र सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां चाहे रेलवे हो चाहे रोड, इसमें किए जा रहे कार्यों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं।
0: देखिए, मोदी जी के समय के अंदर हमारे आधारभूत संरचनाओं में जितनी अधिक राशि का उपयोग किया गया उतनी पहले कभी नहीं हुई। हमारी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा आज हमारे आधारभूत संरचनाएं, जिनमें चाहे रेलवे

0: स्टेशन की कायाकल्प हो, नए एरोड्रम बनाने की बात हो, नए एम्स और नई आईआईटी बनाने की बात हो, हमारा नेटवर्क राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी आज 1,46,000 किलोमीटर से आगे बढ़ चुका है। हम हर क्षेत्र में, मैं ये कह सकता हूं कि आगे बढ़ने का काम हमारे इस देश के अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारे आधारभूत संरचनाओं ने किया है, और इसीलिए आज हम हर क्षेत्र के अंदर और हमारे बजट के अंदर भी आप देखेंगे हमारी अर्थव्यवस्था को और विशेष तौर पर हमारे आधारभूत संरचनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या के अंदर राशि का प्रावधान किया गया जो इससे पहले कभी नहीं किया गया।
1: जी, सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान के जो 12 वर्ष है उनमें मोदी सरकार ने लगातार जो अंतिम छोर तक व्यक्ति है उसका सम्मान है उसको बनाए रखा है। तो कार्यक्रम के अंत में आप केंद्र सरकार के 12 वर्षों पर आम जन है, श्रोता हूं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, ये 12 वर्ष हिंदुस्तान के बदलाव के हैं, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान के हैं। हमारे 25 करोड़ से ज्यादा भाई गरीबी की रेखा के ऊपर आ गए। गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं आज 81 करोड़ गरीब हिंदुस्तानियों के पास आज भी मुफ्त में अनाज पहुंच रहा है। आज हिंदुस्तान हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, और अभी एक बड़ा साहसिक कार्य दुनिया के लोकप्रिय नेताजी ने किया, मोदी जी ने किया, सिंधु घाटी का वो समझौता जो 1960 के अंदर नेहरू अयूब खान के बीच में हुआ था उसको रद्द करके उस सिंधु का पानी इस हिंदुस्तान के किसानों की किस्मत बदले, इस काम को भी बेखूबी से किया है। मैं समझता हूं कि बदलाव का यह समय, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान का समय, जहां आज सबसे ज्यादा स्टार्टअप हमारे यहाँ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हिंदुस्तान बाजी मार रहा है, अंतरिक्ष के अंदर हम चंद्रमा के उस छोर पर उतर गए जहां आज कोई देश नहीं गया, आज डिजिटल लेन देन में हम पहली पायदान पर आ गए। मैं समझता हूं जिस प्रकार हमारी रेलवे बदल रही है, हमारा एयर स्पेस के अंदर हमारी दखलंदाजी हो रही है, ज्ञान विज्ञान में हिंदुस्तान का नाम हो रहा है, विकास में हिंदुस्तान का नाम हो रहा है, ये हिंदुस्तान अब दुनिया के अंदर पहली पायदान पर जाने के लिए आतुर है। आज हिंदुस्तान का टैलेंट, आज हिंदुस्तान का नौजवान, आज हिंदुस्तान का किसान, आज हिंदुस्तान का जवान सब राष्ट्रीय भावनाओं से उत्प्रेरित होकर इस देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये कमाल है मोदी जी का, जिन्होंने कहा था सबका साथ ले रहे हैं, सबको विश्वास में ले रहे हैं, सबके प्रयास को शामिल करके हिंदुस्तान का विकास कर रहे हैं। आओ हम सब मिलकर एक नागरिक के तौर पर हमें हमारे जो संवैधानिक कर्तव्य है उनको हम पूरा करें, देश की समृद्धि में, देश के विकास के अंदर एक नागरिक के तौर पर हम भी राष्ट्रवाद की उस भावना के साथ आगे बढ़े, यही आज के दिन की आवश्यकता है। हमें गर्व है कि हमारा जिस प्रकार का नेतृत्व हमें मिला है वो दुनिया के अंदर किसी दूसरे देश के पास नहीं। हम बदलते हुए इस परिवेश में हम भी अपने किंचित मात्र सहयोग के लिए जितना हमसे बन पड़े हमें करना चाहिए। ये राष्ट्र, ये हमारा मान है, हमारा अभिमान है, और इस अभिमान को और आगे ले जाने के लिए हम भी लगे। बहुत धन्यवाद श्रोताओं, कुछ बातें मैंने कही, कुछ बातें कह नहीं पाया, पर आप सब लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है। आज एयर स्पेस के अंदर और विशेष तौर पर अचानक आपने बुलाकर मुझसे जो बातें की और कुछ लोगों से जुड़ने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
1: जी सर, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर जो बातें और जो मार्गदर्शन आपने दिया है, निश्चित रूप से प्रत्येक आम श्रोता है उससे लाभान्वित भी होगा और हर व्यक्ति का ये दायित्व भी रहता है। आकाशवाणी परिसर में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, केंद्र सरकार के 12 वर्ष। इस विषय पर राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ से बातचीत कर रहे थे अमित कुमार। श्रोताओं, आज 23 जून है और आज के दिन की विशेषता यह है कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के महान शिक्षाविद, राष्ट्रवादी चिंतक, राजनेता और समाज सेवी थे। उनकी पुण्यतिथि हर वर्ष आज ही के दिन मनाई जाती है। ये दिन उनके योगदान, विचारों और देश के प्रति उनके समर्पण को याद करने का अवसर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी प्रसिद्ध शिक्षाविद थे

बचपन से ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी पढ़ाई में बहुत प्रतिभाशाली थे। कम उम्र में ही शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई और कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपतियों में से वो एक बने। राजनीति में आने के बाद उन्होंने देश की एकता, शिक्षा और राष्ट्रीय हितों से जुड़े विषयों पर सक्रिय भूमिका निभाई। वे स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री भी रहे। बाद में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो आगे चलकर भारतीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण धारा बनी। डॉक्टर मुखर्जी का मानना था कि भारत की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई और एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान, इस विचार का पुरजोर विरोध किया। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने 1953 में जम्मू कश्मीर में उनको गिरफ्तार किया गया और उसी वर्ष 23 जून 1953 को उनका निधन हुआ। उनका जीवन राष्ट्र सेवा, शिक्षा और सिद्धांतों के प्रति समर्पण का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। उन्होंने हमेशा युवाओं को ज्ञान, चरित्र और देश हित के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें याद करते हुए हम उनके विचारों से ओतप्रोत हो सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि शिक्षा, ईमानदारी और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी, इससे समाज को बेहतर बनाया जा सकता है और अपने जीवन की सार्थकता को साबित किया जा सकता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन हमें सिखाता है कि मजबूत विचार, दृढ़ संकल्प और देश सेवा की भावना किसी भी व्यक्ति को इतिहास में अमर बना सकती है। आज के दिन की विशेषता की बात कर रहे हैं तो आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे भी मनाया जाता है। ये दिवस उन लोगों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो समाज और देश की सेवा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस की शुरुआत लोक सेवाओं के महत्व को पहचान देने और युवाओं को सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से की थी। लोक सेवा किसी भी देश के विकास की नींव होती है। सरकारी कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और इसी प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े लोग जनता के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी जिम्मेदारी केवल नौकरी करना नहीं है, बल्कि समाज की समस्याओं का समाधान करना और लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना भी होता है। इस दिवस का उद्देश्य है कि सार्वजनिक सेवाओं में ईमानदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा मिले, समाज के कमजोर वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, युवाओं में सेवा भावना और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो और लोक सेवकों के अच्छे कार्यों को सम्मान दिया जाए, उन्हें सम्मानित किया जाए। भारत जैसे विशाल देश में लोक सेवा का महत्व तब और भी बढ़ जाता है क्योंकि करोड़ों लोगों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास की योजनाएं पहुंचाने में सार्वजनिक सेवाओं की बड़ी भूमिका होती है। लोक सेवा का अर्थ केवल सरकारी कार्य नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और मानव कल्याण की भावना है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हमें यह संदेश देता है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है जब उसके नागरिक और सेवक मिलकर ईमानदारी, समर्पण और सेवा भावना के साथ कार्य करें। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही

0: पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी चुरू से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चुरू। हमारा अगला प्रसारण आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से 8 बजे, जिसमें पहले सुनेंगे आप समाचार प्रभात और उसके पश्चात 8:15 पर आप सुन पाएंगे मॉर्निंग न्यूज़।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज होर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी

0: ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के

0: अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने बीएनएस और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। एसआईटी में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवजून प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी

स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसोर्ट में घंटों चली वार्ता, बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई। जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं।

0: टाइम्स का शीर्षक है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले छठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए एसआईटी गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हुरमुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirmed death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
3: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
2: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognized India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिक

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से कार्यक्रम सुर संगम। अगली प्रस्तुति चंदन दास की आवाज में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से कार्यक्रम सुर संगम। हमारा अगला प्रसारण आप सुन पाएंगे आकाशवाणी जयपुर से, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। यमुना जल परियोजना से संबंधित नई दिल्ली में आज होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हिस्सा लेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और केंद्र सरकार ने हज यात्रा 2027 के लिए नई नीति की घोषणा की, ऑनलाइन आवेदन शुरू। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा को पद्म पुरस्कार मिलेगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 5 पद्म विभूषण सहित 131 पद्म अलंकरणों की घोषणा की थी। यमुना जल परियोजना के एमओयू को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। बैठक में दोनों राज्यों और केंद्र सरकार के बीच इस महत्वपूर्ण समझौते से जुड़े विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक विषयों पर निर्णायक चर्चा की जाएगी। इस परियोजना से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र को पीने के पानी की भरपूर आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इसके साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी मिल सकेगा। गौरतलब है कि यमुना जल समझौते के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है। ये डीपीआर केंद्रीय जल आयोग के साथ भी साझा कर दी गई है। प्रदेश के सरहदी जिलों में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इस अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि इन क्षेत्रों में एक निश्चित दायरे के भीतर बने निर्माण कार्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर हटाया जा रहा है। श्री पटेल ने बताया कि राज्य सरकार सुरक्षा के मामले को लेकर पूरी तरह सजग है।
1: पाकिस्तान की बॉर्डर से एक निर्धारित अवधि के भीतर कोई भी कतर का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा और वहाँ कोई अलॉटमेंट भी नहीं होगा, न स्थायी निर्माण होगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जब केंद्र सरकार के ध्यान में ये लाया गया कि ऐसे जो निर्माण है वो निर्धारित परिधि के अंदर है, वहाँ निर्माण पूर्ण रूप

0: से प्रतिबंधित है, अलॉटमेंट प्रतिबंधित है। और ये भी ध्यान में लाया गया कि इनकी गतिविधियां देश की सुरक्षा को, आंतरिक सुरक्षा को लेकर के ठीक नहीं है, तो माननीय केंद्र सरकार के निर्देशानुसार क्लीन शिप के नाम से जो निर्धारित अवधि के अंदर जहां अलॉटमेंट या कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता उसके अंदर है, उनको साफ किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है।
1: राजस्थान में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई ये समिति राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करेगी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कल जयपुर में प्रेस वार्ता में जानकारी दी। श्री बेढ़म ने बताया कि उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। ये समिति संभाग स्तर पर लोगों से सीधा संवाद करेगी। इसके अलावा आम नागरिक वेबसाइट के जरिए भी अपने सुझाव समिति तक पहुंचा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से प्रदेश को नई दशा और दिशा मिलेगी।
2: भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति, वो महिला हो या पुरुष हो, उनको समान नागरिक संहिता लागू हो, जिससे सभी वर्गों, सभी धर्मों और सभी लोगों को एक कानून मिलेगा तो एक जैसी सुविधाएं, व्यवस्थाएं, उनके अधिकार सुनिश्चित होंगे। मैं समझ सकता हूं कि ये यूसीसी राजस्थान में लागू होने के बाद एक नई दशा और दिशा प्रदेश को मिलेगी। उस कानून के लागू होने के बाद सभी लोग एक कानून, एक प्रदेश, एक देश के तहत अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी कार्यविधियों को और अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित कर पाएंगे।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इसे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री शाह नेफेड के निदेशक मंडल के साथ बैठक करेंगे। हज यात्रा 2027 के लिए नई नीति की घोषणा कर दी गई है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल नई हज नीति 2027 जारी की। इच्छुक लोग भारतीय हज समिति की वेबसाइट और हज सुविधा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार भी हज समिति और निजी क्षेत्र के बीच यात्रियों के कोटे का अनुपात 70-30 का रखा गया है। इसके तहत 1,22,518 सीटें भारतीय हज समिति के पास रहेंगी, जबकि 52,000 से ज्यादा सीटें निजी टूर ऑपरेटर्स के लिए निर्धारित की गई हैं। गौरतलब है कि सऊदी अरब द्वारा तय समय सीमा का पालन करने और तैयारियां समय पर पूरी करने के उद्देश्य से इस बार हज नीति की घोषणा जल्दी की गई है। प्रदेश में आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक मजबूत तथा तकनीक आधारित बनाने के लिए इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 परियोजना बनाई गई है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जयपुर में इस परियोजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने और आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। बैठक में न्याय संहिता डैशबोर्ड पर राजस्थान के प्रदर्शन और स्कोर कार्ड की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कल ही पीएम श्री और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नियमित रूप से स्कूलों का दौरा कर जमीनी स्तर पर योजनाओं की निगरानी करने के निर्देश दिए। यातायात व्यवस्था को सुगम और सिग्नल फ्री बनाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण तेजी से काम कर रहा है। जयपुर में महल रोड की तर्ज पर अब न्यू सांगानेर रोड और सीकर रोड पर भी यू टर्न आधारित सड़कें बनाई जा रही हैं। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक जैम से निजात दिलाना और यातायात को निर्बाध

0: बनाना है उन्होंने बताया कि यदि यू टर्न का यह प्रयोग सफल रहता है तो इस साल के अंत तक शहर के लगभग 21 प्रमुख ट्रैफिक चौराहों यानी जंक्शनों को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा
1: हम लगभग यू टर्न पैटर्न के ऊपर बेस के ऊपर ही लगभग 21 ट्रैफिक जंक्शंस को हम बंद कर पाएंगे साथ में हम और तरीके के भी बहुत सारे हम प्रयास कर रहे हैं जैसे लोगों को अगर लेफ्ट जाना है तो उनको रेड लाइट पे खड़े ना होना पड़े एक हमने प्रयास यहाँ पे करा था रामबाग सर्कल के ऊपर और बाकी शहरों में भी अब हमने यहाँ जेडी सर्कल पे जेडी चौराहे पे भी किया है इसके साथ साथ हम लगभग 15 जुलाई के आसपास हमने 24 जंक्शन चिन्हित करे हैं जहाँ पे हम जो हमारा कंट्रोल रूम है ट्रैफिक का वहाँ से देख के कैमरा से देख के ही लोगों को हम वार्न करेंगे अगर कोई रेड लाइट को क्रॉस कर रहा है या स्टॉप लाइन के आगे आ रहा है या बिना हेलमेट के कर रहा है तो हम अपने स्पीकर के थ्रू ही उनको समझाने की कोशिश करेंगे
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी यमुना जल परियोजना से संबंधित नई दिल्ली में आज होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हिस्सा लेंगे केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और केंद्र सरकार ने हज यात्रा 2027 के लिए नई नीति की घोषणा की ऑनलाइन आवेदन शुरू इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा नमस्कार
2: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं श्रोताओं प्रस्तुत है देशभक्ति गीत
3: मेरा रंग दे बसंती

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय है अब कार्यक्रम स्वास्थ्य आपका का, जिसमें आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता। बाल रोगों में होम्योपैथी कितनी कारगर, इस विषय पर शिव कुमार शर्मा की डॉक्टर मधुबाला से बातचीत।
1: स्वास्थ्य आपका के सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, आज का हमारा विषय है बाल रोगों के उपचार में होम्योपैथी कितनी कारगर, और इस विषय पर हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर मधुबाला, जो कि होम्योपैथी चिकित्सक हैं भारतीय अस्पताल चूरू में। तो सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं स्टूडियो में, और ये जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी का जो इलाज है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एलोपैथी, होम्योपैथी, इसके अलावा आयुर्वेदिक, यूनानी कई पद्धतियां हैं, लेकिन होम्योपैथी किस सिद्धांत पर आधारित है?
2: होम्योपैथी सिमिलिया सिमिलिबस करंटर सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि जिस चीज़ से बीमारी शुरू होती है उसी से ठीक भी होती है
1: जी।
2: इसका आविष्कार डॉक्टर हनीमेनन सैमुअल फ्रेडरिक हनीमेनन उन्होंने किया था, जिनका जन्मदिन 10 अप्रैल को मनाया जाता है
1: जी।
2: उन्होंने जैसे सिनकोना बार की छाल होती है
1: जी,
2: उसको खुद खाया, उससे जो सिम्टम आए वो बिल्कुल मलेरिया लाइक थे, जैसे मलेरिया में फीवर, चिल, साथ में भूख नहीं लगना, वॉमिटिंग, नौशिया वगैरह। तो जब किसी के मलेरिया हुआ उसे वो दी गई, उससे बनाई गई मेडिसिन, तो उससे वो ठीक हो गया। उससे ये पता चला कि भाई जिस चीज़ से बीमारी शुरू होती है उसी की अगर एक्सट्रैक्ट लेकर के दवाई बनाई जाए तो उससे वो ठीक भी हो जाता है
1: जी, यानी दर्द को ही दवा बना लिया।
2: हाँ
1: जी। तो बच्चों की हम बात करें तो होम्योपैथी कितनी कारगर है, क्योंकि जब हम एलोपैथी की बात करते हैं तो कहते हैं इसमें बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसके दवाई लेने के बाद एक बार तो जो रोग होता है वो दब जाता है, लेकिन बाद में बहुत से साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। होम्योपैथी की हम बात करें और खास तौर पर जब बच्चों की हम बात करें तो ये कितनी सफल है, कितनी कारगर है?
2: नहीं, होम्योपैथी वैसे है तो काफ़ी अच्छी है
1: जी,
2: और कारगर भी है, और साथ में लेने में भी आसान है। पे मीठी गोलियां होती है, बच्चे आसानी से ले लेते हैं। तो उसी तरह से जैसे मतलब जैसे इन्फेंट्स में छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं 6 महीने से कम एज के, उनके साथ क्या होता है, जैसे मान लो दूध पीते ही बच्चा वॉमिटिंग कर लेता है तो कई बार माएँ घबरा भी जाती हैं ये कैसे हुआ। तो उसके लिए भी होम्योपैथी में 2-3 मेडिसिन अच्छी है, एंटीक्लूड, एथ्यूजासानेपियम वगैरह, ऐसी मेडिसिन।
1: तो जो इतना छोटा जो शिशु होता है उसको जब दवाई दी जाती है, गोलियां दी जाती है, तो किसी प्रकार का कोई नुकसान का कोई भय नहीं
2: होता? उसको क्या है, जैसे लिक्विड फॉर्म में दवाई होती है ना, उसको चम्मच में पानी में मिला के दी जाती है, तो आसानी से ले भी लेता है, जैसे और दवाई लेता है वैसे ये भी ले लेता है, क्योंकि वो गोलियां तो खा नहीं पाएगा, गले में अटक जाएगी, इसलिए तो उसको चम्मच में पानी में मिला के दवाई दी जाती है
1: जी। तो चलिए, आपने बताया कि बच्चा जब दूध उलटता है तो उसमें बहुत कारगर है।
2: हाँ,
1: इसके अलावा फिर?
2: उसके साथ जैसे किसी किसी बच्चे में क्रेम्स आ जाते हैं, जैसे वो मिर्गी टाइप से होते हैं ना, जैसे हाथों में अकड़न, तो उसकी अलग अलग मेडिसिन होती हैं, तो उसके सिम्टम देख करके उस हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। और उसके बाद जब बच्चा 6 महीने का होता है, 6 महीने के बाद जब टीथिंग प्रॉब्लम आती है, उसमें किसी किसी का डायरिया हो जाता है, कोई इरिटेबल हो जाता है बच्चा, उसमें भी अलग मेडिसिन होती है जो दी जाती हैं, तो उससे दांत आसानी से निकल जाते हैं। फिर जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, जैसे 2-4 साल का, तो अगर कुछ दांत दिक्कत से निकलते हैं, या फिर जैसे किसी के दांत में कीड़ा लग जाता है, तो उसके लिए भी अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं, जिनको दिया जाए तो शुरुआत में दिया जाए, और लगाने के लिए दवाई भी होती है
1: जी,
2: वो दांतों में लगाई जाए तो दांतों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है
1: जी। एक बात हम जानना चाहेंगे कि बच्चों की हम बात करें तो उनका जो बॉडी केमिस्ट्री होती है वो सबकी अलग अलग होती है, तो आप

0: कैसे निर्णय कर पाते हैं कि किस बच्चे को कितनी खुराक देनी है, किस प्रकार की दवाई, या सभी बच्चों पर लागू होती समान रूप?
1: नहीं, वैसे शुरुआत तो लो पोटेंसी से ही करते हैं, वो चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, जैसे कि वो नुकसान भी नहीं करेगी और उसके रिजल्ट देखते ही हाई पोटेंसी भी दे सकते हैं उसको। तो शुरुआत में सभी को लो पोटेंसी दी जाती है। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं तो पता लगता है कि ये स्लो लर्नर है, याद जल्दी नहीं कर पाते, मेमोरी लॉस है, तो उस हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। जैसे एनाकार्डियम दी जाती है तो लो पोटेंसी में, बताया ना 30 पोटेंसी में दी जाती है
0: जी।
1: और भी ऐसी नक्स वोमिका और कुछ मेडिसिन हैं, तो वो सिम्टम देख करके मेडिसिन दी जाती है। अब जैसे किसी के बच्चे के टॉन्सिल हो जाते हैं, मम्स हो जाते हैं, तो उनके लिए भी कुछ मेडिसिन हैं सिम्टम के अकॉर्डिंग दी जाती हैं, तो तुरंत आराम मिलता है उन्हें। बच्चे बड़े होते हैं तो कॉन्स्टिपेशन भी रहता है और भी कई सिम्टम होते हैं जैसे खांसी जुकाम बुखार होते हैं, तो उनमें भी मेडिसिन अच्छी अच्छी दी हुई है इसमें
0: जी। एक बात और हम कहना चाहेंगे कि बच्चे आमतौर पर जब उनको गोलियां दी जाती हैं तो वो लेते नहीं है, घटकते नहीं है, बल्कि बाहर निकाल देते हैं उसको। तो होम्योपैथी में क्या इस प्रकार की कोई समस्या है?
1: नहीं, कि ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि
0: अंदर ग्रहण न करके बाहर निकाल दे।
1: नहीं नहीं, बल्कि होम्योपैथी की गोलियां तो बच्चे आसानी से और शौक से लेते हैं, वो मीठी मीठी होती है और उसमें दवाई मिली हुई होती है, तो बच्चे मीठी गोलियां समझ के वो दवा ले भी लेते हैं और नुकसान भी नहीं करती, और ये सस्ती पैथी है, मतलब अच्छी कारगर भी है, एक किफायती सस्ती और उपचारित उपचार।
0: बच्चों के और रोगों के बारे में हम बात करें, उससे पहले एक प्रश्न और हमारे जहन में आता है कि जो आमतौर पर होम्योपैथी में जो दवाई दी जाती है वो लगभग एक जैसी होती है, देखने में सफेद गोली होती है और उसमें कुछ लिक्विड मिला होता है, तो इसमें किस प्रकार से अलग होता है ये, क्योंकि आम व्यक्ति तो नहीं जान पाता कि ये दवाई अलग है और ये दवाई अलग है।
1: गोलियां होती हैं वो तो ज्यादातर एक ही जैसी होती है, साइज किसी किसी का अलग होता है, जैसे उसमें भी साइज होता है 20, 30, 40, तो उसी हिसाब से साइज अलग अलग होता है। तो जो छोटी गोलियां होती हैं वो 3-4 की गोलियों की मात्रा में दी जाती है, लेकिन जो एसेंस जो मिला होता है उसके अंदर वो अलग अलग होता है, वही मेडिसिन होती है। पर वो गोलियां देखने में सब एक जैसी लगती है, लेकिन जो एसेंस मिलाया होता है वो अलग अलग मेडिसिन का मिलाया होता है, तो वो चीज तो या तो डॉक्टर समझ सकता है या जो पेशेंट लेके गया तो वो देखता भी, अलग शीशी में से डाली है ये, अलग में से डाली है
0: जी,
1: तो उसे पता लग जाता है कि भाई।
0: अच्छा, इसी बात से जुड़ी एक बात और है कि क्या साइकोलॉजी का भी कोई प्रभाव होता है?
1: हाँ,
0: क्या जैसे होम्योपैथी में आप दवाई देते हैं,
1: होता है।
0: एक जैसी दवाई होती है लेकिन आपने क्योंकि उसको काफी समझा बुझाकर कहा कि ये दवाई ले लेना ठीक हो जाएगा, तो क्या साइकोलॉजिकल भी कोई असर होता है?
1: हाँ होता है ना, जैसे कुछ बच्चे होते हैं स्कूल नहीं जाना तो उसके लिए बहाने करते हैं कि मेरे पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, मान लो डॉक्टर को पता लग जाए कुछ करके कि हाँ ये झूठ बोल रहा है बच्चा, तो उसको साइकोलॉजिकल जैसे फाइटम या कुछ मेडिसिन होती है जो मतलब प्लेसिबो सिंपल, जो दवाई नहीं होती है लेकिन बच्चे की नजर में वो मेडिसिन है, वो खाएगा तो उसे लगेगा मुझे कुछ मेडिसिन मिल गई है, तो वो अपने आप कहेगा कि हाँ मैं ठीक हो गया हूँ। या फिर किसी बच्चे का पकड़ना है कि ये झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है, तो उसको प्लेसिबो दी जाएगी सिंपल गोलियां, तो वो सोचेगा कि भाई मुझे दवा मिल गई है अब तो मुझे ठीक होना ही है। अब वो ठीक हो या नहीं हो लेकिन वो है मेडिसिन की वजह से उसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, तो वो ठीक हो जाता है
0: जी। मधुबाला जी, एक बात और है कि प्रत्येक मरीज बहुत जल्दी ठीक होना चाहता है, अब हम बच्चों की बात करें तो माता पिता चाहेंगे कि हमारा बच्चा तुरंत ठीक हो जाए, तो होम्योपैथी में कितना वक्त लगता है? यदि मैं एलोपैथी से तुलना करें उसकी तो तुलनात्मक रूप से किसमें ज्यादा वक्त लगता है?
1: हाँ, तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा लगता है कि होम्योपैथी में थोड़ा ज्यादा लगता है और एलोपैथी में तुरंत आना पड़ जाता है, क्योंकि भाई उसमें यह है कि भाई गोली लेते ही आपको 2-4 घंटे में या एक दिन में आराम मिल जाएगा। इसमें भी है ऐसा, अगर बिल्कुल सही करेक्ट मेडिसिन दी गई हो सकता है उसमें भी एक दिन में 2 दिन में एकदम आराम पड़ेगा, लेकिन अगर मेडिसिन थोड़ी सी कम पावर की या थोड़ी सी सिम्टम के अकॉर्डिंग नहीं दी गई है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। फिर ये उसमें 1-2 दिन में दोबारा बुला लेते हैं या 3 दिन में, तो मेडिसिन चेंज करनी होती है तो चेंज करते हैं, नहीं उसकी कॉम्प्लीमेंट्री या कोई दूसरी होती है वो दे दी जाती है।
0: कोई भी रोग होता है उसको जड़ से हटाने की बात कई बार की जाती है,
1: हाँ,
0: तो
1: हाँ।
0: क्या होम्योपैथी में ऐसा कुछ है कि रोग का जो जड़ है वहां तक पहुंचकर और उसको समाप्त किया जा सकता है? क्योंकि एलोपैथी में तो हम देखते हैं कई बार कि जो दर्द है या दर्द निवारक दवाई दी जाती है उसके बाद
1: तुरंत
0: आपको मतलब उसको दर्द महसूस नहीं होता है, लेकिन हम जड़ तक पहुंचना चाहते हैं कि ठीक है आज जो रोग उभरा है हो सकता है कल फिर उभर जाए, तो उसकी जड़ को समाप्त करने के लिए होम्योपैथी में किस तरह का इलाज है?
1: नहीं, जैसे क्रॉनिक केस होते हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस वगैरह होते हैं ना, जैसे कई जो सीवियर बीमारियां होती हैं, तो उनमें यह है कि अगर सिम्टम के बेस पे चलते चलते अपन अगर उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन देंगे, ट्यूबरकुलिनम हुई, सल्फर हुई और भी कई मेडिसिन होती हैं, तो उनको देने से क्या है कि उसमें जो इम्यूनिटी पावर है वो धीरे धीरे बढ़ेगी और उसके साथ ही मेडिसिन का इफेक्ट पड़ेगा, तो बॉडी जैसे जड़ से जो बीमारी लगी है वो धीरे धीरे कम होना शुरू

0: जाएगी। एलोपैथिक में तो ये जैसे सुपरफिशियल काम करती है तो उसको आराम पड़ जाता है, फिर वो दोबारा भी कभी अटैक कर सकती है। लेकिन होम्योपैथी में क्या है, जब पेशेंट आता है तो उसको इतना धैर्य नहीं होता कि भाई 6 महीने का कोर्स है, साल भर का कोर्स है तो लग करके ले।
1: जी, तुरंत चाहता है कि तुरंत दवाई
0: हाँ,
1: ली और आराम।
0: उसे यूँ लगता है कि जैसे तुरंत 15 दिन में, 1 महीने में मैं ठीक हो जाऊं, जबकि हम लोग कई बार ड्यूरेशन बता देते हैं कि भाई आपको कम से कम इतना समय लगेगा। अब स्किन के केस में कई बार ऐसे होते हैं केस जो लगता है कि भाई तुरंत आराम पड़ जाएगा 15 दिन में, 1 महीने में, तो बता देते हैं हम इतने दिन में आपको एकदम आराम पड़ जाएगा।
1: हम बात कर रहे थे बच्चों के रोगों के बारे में जिसमें कि होम्योपैथी कारगर है, तो और
0: हाँ
1: कौन कौन से रोग हैं जिसमें कि ये होम्योपैथी है वो काफी फायदा देती है बच्चों के मामले में?
0: हाँ जैसे बच्चों में मैंने शुरू में ही काफी देखे हैं, जैसे ये वार्ट्स के केस हैं, बहुत सारे बच्चों में मोलस्कम टाइप के होते हैं या अलग अलग टाइप के वार्ट्स होते हैं, तो उनमें जो मेडिसिन दी जाती है तो ड्यूरेशन तो उनका होता ही है 15 दिन, 1 महीना, किसी किसी में 3 महीने भी हो सकते हैं, तो उनमें आराम पड़ जाता है एकदम से और वो जड़ से मिट भी जाते हैं। और भी कई मेडिसिन जैसे बताया मैंने, टॉन्सिल हुए, मम्स हुए, तो इनका एलोपैथी में भी इलाज है लेकिन होम्योपैथी में भी अच्छा इलाज है। सिम्टम के बेस पर मेडिसिन दी जाती है जैसे बेलेडोना, रेस्टॉक्स और भी कई मेडिसिन है, तो उससे भी एकदम आराम पड़ता है, बच्चा 2-5 दिन में ही ठीक हो जाता है, इतना ही वक्त उधर लगता है।
1: और कौन कौन से ऐसे खास रोग हैं जिनका जिक्र आप करना चाहेंगे कि बच्चों के मामले में, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बाल रोगों के उपचार में होम्योपैथी
0: हाँ
1: कितनी
0: हाँ
1: कारगर है। अस्पताल में बैठती हैं तो बहुत से
0: हाँ
1: मरीज
0: हाँ
1: आपके पास आते होंगे, बहुत से माता पिता आपके पास आते होंगे बच्चों को लेकर, तो ऐसे
0: हाँ
1: कौन
0: हाँ
1: कौन सा आपका जो अनुभव है वो क्या बताता है कि ऐसे कौन से खास तरह के रोग हैं जिसके बारे में आप 100% कह सकते हैं कि हाँ इसमें पूरी तरह से कारगर है?
0: नहीं जैसे मैंने बताया ना, एक तो वाट्स के केस ही मैंने काफी देखे हैं, वो काफी हद तक ठीक भी हो गए। और जैसे अपने, जैसे मैंने बताया कि स्लो लर्नर होते हैं बच्चे, या फिर लॉस मेमोरी होती है, या जल्दी याद नहीं कर पाते, कैचिंग पावर कम है, उनमें भी मेडिसिन अच्छी है, एनाकार्डियम, नक्सोमिका और भी कुछ मेडिसिन है, तो वो देने से उनकी मेमोरी इम्प्रूव होती है। और साथ में खान पान का तो कहते ही हैं कि भाई खान पान भी साथ में सही देना चाहिए, प्रोटीन डाइट और भी कुछ जैसे खाने पीने में हरी सब्जियां।
1: जी, एक होम्योपैथी चिकित्सक के नाते आप क्या कहना चाहेंगे माता पिता अभिभावकों को कि उनके बच्चे स्वस्थ रहें?
0: पहले तो मैंने बताया ना जैसे खान पान पे वो ध्यान देंगे, जैसे बच्चा अगर नहीं खा रहा तो खुद ही कोशिश कर करके उसको खिलाएं, और वो भी एक अच्छी डाइट, जैसे एक तो बच्चा चिप्स वगैरह खाता है तो वो चीज़ नुकसानदेह होती है,
1: जी,
0: उससे बच्चे का थोड़े समय के लिए पेट भर जाता है लेकिन वो आगे साइड इफेक्ट देते हैं कि भाई।
1: आजकल तो ये बहुत चल रहा है।
0: हाँ तो एक तो बच्चों को जैसे न्यूट्रिशनल डाइट होती है जैसे हरी सब्जियां, चावल, आलू और गाजर, फ्रूट वगैरह, दूध, ये सब चीजें देंगे तो वैसे इम्प्रूव करेगा।
1: जी, ये सब
0: और
1: देंगे तो क्या बच्चा खाएगा?
0: नहीं, नहीं खाएगा तो उसको देने के तरीके अलग अलग करने चाहिए, जैसे
1: जी
0: उसको कुछ और चीज बना करके दो, जैसे आलू ऐसे नहीं खाता तो पराठा बना दें, आलू का हलवा बना दें या कुछ भी, और जैसे दूध नहीं पीता तो दूध से बनी चीजें दे दें, रसगुल्ला हुआ, मिठाई हुई, जैसे उसका एक पीस आधे पीस रोज खा लेगा तो कवर कर लेगा। और उसके साथ ही प्रोटीन के लिए दालें, भाई दाल नहीं तो दाल से कुछ और चीज बना करके दे दें, उससे क्या है कि जैसे अगर डाइट अच्छी होगी और साथ में उसको सलाद भी, सलाद की भी आदत डालें, जिससे रेशे शरीर में पहुंचेंगे तो कब्जी की शिकायत नहीं रहेगी। और पानी जितना हो सके उतना पिलाया करें, उसको कह के रखें कि भाई बेटा इतनी इतना पानी पीना है, नहीं पिए तो जबरदस्ती खुद ही अपने एक गिलास दे करके उसको 2-3 बार दिया करें।
1: एक बच्चों में खास तौर पे जो पेट में जो कृमि होते हैं और कहते हैं
0: हाँ
1: ना
0: हाँ
1: कीड़े हो
0: हाँ
1: जाते हैं काफी, तो उसके बारे में किस तरह का इलाज है?
0: हाँ उसके लिए भी है, जैसे 2-4 मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे बच्चे सोते हैं तो उनके सिम्टम पूछे जाते हैं, ये सोते हैं तो मुंह से लार गिरती है और साथ में चेहरे पर वाइट वाइट स्पॉट हो जाते हैं, कभी कहते हैं पेट दुख रहा है, कभी कहते हैं भूख कम लग रही है, कभी ज्यादा लगती है भूख, तो उन सिम्टम के बेस पर पता लग जाता है कि इस बच्चे के पेट में कीड़े हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती है। जैसे कई बच्चे रात को पेशाब करते हैं तो उनको याद नहीं रहता, या तो वो सोते समय सपना कोई लेते रहते हैं
1: जी
0: और कर लेते हैं उसके बाद उठते हैं, कुछ बच्चे सोते ही 1 घंटे बाद कर देते हैं, तो उनके हिसाब से अलग अलग मेडिसिन होती हैं।
1: जी, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अलावा
0: हाँ
1: उसमें
0: ट्रीटमेंट
1: होम्योपैथी
0: होम्योपैथी
1: में
0: में भी है,
1: ट्रीटमेंट भी
0: हाँ
1: है?
0: 3-4 मेडिसिन है ऐसी, तो वो देख के देखनी पड़ती है, वो भी सिम्टम के अकॉर्डिंग जैसे बच्चा आया उसके और सिम्टम लेकर के जब दी जाती है।
1: जी, तो श्रोताओं, सुना आपने कि बाल रोगों के उपचार में होम्योपैथी भी काफी कारगर है, और आप इसको एक बार अपनाएं जरूर और इस पर गौर करें कि इसमें भी ठीक प्रकार से उपचार हो पाता है। मधुबाला जी, आप स्टूडियो में आई और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य आपका।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य आपका। इसके अंतर्गत आपने सुनी भेंट वार्ता, बाल रोगों में होम्योपैथी कितनी कारगर, इस विषय पर शिव कुमार शर्मा की डॉक्टर मधुबाला से बातचीत। एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल से दिल तक। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको ज्ञात है, आपकी फेसबुक कमेंट्स पर आधारित है ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम। तो आज के इस कार्यक्रम में आकाशवाणी चूरू के फेसबुक पेज पर आपने जो कमेंट्स भेजे हैं उनको हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं और उसके साथ ही साथ आपको सुनवाते हैं गीत। शुरुआत करते हैं इस विज्ञापन के साथ।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से कार्यक्रम दिल से दिल तक। इस कार्यक्रम में सबसे पहला कमेंट जो हमें प्राप्त हुआ है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो है सतीश अनेजा और विमला अनेजा का, चंडीगढ़ सिटी से। ये हमारे नियमित श्रोता हैं। लिखते हैं, आधी दुनिया इसलिए दुखी है क्योंकि वो अपनी जिंदगी की किताब पढ़ने के बजाय दूसरों के पन्ने पलटने में लगी रहती है, जो समय स्वयं को बेहतर बनाने में लगाना चाहिए वही अगर दूसरों की जिंदगी में झांकने में बीत जाए तो न सुख मिलता है न शांति। आपने बिल्कुल उचित बात कही है सतीश जी। आधी दुनिया, हम तो इसमें और बढ़ोतरी अगर कहें तो ज्यादातर दुनिया जो है वो इसी से दुखी है कि पड़ोसी सुखी क्यों है और इसी चक्कर में अपना सुख भूलकर वो दूसरों के सुख से दुखी हो जाता है और सबको यही महसूस होता है कि हमें सुख प्राप्त हुआ है लेकिन दूसरों को नहीं होना चाहिए। और ऐसे में बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनको कुछ अगर प्राप्त हुआ है तो वो दूसरों को बताना भी नहीं चाहते कि मुझे ये कैसे प्राप्त हुआ, कुछ सीख गए तो बताना नहीं चाहते कि मैं ये कुछ सीखा हूं उससे मुझे ये लाभ है। वो चाहते हैं कि अगर ये लाभ दूसरों को बता दिया तो वो भी हमारी तरह सफल हो जाएंगे, उनके पास भी हमारी तरह पैसे हो जाएंगे। ये तकलीफ रहती है लेकिन ऐसा है कि जैसी सोच होती है उसके अनुसार ही परिणाम प्राप्त होता है। अगर इस प्रकार की हमारी सोच होती है तो सबसे पहले इफेक्ट वो हमें ही करती है क्योंकि हमारी मानसिकता खराब होती है और जब खराब होती है मानसिकता तो ऐसे में उसका परिणाम भी खराब ही होता है और धीरे धीरे हमारा स्वभाव ऐसा बन जाता है कि जो सफलता हमें प्राप्त हुई है वो धीरे धीरे हमसे दूर होती चली जाती है और सामने वाला व्यक्ति जिससे हम उस सफलता को बचाना चाहते थे हो सकता है उसको वो सफलता

उससे भी बड़े स्तर पे प्राप्त हो जाए। तो ऐसे में अपनी मानसिकता को सही रखें, जिस व्यक्ति को जो मिलना है वो मिलेगा, उसके प्रयास से, उसके किस्मत से, कुछ भी हम कह सकते हैं, लेकिन आपका नहीं छीनेगा। आपने जो खुद जाना, अगर आप उसको दूसरों के साथ शेयर करेंगे, उनको बताएंगे, तो इससे आपका वो ज्ञान बढ़ेगा। और ज्ञान के लिए तो कहा भी जाता है कि ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है। अगला हमारा कमेंट जो है वो भेजने वाले श्रोता है, नाई वाला गांव, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से, वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा लिखते हैं, हमें जिंदगी में वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं, चाहे वो इज्जत हो या धोखा। आर्थिक स्थिति अच्छी होने से ज्यादा जरूरी है मन की स्थिति अच्छी हो। परिस्थितियां तो जीवन में बदलती रहती है, अपने मन की स्थिति अच्छी रखेंगे तो परिस्थिति हावी नहीं हो पाएगी। जीवन में सफल वही होता है जिसकी परिस्थितियां उसकी मनस्थिति को प्रभावित नहीं करती। आपने बिल्कुल सही बात कही है और यही बात हम अपने पिछले कमेंट में कहकर आए हैं कि हम जिस प्रकार से जैसा सोचेंगे उससे हमारी जो मनस्थिति बनेगी उससे हम प्रभावित होंगे। और इसी प्रकार की बात आपने लिखी है कि परिस्थितियां उसकी मनस्थिति को प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि स्थिति अच्छी और बुरी होती रहती है, लेकिन मन की स्थिति जो है वो व्यक्ति की संतुलित होनी चाहिए। अगर मन की स्थिति संतुलित है तो बुरा समय भी बीत जाता है और अच्छा समय भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा इस प्रकार के भाव में बहाकर नहीं ले जाता कि वो वहां से वापस ना आ सके। अगला कमेंट है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का, लिखते हैं, गर्मी से घबराकर जीवन के सफर की रफ्तार को धीमी करना कहां तक न्यायोचित है। हमेशा से रात्रि के सघन काली छाया के पश्चात प्रातः की सुनहली धूप आती ही है, फिर क्यों हम दुख रूपी अंधकार से घबराए। निश्चित है खुशियों के बौछार भी जीवन में आएगी। बिल्कुल सही कहा है आपने, खुशी के बाद गम, गम के बाद खुशी, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, ये सब समय के चक्र हैं और सिक्के के दो पहलू हैं। एक जब आता है तो उसके पश्चात दूसरा आता है, और एक जब आता है तभी दूसरे के आने का पता चलता है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन पता तभी चलता है जब एक स्थिति को हम देखते हैं और उसके विपरीत दूसरी स्थिति को हम फिर से देखते हैं, तो उसमें अंतर करके ही हमें पता चलता है कि क्या कुछ हमारे साथ बीता। जनकपुरी सहारनपुर से ये श्रोता है, जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस, कृष्णा पार्क दिल्ली से ही श्रोता है, सुखविंदर सिंह जोड़ और सिटी दीवाना। और इसी क्रम में ये श्रोता है कर्नाटक चिन्ना तिरुपति से, श्यामला प्रकाश, अश्विनी, आनंद, मनवित। और झज्जर हरियाणा से ये श्रोता है बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। इन सब ने लिखा है कि इसे गीत में शामिल करें, तो आपका कमेंट शामिल हो गया है और गीत भी आपको अभी सुनने को मिल ही जाएगा। और इसी क्रम में ये श्रोता है कोहका भिलाई से, उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी। और मेरठ से है दिग्दर्शन और कविता गौड़। जो श्रोताओं कमेंट हमने कई श्रोताओं के शामिल किए हैं, अब सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल से दिल तक। तो दरिया में आप चाबी मत फेंकना, क्योंकि चाबी कहीं ना कहीं लगती है और चाबी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इसलिए कमेंट अगला शामिल करते हैं। वक्त के साथ चलते चलते ये कुछ बड़ी बातें साफ नजर आने लगती है। हम बता दें, ये कमेंट हम पढ़ रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन का। ये लिखते हैं, हर बहस जीतना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं, हर किसी को खुश रखना मुमकिन नहीं। बस एक बात समझ आ जाती है, जियो और जीने दो, जो साथ चलना चाहे उसका थाम लो, जो दूर जाना चाहे उस

उन्हें दुआओं के साथ जाने दो। बिल्कुल सही है, जो रुकना नहीं चाहते हैं उनको टाटा बाय बाय कहिए, और जो साथ चलना चाहे उसको आप साथ लेकर चलें। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से ये श्रोता है विजय महोबिया, कविता महोबिया, शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से श्रीमती कमला देवी महोबिया। बुलंदशहर से है श्रोता उमेश कुमार गौड़ और रानी गौड़। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतनमाला ये लिखते हैं कि जीवन की कठिनाइयां हमारी हिम्मत और धैर्य की परीक्षा लेती है, हर संघर्ष हमें कुछ नया सिखाकर मजबूत बनाता है, कठिन समय में ही व्यक्ति की असली पहचान होती है, जो चुनौतियों का सामना करता है वही सफलता का आनंद पाता है, कठिनाइयां स्थायी नहीं होती लेकिन उनसे मिली सीख जीवन भर साथ रहती है। ये बिल्कुल उचित बात इन्होंने लिखी है, परिस्थितियां जो है वो व्यक्ति को सिखाती है। बहुत जगह आपने इस प्रकार के पढ़े भी होंगे कि भाई बादाम से अक्ल नहीं आती, अक्ल आती है धक्के खाने से, इस प्रकार के हंसी के आपने पढ़े होंगे, उनमें एक गहराई भी छिपी है। वाकई व्यक्ति अपने जीवन में जिन जिन परिस्थितियों में अपने आप को जूझ कर बाहर निकालता है उनसे वो कुछ न कुछ सीख कर निकलता है। और ये भी आवश्यक है कि जब व्यक्ति कुछ सीखना चाहता है, उसमें अपने आप में निखार लाना चाहता है तो उसको तपना पड़ता है। और इसका उदाहरण हमें हमारे आसपास के वातावरण में, प्रकृति में, आसपास की दुनिया में हर जगह दिखाई पड़ता है कि तपकर ही सोना कुंदन बनता है। बिना तपे, बिना मेहनत किए, बिना कोई प्रयास किए किसी प्रकार का कोई भी परिणाम प्राप्त नहीं होता, कम से कम सकारात्मक, नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है। हमारे अगले श्रोता भैरूलाल वाकतरिया उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से लिखते हैं कि बारिश का आगमन होते ही धरती हरी चादर ओढ़ लेती है, हमें भी कुछ करना चाहिए, हमारे आसपास खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करके प्रकृति को संवारने में अपना योगदान दे सकते हैं। भैरूलाल जी आपने बिल्कुल सही बताया है, बारिश का आगमन हो गया और ऐसे में अगर हम कोई पेड़ लगाते हैं तो वो आसानी से लग भी जाता है, और निश्चित रूप से हमारा ये दायित्व है जिस प्रकार से पेड़ों से हम किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ अपने दैनिक जीवन में रोज लेते हैं, तो ऐसे में हमारा ये दायित्व बनता है कि हमें कम से कम अपने जीवन में 5 पेड़ तो लगा ही देने चाहिए। प्रधानमंत्री जी का भी कहना है 1 पेड़ माँ के नाम, तो ऐसे में अगर हम उससे बढ़कर 5 या 10 जितनी भी हमारी श्रद्धा हो उतने पेड़ लगाएं, और न सिर्फ लगाएं बल्कि उनकी देखभाल करके उनको बड़ा करें, तभी उसको लगाना सही मायने में कहा जाएगा, तो ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। हरि सिंह नायक हैं गढ़ के पास पीति सर से लिखते हैं, मर्यादा में सिर्फ औरत ही नहीं मर्द भी बहुत अच्छा लगता है, औरत की शर्म उसकी पहचान होती है तो मर्द की मर्यादा उसका सम्मान, रिश्ते खूबसूरत चेहरे से नहीं अच्छे संस्कार और व्यवहार से चलते हैं, जो पुरुष अपनी जुबान नजर और व्यवहार में मर्यादा रखते हैं वही हर रिश्ते में सम्मान पाता है। देखिए मर्यादा जो होती है वो किसी स्त्री से या पुरुष से ही संबंधित नहीं है, मर्यादा हर कहीं होती है, प्रकृति में भी हमें मर्यादा दिखती है, नदियां भी एक मर्यादा में जब तक चलती है तब तक वो व्यक्ति के लिए जीवनदायिनी है, वो भी जब अपनी मर्यादा तोड़ देती है तो ऐसे में भयंकर बाढ़ आती है, सब कुछ तहस नहस, सब कुछ बह जाता है। इसी तरीके से स्त्री और पुरुष की मर्यादा भी जब अपनी सीमाएं तोड़ देती है तो फिर बाढ़ ही आती है, इसलिए प्रकृति ने भी जब अपनी मर्यादा बनाई है तो ऐसे में हमें भी जो मर्यादा हमारे लिए तय की गई है नियति द्वारा उसमें हमें

रहते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। कुछ नियति द्वारा तय होती है और कुछ सामाजिक तौर पर तय होती है, कुछ राष्ट्र के तौर पर तय होती है, यानी अलग अलग स्तर पर जो भी मर्यादाएं बनाई जाती हैं उनका हमें पालन करना चाहिए, उस मर्यादा में रहना चाहिए। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला और राजेंद्र, ये लिखते हैं पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। सुनो सभी की, करो मन की। संदेश जिस किसी ने भी जीवन में उतार लिया समझो उसने जग जीत लिया। हर मुश्किल उसके लिए आसान सी लगती है, कठिन से कठिन कार्य भी वो सहजता से पूरा कर सकते हैं, इसलिए सदैव मन के अनुसार किया गया कार्य सदैव सफल होता है। जी हाँ, मन के अनुसार किया गया कार्य सदैव सफल होता है, लेकिन मन सही कार्य के लिए कहे और वो हम करें तब तो वो सही है, लेकिन मन अगर कहे कि किसी व्यक्ति को चलते हुए थप्पड़ लगाना है तो ये सिर्फ मन के कहे के अनुसार नहीं होता है। मन सही कहे और वो हम करें तो ही हमें सही परिणाम प्राप्त हो सकता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल से दिल तक, FM चूरू से।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगले कमेंट हमें भेजने वाले श्रोता है रवि कुमार राहुल, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला से। विधि के नियमों को कोई बदल नहीं सकता, जो लिखा है होकर रहता है। समय के आगे हर इंसान को सिर झुकाना पड़ता है। जिंदगी हमें सिखाती है कि हर सच को स्वीकार करना जरूरी है। सुख और दुख आते जाते रहते हैं, यही जीवन का असली नियम है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि अंत में वही अच्छे कर्म साथ जाते हैं। बिल्कुल सही, अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। एडवोकेट वारिस अली संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से लिखते हैं, किसी से बदला लेने की मत सोचे, क्योंकि पेड़ के खराब फल वक्त आने पर अपने आप गिर जाते हैं। आप बदलाव लाने की सोचें। जी हाँ, जीवन में किसी से बदला लेने की नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि अपने अंदर क्या बदलाव किए जा सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बदले में व्यक्ति बदला तो पता नहीं कब लेता है, लेकिन उसके पहले वो खुद उस बदले की भावना से जलता है। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरान, फारिया ताहिरा लिखते हैं, हम छोटे से कस्बे में रहते हैं, गंगा का किनारा है। गीत और संगीत सुनने का बचपन से शौक है, रेडियो से गहरा रिश्ता है। बहुत अच्छी बात है, आप अभी भी ये कार्यक्रम रेडियो से सुन रहे हैं। और ये श्रोता है चरडोगरी पिपरिया, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से, दुर्गाराम साहू, अजय साहू, जय किशन, श्रीमती कुमारी, श्रीमती इंद्राणी और माया। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु। और ये हमारे अगले श्रोता तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, और ये श्रोता है राघव बघेल। कहाँ से लिखा है ये इन्होंने नहीं लिखा है। गांव जाखुद राजस्थान से शंभुदयाल खटक और विमला खटक। और इसी क्रम में ये श्रोता है राधा नामदेव सारनपुर से, इनके साथ है अपर्णा नामदेव, अभिषेक और हर्षित। और जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। श्रोताओं, ये इस कार्यक्रम के सारे कमेंट्स हमने शामिल कर लिए हैं, और अब चलते चलते आपको सुनवा देते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, FM चूरू से आप सुन रहे कार्यक्रम दिल से दिल तक। हमारा अगला प्रसारण आप सुन पाएंगे आकाशवाणी मुंबई से, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: नमस्कार श्रोताओं, सेहतनामा कार्यक्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे डॉक्टर को जो हेपेटोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट हैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। आप हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, ये अवसर देने के लिए, आपसे बात करने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है?
2: नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। काफी दूर है हमारा हॉस्पिटल से, इतना बड़ा स्टूडियो, इतनी बड़ी जगह, इतनी खुली जगह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफी बड़े स्टूडियोज हैं, फिर सब लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगा
1: जी। आज सेहतनामा कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट की अन्य तमाम बीमारियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर चौथा पांचवा मरीज ऐसा सुनने में आता है और सोशल मीडिया के माध्यम से तो हर कुछ पॉपुलर हो जाता है, मशहूर हो जाता है। तो बताइए कि फैटी लिवर है क्या और इससे कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं?
2: आपने बिल्कुल सही किया, फैटी लिवर अभी बहुत बहुत कॉमन हो चुका है। आपने कहा हर चौथे पांचवे आदमी को फैटी लिवर है, पर मैं कहूंगा हर दूसरे तीसरे आदमी को फैटी लिवर
1: अच्छा।
2: है। अगर आप देखें ओवरऑल फैटी लिवर को, तो कहने में आया है कि बड़े शहरों में जो हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं उनमें अब 30-40% लोगों को ये बीमारी है फैटी लिवर। अगर आप गांवों में चले जाएं, छोटे शहरों में चले जाएं, तो ये बीमारी थोड़ी कम है और इसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। फैटी लिवर का मतलब होता है लिवर के अंदर ज्यादा फैट जमा हो जाना। हमारे लिवर के अंदर फैट होना जरूरी है फॉर बॉडी के कई फंक्शंस के लिए, बट जब ये फैट ज्यादा हो जाता है तब ये लिवर को नुकसान देता है और अगर लिवर खराब हो जाए तो बॉडी के कई और ऑर्गन्स पे ये इफेक्ट करता है। अगर हमारे लिवर के अंदर फैट 5% मतलब 5% से ज्यादा हो जाए तो ये आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है। सबको नहीं, किसी किसी लोगों को ये प्रॉब्लम देता है
1: जी। तो इसके कारण क्या है डॉक्टर साहब, क्यों फैटी लिवर होता है?
2: तो सबसे बड़ा कारण आई थिंक हमारे यहाँ है कि हमारी डाइट, अभी हमारी डाइट काफी सैचुरेटेड डाइट हो गई है। हम वेस्टर्नाइज डाइट हमने अडॉप्ट कर ली है, हम फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट की जब जो मात्रा होती है अगर वो ज्यादा हो तो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो

0: लिवर में फैट करके स्टोर हो जाता है और लिवर को खराब करता है। डायबिटीज होना, प्री डायबिटीज होना, एक्सरसाइज नहीं करना, आजकल सब ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, वॉक करना तो ऑलमोस्ट सबने छोड़ ही दिया है, सबके वजन बढ़ रहे हैं, तो ये कई कारण है जिससे लिवर में फैट ज्यादा होता है और उससे लिवर को नुकसान पहुंच सकता है।
1: तो फैटी लिवर से और कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और एक बात, और दूसरी बात ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है, कैसे मरीज को पता चले कि फैटी लिवर हो गया है उसको?
0: तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम हो रही है। जब पेशेंट हमारे पास आता है ये प्रॉब्लम के साथ, तब काफी लेट हो चुका होता है, ऑलरेडी लिवर पूरी हद तक खराब हो चुका होता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। अगर हम इसको जल्दी पकड़े तो इसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था कि ये क्यों होता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो नॉर्मली इसके लक्षण बहुत कम होते हैं, कभी कभी हमको हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में थोड़ा दर्द हो सकता है, थकान आ सकती है। अगर हम अपने ब्लड टेस्ट चेक करें, उसमें हमको डायबिटीज हो सकती है या प्री डायबिटीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है ब्लड के अंदर, तो ये दो तीन लक्षण है जिससे हमको सोचना चाहिए कि हमको शायद फैटी लिवर हो। क्लियरली अगर आपका वजन बढ़े जा रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि चेकअप करना जरूरी है, क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स होते नहीं है, सिम्टम्स बहुत आगे जाके आते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते।
1: जी, तो क्या है चेकअप का तरीका, क्या होता है डॉक्टर साहब फैटी लिवर का, किस तरह की जांच पद्धति है?
0: तो इस बेसिक चेकअप जो होता है, हमें सादे जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो हम रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि हमको डायबिटीज है कि नहीं, हमारा HbA1c कितना है, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, LDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा वजन कितना है। अगर वजन हमारा बढ़ रहा है या ज्यादा है, हम ओबीस कैटेगरी में आते हैं, जिसमें हम नंबर कैलकुलेट करते हैं BMI, जो हाइट और वेट पे डिपेंड करता है, और अगर वो 23 से ज्यादा हो तो देयर इज अ रिस्क कि आपको शायद फैटी लिवर हो। फिर एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए सोनोग्राफी लगती है, अगर आप पेट की सोनोग्राफी कराओ, कोई और कारण भी कराओ, उसमें अगर लिवर दिखे और उसमें आए कि लिवर फैटी है, तो वो आपकी डायग्नोसिस हो गई फैटी लिवर है। पर ये खाली कह रहा है कि आपको फैटी लिवर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ है। फैटी लिवर कई लोगों को होता है, पूरी जिंदगी लिवर में थोड़ा फैट ज्यादा होता है, पूरी जिंदगी कट जाती है, लिवर को कुछ नहीं होता है। बट ऐसे थोड़े पेशेंट्स हैं जिनको हमको ढूंढना पड़ता है, जिनको आगे जाके ये फैटी लिवर नुकसान देवा दे सकता है। टेस्ट करने के लिए कि कितना लिवर डैमेज है, दो तीन तरह के टेस्ट होते हैं। एक मशीन आती है हमारे ओपीडी में, जिसमें मशीन से लिवर को हाथ लगाते हैं, वो 2 मिनट के अंदर बता देता है कि फैट कितना है पर नुकसान है कि नहीं, क्योंकि अगेन अगर नुकसान है तो उसकी ट्रीटमेंट करने की जरूरत है।
1: जी।
0: कई नए अल्ट्रासाउंड आए हैं जो अगेन लिवर को स्कैन करके बता देते हैं फैट है और डैमेज है कि नहीं। थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज भी है हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि हम काफी ट्रांसप्लांट्स करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो एक MRI करके स्कैन आता है जिससे हम पता करते हैं कि लिवर में डैमेज है कि नहीं, और एक स्पेशल CT स्कैन भी अवेलेबल है। अभी ये सारे जो टेस्ट है सिंपल टेस्ट है, हमको आराम से मिल जाते हैं सब जगह से। अगर आपको चाहिए कि कोई फाइनल टेस्ट हो जो बताए कि कितना लिवर खराब है, तो लिवर बायोप्सी करते हैं, लिवर का एक टुकड़ा लेते हैं। पर मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने लिवर बायोप्सी फैटी लिवर के लिए कब की थी, क्योंकि हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एडवांस हो चुके हैं कि 2 मिनट के अंदर मैं पेशेंट को बता देता हूं कि आपको लिवर में खाली फैट है कि फैट के साथ नुकसान है। बट इसके लिए पेशेंट हैज टू बी एजुकेटेड, पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे ये टेस्ट करने हैं। अगर हमारे पास वो टेस्ट लेके आओगे तो हम आगे आपको टेस्ट करके आंसर दे पाएंगे।
1: जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जरा भी तकलीफ होती है या यूं ही फैट बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अमूमन लोग डॉक्टर के पास जाने में ही परहेज करते हैं, अपने आप ही गूगल के जरिए कुछ कुछ दवाइयां ले लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। खासतौर से उन श्रोताओं के लिए ये बात हम कह रहे हैं जो ग्रामीण इलाकों में, कस्बों में बसते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बड़ी कारगर बातें आपने बताई। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, आपकी पसंद का गाना बताइए।
0: मेरा एक गाना जो बहुत मुझे पसंद है, जब मैं अमेरिका में था काफी साल, 14-15 साल मैंने वहां बिताया।
1: अच्छा।
0: तो यहाँ बॉम्बे का ही हूँ, यहाँ ही पढ़ा लिखा हूँ MBBS की, मगर बाहर जाके ट्रेनिंग की, एडवांस ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की काफी साल। तो 14-15 साल छोड़ के मैं वापस आ गया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ थे। तो वहां मैंने एक सॉन्ग बहुत सुनता था, वो स्वदेश पिक्चर का एक सॉन्ग था, शाहरुख खान का
1: ये जो देश है मेरा।
0: ये सॉन्ग मुझे बहुत बहुत पसंद
1: क्या है। बात है, सुनते हैं यही गाना स्वदेश फिल्म।

0: डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका में रहे बहुत साल, तो किस तरह की पढ़ाई वहाँ पर थी आपकी?
1: तो बेसिक MBBS मैंने यहाँ से की, बॉम्बे से की। फिर वहाँ पे मेरे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ रहती थी, तो मैं वहाँ जाके पहले अपना बेसिक MD मेडिसिन की हमने वहाँ पे, तीन साल का कोर्स होता है वहाँ पे, जो MD मेडिसिन MBBS के बाद करते हैं। फिर उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ पे लिवर के लिए पढ़ाई करूँ एक्स्ट्रा, जो स्पेशल फेलोशिप होती है हेपेटोलॉजी की, जब हम लिवर और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सीखते हैं हाउ टू डू इट, तो मैंने एक साल का कोर्स किया। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्यों मैंने ये फील्ड चूज की थी, मैं बताऊंगा आपको आगे। और सब्सिक्वेंटली पूरी ट्रेनिंग खत्म करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो करते हैं हम, एंडोस्कोपी वो की, एंड फाइनली मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जाके एडवांस एंडोस्कोपी सीखी, जो स्पेशलाइज एंडोस्कोपीज होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ERCP करके टेस्ट होते हैं जो हम हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स पे भी करते हैं, वो सीखी। तो ओवरऑल 8 से 9 साल लगे वहाँ पे पढ़ने को, फिर 4-5 साल उधर काम किया, फिर 14 साल बाद आई डिसाइडेड कि वापस आना चाहिए अपने देश। तो जैसे मेरी माँ कहती है ना, वनवास करके आ गया।
0: अरे क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, और हमारे बहुत सारे युवा श्रोता सुनते हैं प्रोग्राम, तो कितनी अच्छी बात है कि अपने देश की प्रतिभा को वापस अपने देश में आपने दिया। और अपने श्रोताओं को ये बताते हुए हमें अच्छा लग रहा है कि हम निजी तौर पर भी डॉक्टर साहब को जानते हैं, और बड़े अनुभव का खजाना है हमें पता था, लेकिन इतनी सारी नॉलेज का भी खजाना है ये हमें आज पता चला। डॉक्टर साहब, आज फैटी लिवर पे हम पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत सारी पेट की बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। हमें बताइए कि दवाइयों से क्या फैटी लिवर का इलाज संभव हो सकता है, या कोई ऑपरेशन या परहेज कुछ करना पड़ता है?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यू नो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, पेशेंट की एक्सपेक्टेशन देती है कि हम एक दवाई लिख के दें।

तो फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जो अगर जल्दी पकड़े जाए तो इसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बॉडी का 5-10% भी वजन कम कर पाए किस तरह भी, चाहे आप डाइट करो एक्सरसाइज करो, अगर 5-10% अपने वेट कम कर लिया तो बीमारी पूरी तरह से मिट जाती है मोस्ट पेशेंट्स में।

0: छः महीने पहले हुई है। आजकल जो सबसे ज़्यादा दवाई हम यूज़ करते हैं इसके लिए वो है सेमाग्लूटाइड, एक तरह का इंजेक्शन होता है जिससे वेट लॉस होता है, जो आजकल काफ़ी फेमस हो चुका है फॉर गुड एंड बैड रीजंस। तो देर आर मेडिसिन अवेलेबल हैं दवाइयाँ, मगर ये डॉक्टर के देख के डॉक्टर है डिसाइड कि कौन सी दवाई आपके लिए सही है। मेरा मानना होता है कि पेशेंट्स खुद, जैसे आपने कहा, गूगल करके दवाई ले लेते हैं। स्पेशली ये जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि उनमें कभी कभी भस्म होता है, उसमें लिवर को डैमेज करने का और चांस होता है। तो ये दवाइयाँ थोड़ा ध्यान से लेनी चाहिए। अगेन, बिना दवाई के हो सकता है। मेरे हर एक पेशेंट को पहले मैं 3 से 6 हफ्ते का चांस देता हूँ कि वेट लॉस करो। अगर वजन नहीं कम कर पा रहे और नहीं हो रहा है आपका फैटी लिवर रिवर्स, फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, आजकल ये समस्या युवाओं में भी बढ़ रही है, उसका कारण स्ट्रेस है, पढ़ाई का बोझ है, और अगर वो कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उसका बोझ है, तो क्या तनाव भी एक कारण है? एक बात ये बताइए, और साथ में हमें ये भी बताइए कि लिवर के, इस फैटी लिवर के कारण और कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं?
0: हाँ, बहुत सही कहा आपने, फैटी लिवर स्ट्रेस गो हैंड इन हैंड। आजकल मैं देखता हूँ मेरे जो पेशेंट्स आते हैं और फैमिली मेंबर्स भी, उन्होंने 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, स्पेशली पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे रहते हैं। मैं अपने लड़के के बारे में बोलूं, बैठे रहेंगे, वजन बढ़ेगा, एंड यू नो फिर उस टाइम पे कुछ सूझता नहीं है, जो हाथ में आया खा लिया, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, जंक फूड खा लिया, डाइट इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है अभी। तो आई थिंक स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, स्ट्रेस ऑफ जॉब, ट्रैवल, वो सबसे भी अपने बॉडी के हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, जिसमें वेट गेन होना बहुत रैपिडली होता है। फिर वो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम खाना खाते हैं, जो बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग। हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, प्रोटीन कम खाएंगे, यू नो प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, स्विगी ऑर्डर कर लिया, इंस्टा ऑर्डर कर लिया, 5 मिनट में घर पर आ गया, खा लिया और काम खत्म। तो ऑल दीज कैन देन लीड टू फैटी लिवर, एंड देन वंस फैटी लिवर हो गया, देन फैटी लिवर अगेन इज नॉट द प्रॉब्लम। फैटी लिवर अगर आपको है तो कह रहा है कि आपको बॉडी में और प्रॉब्लम होने के चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ये सब वेट से रिलेटेड है, सब फैट से रिलेटेड है। तो लिवर तो बेचारा एक ऑर्गन है जो सब स्टोर कर रहा है, बट उसकी इफेक्ट सारे ऑर्गन्स पे हो सकती है।
1: जी जी, तो ये फैटी लिवर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे हैं, तो फैटी लिवर के बारे में बताया है लेकिन सवाल उन्हें नहीं सूझा, तो मैं ही सब पूछ रही हूँ अपनी तरफ से, उन श्रोताओं की ओर से भी, कि फैटी लिवर पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ी बहुत लापरवाही या असावधानी की वजह से, तो क्या लिवर सोरायसिस या लिवर कैंसर जैसी बीमारियां भी पनप सकती हैं क्या?
0: बिल्कुल, अगर 100 पेशेंट्स को लें, 100 लोगों को लें जिनको फैटी लिवर है और उनको और कोई और बीमारी नहीं है, तो इनमें से 2-3% लोगों को आगे जाके लिवर सिरोसिस होगा। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये मैं डायबिटीज वालों को नहीं बोल रहा, मैं रेगुलर पेशेंट्स को बोल रहा हूँ। अगर आप देखें, हमारी इंडियन पॉपुलेशन इज क्लोज टू 250 करोड़, उसमें अगर आप 3% लोगों को भी लिवर सिरोसिस दे दें, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। बहुत लोगों को लिवर सिरोसिस होता है, एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए वो परमानेंट है, तो लिवर सिरोसिस पेशेंट को फिर लिवर कैंसर होने की संभावना 20-30 गुना ज्यादा होती है। तो लिवर, फैटी लिवर से सिरोसिस होता है, सिरोसिस के साथ आगे कैंसर होने के चांसेस कई जाते हैं।
1: जी जी, डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं अपने श्रोताओं को।
0: दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं एक्सरसाइज के टाइम कभी कभी सुनता हूँ, लाइक थोड़ी बीट सुनी चाहिए, भाग मिल्खा भाग वाला गाना।
1: क्या बात है,
0: मुझे पसंद है।
1: सुनते हैं, फरहान अख्तर पर्दे पर है और अच्छी एक्टिंग करते हैं और भाग रहे हैं सचमुच, तो बेहतरीन गाना चुना है, सुनते हैं यही गाना। और ये भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना सुनते हुए अपने श्रोताओं से ये भी कहना जरूरी है कि बस भागना जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि बैठे बैठे आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, तो कसरत कीजिए और भागिए।

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि क्या आपने जो लिवर सोराइसिस के बारे में जानकारी दी, तो इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह इसका ट्रीटमेंट हो सकता है?
1: जब लिवर सिरोसिस होता है तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, उनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा सिम्टम होता है फटीग, थकान रहना, पूरे दिन थका हुआ रहता है आदमी। कभी कभी फैमिली मेंबर नोटिस करता है कि आंखें पीली हो रही है, येलो हो रही है। कभी कभी पेट फूलना शुरू हो जाता है, वजन कम होता है मगर पेट फूल रहा है, पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है। रेयरली कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, उसमें कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है क्योंकि सिरोसिस के कारण खाने के पाइप में कोई नसें फट जाती हैं। तो ये सारे लक्षण जब आते हैं तो वो कह रहा है आपको कि लिवर काफी हद तक खराब हो गया है, और तभी नॉर्मली पेशेंट डॉक्टर को मिलने आता है।
0: जी, तो इसका इलाज संभव है पूरी तरह या ये एक लाइलाज बीमारी है, हमेशा दवा खानी पड़ती है?
1: नहीं, दवाई तो हमेशा खानी पड़ती है, इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है अगर हमको कोई और कारण पकड़ में आ जाए। कभी कभी सिरोसिस के साथ हेपेटाइटिस होता है जो इंडिया में कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसको हम अगर ट्रीट कर दें तो खराब लिवर को भी बचा सकते हैं और जिंदगी कट सकती है। फैटी लिवर मगर ऐसी बीमारी है जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है अगर आपको

0: प्रोसेस हो जाए, तो आगे जाके धीरे धीरे बढ़ती है। हम बेसिकली उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे खून की उल्टी होना, पेट में पानी बनना, थकान होना, हीमोग्लोबिन कम होना, उसको ठीक कर सकते हैं। पर एक बार सिरोसिस सेट हो गया है तो वो इरिवर्सिबल बीमारी, और फिर आगे जाके हमको मोस्ट पेशेंट्स का लिवर बदलना पड़ता है, लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं।
1: डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि फैटी लिवर से डायबिटीज का क्या संबंध है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि मतलब फैटी लिवर हो गया तो डायबिटीज होना जरूरी है?
0: हाँ, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखा जाए तो अगर आप देखें जिनको फैटी लिवर है उनका हम अगर डायबिटीज का चेकअप करें तो काफी लोगों को प्री डायबिटीज होता है, मतलब डायबिटीज शुरुआत होने की चांसेस है। HbA1c जो बोलते हैं वो 5.7-5.8 होता है। मोस्ट प्लेसेस में अगर आप देखें अब्रॉड, अगर आपका HbA1c 5.6-5.7 है, आपको प्री डायबिटीज है, आपको 10 या 12 साल बाद डायबिटीज शुरू होनी होनी है। इंडिया में फॉर सम रीजन ये हमारा जेनेटिक्स है या कुछ है कि अगर हमको फैटी लिवर है और हमारा HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में, 3 से 4 साल में या 5 साल में आपको डायबिटीज हो सकती है। तो अगर आपको फैटी लिवर है, ये कह रहा है कि आपको आगे जाके डायबिटीज हो सकती है। नाउ उल्टा सवाल, अगर आपको डायबिटीज है तो रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज वेरी हाई। नॉट ओनली रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज हाई, रिस्क ऑफ फैटी लिवर विद कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो डैमेज फाइब्रोसिस बोलते हैं वो काफी हाई होती है। तो अगर आप देखें आजकल के जो डायबिटीज की दवाई शुरू हुई है, जो न्यू दे रहे हैं, जो वेट लॉस ड्रग जो डायबिटीज के लिए एक्चुअली अप्रूव्ड है, वो फैटी लिवर को भी हेल्प करती है।
1: ओके,
0: सो इट वर्क्स बोथ वेज।
1: अच्छा, तो इसके लिए क्या अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि इन बीमारियों से मरीज मतलब उसके चपेट में ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए?
0: ना, अवेयरनेस यही है कि जैसे हमने कहा है खाने पे ध्यान दो। हमारा जो इंडियन डाइट है वो काफी पोअर है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इनटेक, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है। तो अगर हम प्रोटीन बढ़ाएं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट कम करें, तो अपने आप थोड़ा वेट लॉस होगा, मसल मास बढ़ेगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करो, जो मैंने गाना थोड़ी देर पहले बजाया था, भाग मिल्खा भाग, उसका यही है कि भागो, एक्सरसाइज करो। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सबको पूछता हूँ, मेरा पहला सवाल यही होता है कि एक्सरसाइज कर रहे हो, और सबका सवाल सब, आधे लोग बोलते हैं हम वॉक करते हैं। तो वॉक इज नॉट गुड। अगर आप जो भी डेटा देखें तो 150 से 200 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते की जरूरी है अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, जिसमें इट इंक्लूड्स कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिसमें आप वॉकिंग करते हैं, और आपकी सांस फूलनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। आप खाली वॉक करो, काम पे जाओ, स्टेशन तक जाओ, वापस आ जाओ, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सांस फूलनी चाहिए, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए एज अप्रोप्रिएट, और थोड़ी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। हफ्ते में 2 दिन थोड़े वेट्स करने चाहिए जिससे आपका मसल बढ़े। अगर आपका मसल का साइज बढ़ेगा, आपका वेट लॉस जल्दी होगा, डायबिटीज नहीं होगी या कंट्रोल में आएगी, बॉडी का फैट निकलेगा क्योंकि मसल ज्यादा बर्न करेगा एनर्जी को। तो अगेन चेकअप कराते रहिए, बेसिक ब्लड टेस्टिंग का, एक्सरसाइज कर कीजिए 150 मिनट्स मिनिमम अ वीक, खाने में ध्यान दीजिए, प्रोटीन बढ़ाए अपने खाने में, और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए।
1: जी, कई बार लोग, ये भी भ्रांति है, मतलब गलतफहमी है लोगों में कि प्रोटीन खाने से पाचन की समस्या बढ़ती है, एक उम्र के बाद प्रोटीन लोगों को कम कर देना चाहिए, तो दाल कम कर देते हैं लोग, चने खाना, तो इसके बारे में थोड़ा।
0: हाँ, ये अच्छा सवाल है बहुत, क्योंकि जब भी मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको फैटी लिवर है, तो उनके 2 जवाब होते हैं सबके, कि हम तो अल्कोहल पीते नहीं है, क्योंकि सबके मन में भ्रम है कि अल्कोहल से फैटी लिवर होता है, और दूसरा होता है कि हम तो शाकाहारी है, हम तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते। मेरा मानना है कि इन इंडिया बीइंग अ वेजिटेरियन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लिवर डिजीज, बिकॉज वेजिटेरियंस में हम ज्यादा कर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। अगर हमारी डाइट देखे 70-80% कार्ब्स है, 10% फैट होगा, 10-15% प्रोटीन है, और ये वेस्टर्नाइज डाइट देखो तो 30% तक प्रोटीन होता है डाइट में। तो प्रोटीन डाइजेस्ट करना इजी है, इनफैक्ट हमारे जो दालें हैं वो ज्यादा इजी है डाइजेस्ट करना देन अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, जैसे अपने एग्स हो गए, मीट्स हो गए। हम शाकाहारी तो हम नहीं खा सकते, तो ये भ्रम है कि आगे जाके नहीं खाते हम, इनफैक्ट बढ़ाना चाहिए थोड़ा, उससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपकी मसल स्ट्रांग रहेगी, बोन स्ट्रांग रहेंगे, फ्रैक्चर्स होने के चांस कम हो जाते हैं।
1: जी, तो अभी जो भी श्रोता सुन रहे हैं तो अपने डायटिशियन से संपर्क करें या ये खोजें कि कहाँ कहाँ प्रोटीन ज्यादा मात्रा में है, और आज से प्रोटीन की डाइट शुरू करें। इसमें हम भी शामिल हैं, हम अपने को भी शामिल करते हैं इसमें। और अब एक गाना सुने डॉक्टर साहब।
0: बिल्कुल, तो एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है, स्कूल डेज में हमने सुना था जब मेरे 10th खत्म हुई थी, जो जीता वो सिकंदर का गाना, यहाँ के हम सिकंदर।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है और सभी हमारी बातचीत से मेल खा रहे हैं। अगर अपनी सेहत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो जाहिर सी बात है हम अपने क्षेत्र में सिकंदर बने रहेंगे। सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना था, और इस गाने के साथ खुद को सिकंदर बनाए रखने के लिए अपनी सेहत को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अपने श्रोताओं को बता दें, विविध भारती से ये है कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में। हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में है मुंबई के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से कुछ सवाल आए हैं। ये कार्यक्रम विविध भारती के फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है, तो वहां से कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि इरिटेबल बॉल सिंड्रोम क्या होता है। मतलब कई श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने लिखा है कि हमारी माँ को है, किसी ने लिखा है मुझे, किसी ने लिखा है मेरी बहन को है। तो इरिटेबल बॉल सिंड्रोम क्या है, IBS, और कैसा होना चाहिए खान पान इसके लिए?
1: तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रोबेबली फैटी लीवर के बाद सबसे कॉमन, अगर पेट की बीमारी देखें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि पेट फूल जाता है, कभी कभी पेट दर्द करता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कब्जियत हो जाती है, कभी आगे पीछे होते रहता है। और इन पेशेंट्स को हम सारी जांच पड़ताल कर ले, हमको कुछ नहीं मिलता, सारा कुछ नॉर्मल मिलता है। तो लॉट ऑफ टाइम ये स्ट्रेस रिलेटेड रहता है या सिचुएशन रिलेटेड रहता है। जैसे बच्चे हों, उनको अगर एग्जाम देने जा रहा हूँ तो बोलते पेट दर्द कर रहा है, या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, या लूज मोशन शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस में, तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसमें इधर आपको डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट फूलता है, और अगर पेट साफ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली होती है, यू नीड टू फाइंड आउट द स्ट्रेस, ट्रीट द स्ट्रेसर, और डाइट के थोड़ा ध्यान दो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो डाइट में फाइबर ज्यादा लो, फल फ्रूट ज्यादा लो। अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो कच्चा खाना मत खाओ, पका हुआ खाना खाओ, थोड़ा ब्रेड्स खाओ, राइस खाओ, जिससे पेट थोड़ा बन जाए।
0: ये है। और बाकी नॉर्मल किस तरह की तकलीफ होती है, वोमिटिंग और जो एसिडिटी की समस्या भी होती है इससे?
1: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अलग बीमारी है, एसिडिटी अलग बीमारी है। एसिडिटी होता है जब हमको खाने के पाइप में या पेट में या छाती में जलन होनी थी है, वो खाने के बाद हो सकती है, खाली पेट हो सकती है, सोने के बाद होती है, खाना हम लेट खाएं और लेट जाएं और छाती में जलन होती, तो उसको एसिडिटी या गर्ड बोलते हैं। एक बात आपने सही की कि ये IBS गर्ड पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सबकी एक हमको एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म। एसिडिटी मतलब जलना, पेट के ऊपर के हिस्से में जलना, छाती में जलना, कभी कभी उसे खांसी भी हो सकती है, कभी कभी खाना अटकता है गले में, ऐसे लग रहा है, तो उसको एसिडिटी बोलते हैं। IBS होता है पेट फूलना, छाती के नीचे का प्रॉब्लम है वो, पेट फूलना, लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना। तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमको काफी सवाल पूछने पड़ते हैं कि एक्चुअली बीमारी क्या है, क्योंकि इंडिया में सॉर्ट ऑफ हो गया कि सब बीमारी इज एसिडिटी। हर एक बीमारी, अगर लूज मोशन को एसिडिटी बोल देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को एसिडिटी बोल देते हैं, पर एसिडिटी इज अ सेपरेट प्रॉब्लम।
0: जी।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हम जानना चाहते हैं कि दरअसल डॉक्टर साहब, कुछ मरीज को ये समस्या भी होती है कि उन्हें जलन नहीं महसूस होती है, एसिडिटी फील नहीं होता है, लेकिन फिर उनको ऐसे लगता है ऊपर ऊपर कुछ आ रहा है और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कई कई वॉमिटिंग, तो ये क्या?
1: हाँ, तो ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ एसिडिटी ओनली। इसमें बेसिकली खाना ऊपर चढ़ के आ रहा है
0: जी।
1: तो जो हमारे खाने का पाइप होती है, इसोफेगस जिसको बोलते हैं, और पेट होता है, उसके बीच में एक वाल्व होता है। किसी किसी का ये वाल्व लूज हो जाता है विद टाइम, उसके कई कारण होते हैं। उसके बाद अगर हम हैवी खाना खा लें तो वो खाना ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, वो शायद ना जले मगर ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, मुंह में आएगा, कभी कभी मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, कभी लेट खाना खाओ लेट जाओ तो रात को उठना पड़ता है क्योंकि खट्टा पानी ऊपर आ गया है और खांसी शुरू हो गई है। तो इसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं, मतलब जो पेट का खाना है, जो पेट के नीचे जाना चाहिए, वो अभी वापस खाने के पाइप में आ गया है
0: जी। तो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है?
1: तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट तो हम वही करते हैं कि खाना टाइम पे खाओ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो। सबसे इंपॉर्टेंट है खाने में और सोने में 3 घंटे का गैप रखिए। खाने के बाद टहलिए थोड़ा, 10-15 मिनट तक खाना नीचे चले जाए। दूसरी चीज कहूंगा, जो चीज आपको लग रहा है आपको तकलीफ दे रही हो, तो किसी किसी को स्पाइसी फूड तकलीफ देता है, तला हुआ तकलीफ देता है, या ज्यादा पानी नहीं पीना खाने के साथ, जैसे बहुत लोग आजकल कोका कोला पीते हैं या एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं खाने के साथ, तो वो फिर गैस ऊपर चढ़ के आती है और खाना भी उसके साथ चढ़ के आता है। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लेट नाइट मील्स मत खाओ, जो चीज आपको तकलीफ देती है वो मत लो, दैट शुड हेल्प योर सिम्टम्स। अगर इसके बावजूद नहीं ठीक हुआ फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
0: जी जी, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने तो हर किसी को सुना है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इसकी जांच की कोई व्यवस्था है कि कैसे पता चले कि एसिडिटी है, क्या वजह, कारण क्या है, असली कारण क्या है?
1: हाँ, तो ये भी बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि मोस्ट टाइम्स हम देखते हैं पेशेंट फार्मेसी के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, एक दवाई ले ली, वो लेते रहते हैं। बट ये दवाई भी लंबे देर तक लेना नहीं चाहिए। दूसरा, थोड़े सवाल हम पूछते हैं पेशेंट्स को, जैसे अगर खाना अटके, जब खाओ खाना अटके तो वो सही नहीं है, मतलब आपको एसिडिटी इतनी होगी कि खाने की पाइप छोटी होगी, तब हमको एंडोस्कोपी से देखना पड़ता है।
0: जी जी।
1: खाना अटकना लगे, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाए, वजन कम हो, या आफ्टर द एज ऑफ 40-50 थोड़ा एज हो गई हो और फिर सडनली न्यू सिम्टम शुरू हो जाए, या खांसी हो रही हो रात भर, तब उस टाइम पे दीज आर व्हाट वी कॉल अलार्म सिम्टम्स। अलार्म सिम्टम्स मतलब ये जब पेशेंट हमको बोलना शुरू करता है तब हमारे सॉर्ट ऑफ एंटीना ऊपर चढ़ जाते हैं कि ये भी देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, तब हम एक एंडोस्कोपी करके देखते हैं खाने के पाइप में और पेट में कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है।
0: और डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कुछ मरीज को हमने ये भी सुना है कहते हुए कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए और सारे ट्रीटमेंट कर लिए, सारी दवाएं खा ली लेकिन कुछ नहीं हुआ, और मैं तो अभी योगा एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, मतलब ये अमूमन लोग कहते हैं, तो फिर क्या होता है? और कई लोगों ने तो ये भी कुछ एक वायरस, एच पायलोरी नाम का वायरस होता, उसकी भी जांच नॉर्मल है, फिर क्या?
1: हाँ, तो एक्चुअली एच पायलोरी एक कॉमन इन्फेक्शन है जो पेट के लाइनिंग में रहता है, पर एक्चुअली जिसको एच पायलोरी होता है उसको छाती की एसिडिटी कम होती है, क्योंकि ये जो ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिड बनने नहीं देता है।

0: इनफैक्ट अगर हम एंडोस्कोपी एसिडिटी के लिए कर रहे हैं गर्ड के लिए जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स डिजीज, तब हम एच पायलोरी को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। अगर पेट में जलन हो रही है, मतलब छाती में नहीं बोल रहा, खाली पेट में दुख रहा है या पेट में जलन हो रही है, तब हम एंडोस्कोपी करके या कोई स्टूल टेस्ट करके या ब्रेड टेस्ट करके एच पायलोरी को ढूंढते हैं। अगर एच पायलोरी मिले उसको ट्रीट करें तो काफी लोगों के पेट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। बट जस्ट बिकॉज हमको एच पायलोरी मिला डज नॉट मीन के दैट इज द फाइनल प्रॉब्लम। बहुत बार पेशेंट को अगेन सिम्टम्स होते हैं, पेट में जलना, अच्छा नहीं लगना, दर्द करना, पर हमने एंडोस्कोपी कर ली, ब्लड टेस्ट कर लिए, सारा कुछ नॉर्मल है, तो ये बीमारी को हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं। जैसे IBS बोला मैंने पहले,
1: जी, जी, जी.
0: सब टेस्ट कर लिए कुछ नहीं मिला, ये ऊपर के पेट की बीमारी डिस्पेप्सिया, मतलब आपको दर्द हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं मगर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो उसको हम सिम्टोमेटिकली मैनेज करते हैं, जो तकलीफ है उसकी दवाई दे दो।
1: जी, तो इसका कुछ मतलब इसका फिर इलाज संभव होता है, इसकी दवा दी?
0: ऑफ कोर्स इसकी दवा होती है, तो मोस्ट टाइम्स हम एसिडिटी की दवाइयों से शुरू करते हैं। अगर एसिडिटी की दवाई ना हो तो हम सॉर्ट ऑफ पेशेंट को पूछ के ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कोई फूड ट्रिगर होता है, कभी कभी फूड एलर्जीज होती है, जैसे एक तरह की गेहूं की एलर्जी इंडिया में अभी ज्यादा आ रही है, सीलिएक डिजीज बोलते हैं, जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये स्ट्रेस रिलेटेड भी रहती है, तो वन ऑफ द मेडिसिन वी गिव पेशेंट्स इज स्ट्रेस कम करने की, एंग्जाइटी कम करने की मेडिसिन देते हो, वो लॉन्ग टर्म ले सकते हो, उससे माइंड काम होता है तो पेट काम होता है। माइंड एंड स्टमक आर कनेक्टेड, उसको गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। अगर पेट ठीक नहीं होगा तो मन ठीक नहीं होता, इसी तरह अगर मन ठीक नहीं हुआ तो पेट ठीक नहीं होगा,
1: दोनों एक दूसरे के पूरक है।
0: Correct.
1: और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब बहुत सारे मन को ठीक करने के लिए कई बार हम संगीत का दामन थाम लेते हैं, तो एक गाना सुनते हैं और यहाँ पर अपने सारे श्रोताओं के मन को ठीक किया जाए।
0: तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, अगेन शाहरुख खान का ही गाना है, छैया छैया।
1: चल छैया छैया सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये बात जो चल रही थी एसिडिटी की, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मैंने देखा है कि महानगरों में ये समस्या ज़्यादा होती है, छोटे शहरों में जब जाते हैं तो लोगों को हम कम सुनते हैं ऐसा कहते हुए। तो एक तो ये बात बताइए कि ये जो समस्या है एसिडिटी की, कि सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, तो क्या इन बीमारियों के लिए जो दवाएं खाई जाती हैं एसिडिटी की, लोग गोली खा लिए, कुछ लोग तो ये भी ट्राई करते हैं कि 2 दिन के गैप के बाद खा लो ठीक रहेगा, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, ठीक है या नहीं करना चाहिए?
1: हाँ, तो बेसिकली कभी भी हम ये दवाई दें ना, तो हमेशा एंड पॉइंट होना चाहिए कि कब ये दवाई बंद करें। तो मोस्ट टाइम्स हम पेशेंट्स को ये दवाई बंद करने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट है वो रेगुलेटेड नहीं है। आप जाके दवाई मांगो, आपको दे देंगे दवाई। तो ये बाहर के मुल्कों में संभव नहीं है, बिकॉज ये दवाइयाँ के साइड इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसिडिटी की दवाई अगर ज़्यादा देर तक लेते रहो तो बोन लॉस होता है, किसी किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। पेट में थोड़ा एसिड तो चाहिए डाइजेशन के लिए, तो कभी कभी पेट के इन्फेक्शन होने के रिस्क भी ज़्यादा रहते हैं। विटामिन न्यूट्रिएंट्स जो पेट से अब्जॉर्ब होते हैं पेट के आगे से, वो नहीं होंगे, जैसे B12 डेफिशिएंसी हो जाए। कभी कभी आयरन भी कम हो जाता है दवाई लंबे देर तक लेने के लिए, तो रेयरली ये किडनी को भी इफेक्ट करता है। तो ये दवाइयाँ जरूरी हैं। है हमारे काफ़ी ऐसे पेशेंट जो सालों साल लेते हैं, मगर वी हैव टू फाइंड अ वैलिड रीजन कि इनको क्यों चाहिए ये दवाई। जितना हो सके हमको दवाई बंद करनी चाहिए। काफी लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे अपने का दवाई दूसरे दिन तीसरे दिन ले लेते हैं, उसको ऑन डिमांड मेडिसिन बोलते हैं, विच इज प्रॉब्ली अ गुड वे टू डू, कि अगर आपको हमेशा जरूरत नहीं तो क्यों लोगे। मैं कई पेशेंट्स को कहता हूं कि एक बार आपका कोर्स खत्म हो जाए, सपोज आपने रात को खाना खाने जाना है, शादी पे जाना है, खाना लेट होने वाला, आपको पता है आपको रात को तकलीफ होगी, तो शादी के जाने के पहले एक गोली

0: देते हो जाओ.
1: जी जी
0: सो दैट इज कॉल्ड ऑन डिमांड मेडिसिन, विच इज प्रॉब्ली बेटर देन टेकिंग अ मेडिसिन रोज.
1: जी, लेकिन वो आदत न डालने, ये गड़बड़ है. और ये एक जो समस्या उल्टी के बारे में, उल्टियां होती हैं कुछ मरीज को, फिर रुकती नहीं है उल्टियां, तो क्या वो भी इसी वजह से होती हैं? ये किस तरह की बीमारी का द्योतक है?
0: अगर कंटिन्यूसली पेशेंट्स को उल्टी होता रहे तो दैट इज अ इंडिकेशन कि हमको एक बार एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या
1: जी,
0: है. इसके कई कारण हो सकते हैं, अगेन माइंड से लेके पेट से लेके. आजकल हम ज़्यादा देखते हैं डायबिटीज पेशेंट्स को, जैसे डायबिटीज पेशेंट्स को अगर डायबिटीज बहुत देर तक हो जाए तो जो मेन नसें होती हैं जो पेट को स्टिमुलेट करती हैं, जब हम खाना खाते हैं तो पेट हिलना शुरू करता है, तो डायबिटीज पेशेंट को पेट हिलता नहीं है इतना, तो उसको गैस्ट्रोपरीसिस बोलते हैं कि पेट जो खाना खाया है वो पेट में ही रहता है और थोड़ी देर के बाद वॉमिट हो जाती है. अगेन स्ट्रेस से भी हो सकती है, एंग्जाइटी से वॉमिटिंग, किसी किसी को पेट में अल्सर हो सकता है जिसके कारण पेट की जो एंड पॉइंट है जहाँ से खाना इंटेस्टाइन में जाता है वो छोटा हो जाता है, तो खाना उधर अटक के वॉमिट हो जाता है. एंड रेयरली अगर वॉमिटिंग जारी रहे तो वी हैव टू थिंक अबाउट अदर प्रॉब्लम लाइक कैंसर्स ऑफ द इंटेस्टाइन आल्सो.
1: तो मतलब किसी भी बीमारी को, मतलब पेट से संबंधित ये जो एसिडिटी की समस्या है, छोटी समस्या लगती है लेकिन इग्नोर न करें, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर क्या कहते हैं वैसा करें.
2: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग. इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय. रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी. विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान.

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की

0: बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, यह है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रही हैं FM 100.7 MHz पर। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

अब से थोड़ी देर बाद 11:05 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दिन में 12:00। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा माटी के स्वर दिन में 12:30 पर। कलाकार होंगे लक्ष्मण सिंह आजाद एंड पार्टी। हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर से रिले करेंगे दिन में 1:00। 1:05 पर आप सुनेंगे महिला जगत। चर्चा होगी जाने पारंपरिक और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के फायदे, सहजन का सेवन करें अनेक बीमारियों का नाश, प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है सत्तू। जानकारी दी जाएगी पीएम 1500 कार्यक्रम में ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी। दिन में 2:00 मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने।

शाम 4:58 पर हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी। युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युवाणी शाम 5 बजे। चर्चा होगी संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, पढ़ाई के साथ अपने सपनों पर वर्क करें युवा। शाम 5:55 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। शाम 6 बजे हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। फिल्मी देशभक्ति गीत आप सुनेंगे शाम 6:10 पर। शाम 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर से रिले करेंगे। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा किसान वाणी शाम 7 बजे। चर्चा होगी कृषि में कम लागत अधिक उत्पादन तकनीक, पशु आहार और पोषक तत्व।

राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे शाम 7:30 पर। रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा गुलदस्ता। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे News@9 हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे

हेलो चुरू फोन इन रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम का पुनः प्रसारण रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कोई मिल गया, सुनिए इस फिल्म का शीर्षक गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और चित्रा की। गीत रचना इब्राहिम अश्क की है और संगीत रचना राजेश रोशन की।

कितने दूर कितने पास, सुनिए इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की। गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत रचना है संजीव दर्शन की।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
4: अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाश

आकाशवाणी के चूरू केंद्र से FM 110.7 MHz पर। लीजिए कार्यक्रम के अगले पायदान पर सुनिए अभिजीत और नीरजा पंडित को। फिल्म का नाम है खूबसूरत।

कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों को सुनिए। फिल्म का नाम है कोयला। गीत रचना इंदिवर की है और संगीत रचना राजेश रोशन की।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

ये आवाज है लता मंगेशकर के, साथ देंगे सुरेश वाडकर। फिल्म का नाम प्यासा सावन। बोल संतोष आनंद के और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ये आवाज है लता मंगेशकर की, साथ देंगे सुरेश वाडकर। फिल्म का नाम प्यासा सावन, बोल संतोष आनंद की और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इसे गरीबों का पौष्टिक आहार भी कहा जाता है, क्योंकि ये कम लागत में शरीर को भरपूर ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है। आज के समय में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण सत्तू की लोकप्रियता जो है वो फिर से बढ़ने लग गई है बहनों। इससे अनेक स्वास्थ्य लाभ जो है वो भी मिलते हैं और इसे एक आदर्श हम कह सकते हैं, खाद्य पदार्थ जो है वो कह सकते हैं। सबसे पहले अगर लाभ की बात करें तो सत्तू जो है वो ऊर्जा का उत्कृष्ट स्रोत है। इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है, आयरन है, कैल्शियम है और कई आवश्यक खनिज तत्व जो है वो पाए जाते हैं। और सुबह के समय सत्तू का सेवन करने से पूरे दिन शरीर को ऊर्जा मिलती है और थकान कम महसूस होती है। और यही कारण है कि खेतों में काम करने वाले जो किसान होते हैं, जो ज्यादा मेहनत कश लोग होते हैं, वो लंबे समय से इसे अपने आहार का हिस्सा जो है वो बना के रखते हैं। सत्तू के और भी क्या क्या गुण है, ये किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले सुनेंगे प्यारा सा गीत।

बहनों, हम बात कर रहे थे गाने से पहले कि प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है सत्तू, और गर्मियों के मौसम की बात करें तो सत्तू जो है वो विशेष रूप से बहुत लाभकारी होता है। सत्तू का शरबत शरीर को ठंडक देता है, लू से बचाने में सहायक होता है और शरीर में जो पानी की कमी होती है उसे दूर करने में भी मदद करता है। निर्जलीकरण की जो संभावना होती है उसे कम करता है, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो है गर्मी के दिनों में सत्तू का घोल जो है वो पीना बहुत पसंद करते हैं। बात करें वजन की तो वजन कंट्रोल करने में भी सत्तू की भूमिका अहम होती है। इसमें मौजूद फाइबर प्रोटीन लंबे समय तक पेट भरा होने का एहसास दिलाते हैं, इसलिए बार बार भूख नहीं लगती, और जब बार बार भूख नहीं लगती है तो हम कुछ खाते नहीं है उल्टा सीधा, जिसके कारण अनावश्यक जो भोजन है वो करने से हम बचते हैं और हमारा वजन जो है वो संतुलित रहता है। स्वस्थ तरीके से वजन को कम करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो सत्तू आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प जो है वो हो सकता है। सत्तू मधुमेह के रोगियों के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। इसका ग्लाइसेमिक प्रभाव जो है वो अपेक्षाकृत कम होता है, जिसमें रक्त में शर्करा स्तर तेजी से नहीं बढ़ता। हालांकि मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों को अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही इसका सेवन करना चाहिए। बहनों, इसके अलावा सत्तू जो है वो हृदय स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें वसा की मात्रा बहुत कम होती है और आवश्यक पोषक तत्व जो है वो बहुत होते हैं, जो कि शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। प्रोटीन की अच्छी मात्रा होने के कारण ये हमारी जो मांसपेशियां होते हैं उनके विकास और शरीर की मरम्मत के लिए भी सहायता प्रदान करता है। और हम तो यही कहेंगे बहनों कि सत्तू जो है वो एक सस्ता है, अत्यंत पौष्टिक खाद्य पदार्थ है। ये हमें ऊर्जा प्रदान करने, हमारे पाचन को सुधारने, शरीर को ठंडक देने, साथ ही साथ हमारे वजन को नियंत्रित रखने और कुल मिला के हम कहें कि समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होता है। आधुनिक जीवन शैली में यदि सत्तू को हम नियमित आहार का हिस्सा बना लें तो ये हमारे लिए एक स्वास्थ्यवर्धक जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जो है वो हो सकता है। तो आज से ही सोच लीजिए कि कौन से अनाज को आपको भून के और सत्तू बनाना है, जो बच्चे भी पसंद करें, घर में जो और मेंबर है वो भी पसंद करें, और एक गिलास आपको पीना ही पीना है ताकि स्वास्थ्य आपका जो है वो बेहतर बन सके।

महिलाएं सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से पहले मिडडे न्यूज, फिर 2:15 पर दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

कृषि पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित

0: उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
1: मैदाब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूड़ी का ही होता है। तो मरूड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
2: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये कार्यक्रम आज एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
3: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
3: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
3: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा है

0: कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: They all constitute an important threats for us.
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमरीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इसमें श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमरीका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमरीका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: घटनास्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
4: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने

0: आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरु मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने। राजकुमार फिल्म का गीत सुनिए, गायिका है लता मंगेशकर।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: आप सुन रहे हैं तराने नए पुराने, कुछ ना कहो। सुनिए इस फिल्म का गीत, आवाजें शान और साधना सरगम की।

आप सुन रहे हैं तराने नए पुराने। आए दिन बहार की सुनिए इस फिल्म का गीत, गायिका है लता मंगेशकर।

लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम के गाए फिल्म हम आपके हैं कौन के इस गीत के साथ ही अब आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के 3 बजे हैं। अब हमारी आज की पहली सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 4:58 पर दूसरी सभा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा अब आरंभ होती है। आइए सुनते हैं हमारे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट प्रोग्राम युवाणी में, जहां आज आप सुनेंगे आपके रेडियो दोस्त कोमल दैया को। युवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी जो है वो स्वस्थ, खुश और अपने लक्ष्यों की ओर पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों, यूथ जो है वो टाइम होता है जब सपनों को उड़ान मिलती है, नई सोच जन्म लेती है और भविष्य की मजबूत नींव रखी जाती है। युववाणी का हमारा उद्देश्य भी यही होता है कि हम युवाओं तक ऐसी जानकारियां या फिर प्रेरणादायक विचार या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करें ताकि उनके व्यक्तित्व और करियर के निर्माण में हम भी कहीं अपना जो है वो कहीं ना कहीं सहायक बन सके। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हमारा खास सेगमेंट रहता है मंगलवार को आपका कल, जिसमें हम अपने आने वाले कल के बारे में, अपने करियर से जुड़ी बातें जो है वो आपके साथ करते हैं और साथ ही आज का जो एक विशेष दिन है उसके बारे में भी आपके साथ बात जरूर करेंगे। और आज का जो विशेष दिन है दोस्तों, वो है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, जो कि हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। और ये दिवस जो है वो उन लोगों को समर्पित किया जाता है जो समाज, देश की जो सेवा उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जन कल्याण के लिए निरंतर जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं और अच्छे अच्छे काम जो है वो अपने देश के लिए करते रहते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं कि आज का संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो 23 जून को मनाया जाता है, और अगर हम बात करें कि जब भी हम लोक सेवा शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में जो है वो सरकारी सेवाओं की छवि उभरती है, लेकिन वास्तव में जो है वो लोक सेवा का अर्थ है जनता की भलाई के लिए समर्पित जो कार्य है उसको करना। ये सिर्फ जो है वो एक नौकरी नहीं है बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी निभाने का एक माध्यम होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है वो 2002 में 23 जून को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे के रूप में मनाने का जो निर्णय है वो लिया था, और इसका यही उद्देश्य था कि दुनिया भर में लोक सेवाओं के महत्व को उजागर करना और उन लोगों को सम्मानित करना जो समाज के विकास के रूप में अपना जो योगदान है वो दे रहे हैं। और किसी भी देश की प्रगति जो है वो उसके नागरिकों और उसकी प्रशासन व्यवस्था पर ही निर्भर करती है, ये तो अब हम जानते हैं। अगर लोक सेवाएं मजबूत हो तो शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, कानून व्यवस्था और विकास की जो योजनाएं हैं वो भी जो है वो प्रभावी रूप से हमारे तक पहुंच सकती हैं, लोगों तक पहुंच सकती हैं। और यही कारण है दोस्तों कि लोक सेवा को किसी भी राष्ट्र की रीढ़ कहा जा सकता है। आज के दौर में हम देखें कि लोक सेवा का स्वरूप जो है वो भी तेजी से बदल रहा है। पहले जहां सरकारी कार्य में लंबी लाइनें, लंबी प्रक्रिया और ज्यादा टाइम लगता था, वहीं अगर हम देखें तो जो डिजिटल टेक्निक है उसने इन सेवाओं को और भी ज्यादा जो है वो पारदर्शी और सरल बना दिया है। ऑनलाइन आवेदन है, डिजिटल भुगतान है, ई गवर्नेंस है और भी बहुत सारी विभिन्न जो मोबाइल एप्स है उनके माध्यम से जो है वो आम नागरिक को जो है वो घर बैठे सुविधाएं मिल रही है। युवाओं के लिए ये दिन और भी ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि इसमें आज के हम देखते हैं कि देश के लाखों युवा जो है वो प्रशासनिक सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, न्यायपालिका और बहुत सारे जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनमें अपना करियर बनाने का सपना भी देखते हैं। तो इसका कारण सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि समाज में जो एक पॉजिटिव बदलाव लाने की इच्छा है वो भी यूथ के अंदर होती है। अगर हम भी लोक सेवा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप भी जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने अंदर जो है वो सेवा भावना विकसित करें। एक अच्छा लोक सेवक वही होता है जो ईमानदारी, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ जो अपने कर्तव्य हैं उनका पालन करता है। जैसे हम देखें, ज्ञान और योग्यता जो है वो तो हमारे लिए जरूरी होता ही है, लेकिन लोगों की समस्याओं को समझने में, उनका

समाधान करने की भावना उससे भी ज्यादा जो है वो जरूरी हो जाती है। तो दोस्तों भारत में भी कई ऐसे लोक सेवक जो है हुए हैं जिन्होंने अपने काम से जो है वो समाज में मिसाल कायम की है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी लोगों की सहायता की है और ये साबित किया है कि एक समर्पित व्यक्ति जो है वो व्यवस्था में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। और ऐसे लोगों की कहानियां जो है वो हमें मोटिवेट करती हैं कि हम अपने कार्य क्षेत्र में कितना बेहतर योगदान जो है वो दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो है वो हमें ये भी याद दिलाता है कि सुशासन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती बल्कि एक जो जागरूक नागरिक होता है उसके रूप में भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम नियमों का पालन करें, अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी समझें और समाज के विकास में जो अपनी भागीदारी है उसको भी पूरी तरीके से निभाएं। आज जब हम दुनिया जो है वो अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है दुनिया में, तो जैसे देखें हम कि जलवायु परिवर्तन है, स्वास्थ्य संकट है, बेरोजगारी है और भी सामाजिक असमानताएं हैं। ऐसे समय में अगर हम देखें कि प्रभावी लोक सेवाओं की जो आवश्यकता है वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है और सक्षम और संवेदनशील जो लोक सेवक हैं इन चुनौतियों को सामना करने में अपनी भूमिका जो है वो भी अच्छी तरीके से निभाते हैं। इसलिए युवाओं के लिए एक और ये संदेश जाता है इसके जरिए कि अगर आप किसी सरकारी सेवा में भी नहीं हैं तब भी आप एक लोक सेवा की भावना को अपने जीवन में अपना सकते हैं। जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना, शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना या फिर समाज में जो भी समाज के हित में कोई काम है सकारात्मक पहल करना जो है वो भी एक लोक सेवा के रूप में ही मानी जाती है। तो दोस्तों सफलता केवल जो है वो व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं मापी जाती बल्कि इस बात से मापी जाती है कि जो आपने जो है वो समाज और देश के लिए क्या योगदान दिया है अपनी तरफ से। लोक सेवा में हमें जो है वो यही सिखाती है कि व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर हम जो सामूहिक हितों के लिए काम करते हैं वही हमारी सच्ची प्रगति का एक मार्ग जो है वो बना हम देख सकते हैं। तो दोस्तों हमें भी इस संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के अवसर पर जो है वो एक संकल्प लेना चाहिए कि अपने क्षेत्र में ईमानदारी, जिम्मेदारी और सेवा भावना के साथ काम करेंगे, साथ ही समाज और देश के विकास में अपना जो सकारात्मक योगदान है उसको देने का भी प्रयास करेंगे। क्योंकि दोस्तों जितना हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जितना काम करेंगे, अपने यूं कहें कि जितना विकास कर सकते हैं, जितनी पॉजिटिविटी से हम योगदान दे सकते हैं उतना ही हम यूं कहें कि अपना योगदान अपने समाज और देश को दे सकते हैं। तो दोस्तों बातें भी प्रोग्राम में यूं ही जारी है, फिलहाल आपको लिए चलते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक की ओर। बने रहिए हमारे साथ प्रोग्राम युववाणी में।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रोग्राम चल रहा है वाणी। दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, जो 23 जून को मनाया जाता है, और उससे पहले हमने कल 22 जून को जो है वो मनाया था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। दोस्तों, हमारी धरती जो है उस पर जीवन का हर रंग, हर रूप और हर जीवन अपना जीव जो है वो अपने आप में अनमोल है। कहीं रंग बिरंगे फूल हैं, कहीं घने जंगल हैं, तो कहीं विशाल समुद्र, जो कहीं दुर्लभ जो जीव जंतु हैं वो देखने को मिलते हैं। और यही विविधता जो है वो हमारी पृथ्वी को और भी खूबसूरत और जीवन जीने के यूँ कहें कि अनुकूल बनाती है। तो दोस्तों, इसको ध्यान में रखते हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की, जो कि 22 मई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों की यूँ कहें कि प्रकृति, जैव विविधता और महत्व के प्रति जागरूक करना है। जैव विविधता का अर्थ है कि पृथ्वी पर जो भी मौजूद हैं, सभी प्रकार के जैसे जीव जंतु हैं, पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं और उनके जो भी प्राकृतिक आवास हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि प्रकृति ने हमें बहुत ही अनगिनत उपहार दिए हैं। भोजन है, स्वच्छ हवा, पानी और भी जैसे कहें कि औषधियाँ हैं, जीवन जीने के लिए जो भी हमें ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी संसाधन हैं, वो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। लेकिन बढ़ता जो प्रदूषण है, वनों की कटाई है, जलवायु परिवर्तन है और प्राकृतिक जो संसाधन है उसके ज़्यादा दोहन के कारण जो जैव विविधता है वो लगातार खतरे में पड़ती जा रही है। तो दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार जो है वो पृथ्वी पर लाखों प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कई ऐसी हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। अगर कोई प्रजाति एक बार समाप्त हो जाती है तो उसे वापस लाना लगभग असंभव होता है। लेकिन जैव विविधता केवल जानवरों और पौधों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन और हमारी अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी होती है। कृषि है, मत्स्य पालन, पर्यटन, औषधि उद्योग, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो जैव विविधता पर निर्भर करते हैं। अगर प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है तो इसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जैसे हम एक उदाहरण ले मधुमक्खियों का, जैसे ये छोटे छोटे जीव जो है परागण की प्रक्रिया में बहुत ही यूं कहें कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर मधुमक्खियां ना रहें तो अनेक फसलों का जो उत्पादन है वो भी प्रभावित होता है। और इसी प्रकार हर जीव जो चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो और चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रकृति के संतुलन में अपनी भूमिका जो है वो निभाता है। और भारत जो है वो जैव विविधता की दृष्टि से दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक माना जाता है। यहाँ हिमालय के बर्फीले क्षेत्र से लेकर पश्चिमी घाट के घने जंगलों तक, सुंदरबन के मैग्रोव वनों से लेकर थार मरुस्थल तक बहुत सारे यूं कहें कि पारिस्थितिक तंत्र जो है वो पाए जाते हैं। और यही कारण है कि भारत में हजारों प्रकार के पौधे, पक्षी, वन्य

जीव जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जब जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, तब जैव विविधता का संरक्षण और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वस्थ वन, प्राकृतिक पारिस्थितिक जो तंत्र है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके पृथ्वी के तापमान को और भी नियंत्रित करने में मदद

पेड़ पौधे लगा सकते हैं, प्लास्टिक के उपयोग को कम कर सकते हैं, जल और ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, साथ ही जो वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधन है उनके संरक्षण के प्रति जो वो खुद भी जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें, साथ ही पर्यावरण संरक्षण से जुड़े बहुत सारे अभियान जो है उनमें भाग लेना चाहिए। तो दोस्तों, सोशल मीडिया के इस दौर में अगर युवा पर्यावरण जागरूकता फैलाने का एक मजबूत माध्यम बन सकते हैं, तो एक छोटी सी यूं कहें कि पोस्ट से या एक जागरूक अभियान से या फिर किसी भी पर्यावरणीय जो पहल है उसमें भागीदारी अगर हम निभाते हैं तो समाज में एक बड़ा संदेश दे सकते हैं। और यह भी यूं कहें कि ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जैव विविधता का संरक्षण जो है वो केवल सरकार या फिर वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जब तक आम नागरिक प्रकृति के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे तब तक जो है यूं कहें कि संरक्षण के प्रयास जो है वो पूरी तरह से सफल नहीं हो सकते। यानी कि हर एक इंसान को जो है वो पर्यावरण के प्रति जो है जागरूक होना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी जैव विविधता को संरक्षण में लाकर और अपने समाज को अपने पर्यावरण को जो वो संतुलित बना सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय यूं कहें कि जैव विविधता दिवस जो है वो भी हमें यही संदेश देता है कि जो पृथ्वी है वो सिर्फ मनुष्यों की नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले प्रत्येक जीव का इस ग्रह पर समान अधिकार है। प्रकृति और मानव जो है वो जीवन एक दूसरे की गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी तो हमारा भविष्य ही सुरक्षित रहेगा। अक्सर कहा भी जाता है कि हम पृथ्वी अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं लेते बल्कि इसे अपने आने वाली पीढ़ियों से उधार लेते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ समृद्ध और पर्यावरण जो है वो छोड़कर जाएं। इस अंतर्राष्ट्रीय यूं कहें कि जो ये जैव विविधता दिवस है उस पर हम ये देखते हैं कि प्रकृति के संरक्षण में अपनी भूमिका हमें निभानी चाहिए, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनना चाहिए, साथ ही जैव विविधता को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो हमें करने चाहिए वो हमें हमेशा करते रहने चाहिए और दूसरों को भी इसके बारे में जो जागरूकता है वो फैलाते रहना चाहिए।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रोग्राम चल रहा है युवाणी। दोस्तों, हम बात करें इतिहास की। इतिहास जो है वो केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं होता, बल्कि वो वर्तमान को समझने और भविष्य का मार्ग तय करने की प्रेरणा हमें देता है। और आज हम बात भी जो है वो ऐसे ही एक महान व्यक्ति के बारे में करेंगे, आज जो शिक्षाविद, राष्ट्रवादी और चिंतक और प्रखर राजनेता रह चुके हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। दोस्तों, जिनकी पुण्यतिथि जो है वो हर वर्ष जो है 23 जून को मनाई जाती है। जो हम बात करें, बहुत कम उम्र में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं वो हासिल की थी। सिर्फ और सिर्फ 33 वर्ष की आयु में वे यूनिवर्सिटी के सबसे युवा कुलपति बने। ये उपलब्धि उनकी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता का ही परिणाम थी। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को आज भी जो है वो सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। डॉक्टर मुखर्जी जो है वो सिर्फ एक शिक्षाविद ही नहीं, बल्कि वे देश की राजनीति में भी सक्रिय रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है वो भारत सरकार है उसमें उद्योग और आपूर्ति मंत्री जो है वो भी बने। उनका मानना था कि देश की एकता, अखंडता और विकास जो है वो सर्वोपरि होने चाहिए। उनके जीवन का दोस्तों सबसे चर्चित पक्ष जो है वो भारत की एकता के प्रति उनका जो दृढ़ संकल्प है वो रहा था। वे मानते थे कि देश के जो सभी राज्य और क्षेत्रों को जो है वो समान रूप से भारतीय संविधान और राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत होना चाहिए। और इसी विचारधारा के कारण उन्होंने बहुत सारे जो महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दे हैं उसमें अपनी राय जो है वो स्पष्ट की थी। दोस्तों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो है वर्ष 1951 में जो है वो एक स्थापना की थी, जहां संगठन आगे चलकर जो है वो भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बने। उनके विचारों का प्रभाव जो है वो आज भी

भारतीय राजनीतिक विमर्श में देखा जाता है, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर मुखर्जी के जीवन से जो है वो युवाओं को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली तो ये सीख कि शिक्षा का महत्व है, उन्होंने किस तरीके से जो है वो शिक्षा को अपने जीवन में उतारा और किस तरीके से उसको समझा और किस तरीके से जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। उन्होंने ये साबित किया कि ज्ञान और शिक्षा जो है वो व्यक्ति को समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति प्रदान करता है। साथ ही अगर अगली सीख की हम बात करें तो राष्ट्र के प्रति समर्पण जो है वो भी उन्होंने हमें सिखाया कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या राजनीति का, उन्होंने हमेशा जो है वो देश हित को सर्वोपरि रखा। साथ ही अपने विचारों के प्रति उनमें दृढ़ता थी, उन्होंने जिन सिद्धांतों को सही माना उनके लिए उन्होंने पूरी निष्ठा और साहस के साथ काम किया, और ये गुण जो है वो आज के युवाओं के लिए प्रेरणादायक साबित होते हैं। तो दोस्तों किसी भी महान व्यक्ति को याद करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो केवल उनके बारे में जानना नहीं बल्कि उनके आदर्शों को जो है वो अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना होता है। अगर युवा जो है वो शिक्षा, अनुशासन और सेवा, राष्ट्रीय हित की भावनाओं को अपनाए तो फिर वे अपने साथ साथ देश के विकास में और भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के दौर में जब युवा जो है वो नई चुनौतियों, अवसरों का सामना कर रहे हैं, तब ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तियों के जीवन से सीख लेना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन भी हमें ये संदेश देता है कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और राष्ट्र के प्रति समर्पण से जो है वो बड़ी से बड़ी उपलब्धि जो है वो प्राप्त की जा सकती है। तो हमें भी उनकी पुण्यतिथि पर हम सब जो है वो उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि आप अपने ज्ञान और क्षमता और कर्म के माध्यम से जो है समाज और राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान जरूर दें।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के
1: यात्रियों
2: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
7: जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम चल रही वाणी खास सेगमेंट आपका कल, जिसमें हम अपने आने वाले कल के बारे में या अपने करियर से जुड़ी बातें जो है वो करते हैं आपके साथ। और दोस्तों, आज का जो युवा है उसके मन में भी कहीं ना कहीं सपने जो है वो छुपे होते हैं। कोई जो है वो टीचर बनना चाहता है, कोई पत्रकार बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट और कोई आर्टिस्ट, तो कोई अपना जो खुद का बिजनेस है वो शुरू करना चाहता है। लेकिन अक्सर एक सवाल जो है वो यूथ के मन में आता है कि क्या पढ़ाई के साथ अपने सपनों पर काम करना संभव है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि पहले पढ़ाई पूरी कर लेते हैं फिर सपनों के बारे में सोचेंगे। लेकिन दोस्तों, बदलते टाइम में ये सोच जो है वो काफ़ी बदल चुकी है। आज का दौर जो है वो सिर्फ डिग्री हासिल करने का नहीं बल्कि अपने हुनर को पहचानने और उसे निखारने का भी है। इसलिए दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ अपने सपनों

पर काम करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों सपने जो है वो सिर्फ रात में देखी गई कल्पनाएं नहीं है, बल्कि वो अपने वो टारगेट होते हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बिना सपनों के जीवन में जो है वो दिशा नहीं होती है, लेकिन सिर्फ अपने सपने देखना ही जो है वो काफी नहीं होता है, उन पर मेहनत करना भी उतना ही जरूरी होता है। क्योंकि आज की दुनिया के बहुत सारे सफल लोगों की कहानी अगर हम देखें तो पता चलता है कि उन्हें अपने सपनों पर काम करना बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपने जो कौशल है उसको भी विकसित किया, नई चीजें सीखी, साथ ही छोटे छोटे कदमों से जो है वो अपने टारगेट की ओर बढ़ते गए। तो दोस्तों अक्सर जो स्टूडेंट है वो ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि पढ़ाई का दबाव बहुत है, और ये सच है कि पढ़ाई जो है वो जरूरी है, लेकिन ये भी सच है कि समय का जो सही प्रबंधन करके अगर हम अपने सपनों के लिए जो है वो टाइम निकाल सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसको लिखने का शौक है, तो वो डेली जो है वो आधा घंटा लिखने का जो है वो प्रैक्टिस करता है और अपने कौशल को और भी बेहतर बना सकता है। अगर किसी को सिंगिंग पसंद है, गाना सुनना पसंद है, तो वो रोज थोड़ा थोड़ा समय जो है वो रियाज कर सकता है। और कोई अगर डिजिटल मीडिया या ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीजें अगर इसमें रुचि रखता है, तो फिर वो पढ़ाई के साथ साथ जो है वो ऑनलाइन काम सीखना शुरू कर सकता है। अपनी जो भी, यूं कहें कि अपने दिमाग में आपका जो भी टारगेट बना हुआ है, उस पर पढ़ाई के साथ साथ अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर उस पर काम करेंगे तो आप उसमें परफेक्ट बनते चले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आज जो है वो इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो है वो सीखने के अवसर को और भी आसान बना दिया है। हम कोई भी चीज जो है वो मिनटों में जो है वो सर्च कर सकते हैं और हर चीज का पता जो है वो मिनटों में हम लगा सकते हैं। अब नई चीज सीखने के लिए सिर्फ और बड़े शहरों में जाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मोबाइल और इंटरनेट के जरिए जो है वो घर बैठे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बात समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि सपनों पर काम करने का मतलब सिर्फ पढ़ाई को नजरअंदाज करना नहीं है। पढ़ाई और सपनों के बीच एक बैलेंस जो है वो बनाना हमारी सफलता की असली कुंजी होता है। इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि शिक्षा जो है वो हमारी नींव है और सपने जो है वो हमारी मंजिल है। अगर नींव मजबूत होगी तभी हमारी मंजिल तक पहुंचना हमें और भी आसान जो है वो लगने लगेगा। क्योंकि कई बार जो है वो यूथ जो है वो दूसरों से जो है वो अपनी तुलना करने लगते हैं, और सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर उन्हें लगता है कि वो पीछे रह गए हैं। उनके जब वो ये चीजें देखते हैं तो उन्हें मन में ऐसे लगता है कि हम नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा जो है वो अलग अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी दिखाई देती है तो किसी को मेहनत का परिणाम जो है उसको आने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो सफलता जो है वो आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे जरूरी बात दोस्तों ये है कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। दूसरों की जो भी उपलब्धियां हैं उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, बल्कि हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए, और साथ ही अपनी तुलना जो है वो किसी से भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यूथ के सामने एक और चुनौती जो है वो साथ भी ये भी आती है कि उन्हें जो है वो असफलता का डर लगता रहता है। कई बार वे सोचते हैं कि अगर हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिली तो फिर क्या होगा, अगर हम इन चीजों में पीछे रह गए, हमारा टारगेट हमें नहीं मिला तो फिर क्या होगा। लेकिन दोस्तों असफलता जो है वो सफलता की राह का एक हिस्सा ही है। जब हमें असफलता मिलती है तो हम उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो सीखते हैं कि क्या कमी जो है वो हमारे अंदर रह गई जिससे हम सफलता से एक कदम और पीछे रह गए। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो गलतियां होना तो स्वाभाविक है, लेकिन हर गलती में हमें कुछ नया जो है वो सीखने को मिलता है। इसलिए असफलता से डरने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि हमें उसमें क्या क्या चीजें जो है वो सीखने को मिली, कौन सी आदतें जो है वो हमें विकसित करनी है, कौन सी आदतें जो है वो हमें छोड़नी है। तो ये सारी चीजें जो है वो असफलता हमें सिखाती, यानी कि असफलता जब हमें मिलती है तब भी हम कहीं ना कहीं जो है वो सफल होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सीखते हैं जो हमारा एक कदम और जो है वो सफलता की ओर बढ़ जाता है। तो दोस्तों पढ़ाई के साथ जो है वो सपनों पर काम करने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप धीरे धीरे अपने कौशल को मजबूत करते रहिए। जब आपकी पढ़ाई पूरी होती है तब तक आपके पास जो है वो अनुभव, आत्मविश्वास, वो दोनों जो है वो बन चुके होते हैं।
क्योंकि आज का जो यूथ है वो भी पढ़ाई के दौरान जो है वो बहुत सारे ऐसे काम करता है जिसमें वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है, और इससे उन्हें सीखने का अवसर जो है वो मिलता है, और कई बार जो है वो ये हमारे आय का भी स्रोत बन जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि यूथ जो है वो सिर्फ लोकप्रियता या फिर जल्दी सफलता पाने के पीछे नहीं भागे, बल्कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली जो भी चमक दमक है इसमें

हमें अपनी वास्तविकता नहीं मिलती है। किसी भी अगर क्षेत्र में हम देखें, सफलता पाने के लिए हमें जो है वो लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा और साथ ही साथ अनुशासन की आवश्यकता भी जो है उसमें होती है। तो अगर आप अपने सपने को अगर सच करना चाहते हैं तो हमें भी जो है वो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जिनको अपनाना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपने टारगेट को स्पष्ट करें कि हमें जो है वो किस क्षेत्र में जो है वो अपना करियर बनाना है। तो और उसके बाद जो है वो हर दिन हमें जो है वो थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर अपने सपने के लिए निर्धारित करना है कि हम उसमें अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखें। कुछ अगली ये है कि हमें नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। हमारा दिमाग जो है हमें उसको क्रिएटिव चीजों में लगाते रहना चाहिए और उसके साथ साथ हमारा दिमाग जो है वो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। और लोगों के साथ भी जितना हम पॉजिटिव रहेंगे हमारा काम भी जो है वो उतना ही पॉजिटिव बने रहकर आगे बढ़ता रहेगा। कभी भी हमें सीखना बंद नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई चीज हमें नहीं आती है तो हम किसी दूसरे इंसान से पूछ कर जो है वो उसमें सीख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं होती। लेकिन ये है कि हमें सीखने के लिए रुकना नहीं है, हमें लगातार जो है वो सीखते रहना है, प्रयास करते रहना है और अपनी पॉजिटिव सोच जो है उसको बनाए रखना है। क्योंकि दोस्तों सपने जो वो एक दिन में पूरे किसी के भी नहीं होते, वे सिर्फ रोज की कि रोज जो हम छोटी छोटी जो कोशिशें करते हैं उससे ही साकार होते हैं। और हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, उनकी भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो होती है, क्योंकि वो भी हमें जो है वो मोटिवेट करते हैं और बहुत सारी हेल्प जो है वो हमारे टारगेट को पूरा करने में जो है वो करते हैं। और यूथ को भी यही चाहिए कि वे अपने सपने और रुचियों के बारे में खुलकर बात कर सके, जिससे कि उनको जो सही मार्गदर्शन है वो मिल सके और वो अपना रास्ता जो है वो और भी आसान बना सके। तो आज के टाइम में दोस्तों करियर के अवसर भी बहुत जो है वो बढ़ चुके हैं। पारंपरिक जो क्षेत्र हैं उनके साथ साथ नए क्षेत्र जो है उनमें भी बहुत सारी संभावनाएं जो है वो बढ़ रही हैं। इसलिए युवाओं को अपनी रुचि, अपनी क्षमता, उन सबको पहचानना है ताकि उसी दिशा में जो है वो आगे बढ़ सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि सही टाइम आने पर शुरुआत करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय आज ही है, यानी कि अभी से है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि आपने अपनी जो भी कोशिशें की हैं वो आपको आपके टारगेट तक जो है वो पहुंचा चुकी हैं। इसलिए हमें लाइफ में जो भी बड़ी उपलब्धियां जो है वो अचानक तो किसी को भी नहीं मिलती, उसके लिए बहुत सारे प्रयास जो है वो करने पड़ते हैं और वो लगातार किए गए प्रयास जो है उसी का परिणाम होता है कि हमें अंत में जाकर जो वो उपलब्धियां मिलती है, वो सफलता मिलती है। इसलिए अगर आपके पास कोई सपना है तो उसे सिर्फ अपने मन तक सीमित नहीं रखिए, बल्कि उसके लिए एक योजना बनाइए, मेहनत कीजिए और लगातार जो है वो आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि पढ़ाई जो है वो आपको ज्ञान देती है, कौशल आपको पहचान देता है और सपनों पर की गई मेहनत जो है वो आपको आपकी मंजिल तक जो है वो जरूर पहुंचाती है। दोस्तों प्रोग्राम में भी बातें यूं ही जारी हैं, फिलहाल आपको लिए चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रोग्राम चल रहा है वाणी, जिसमें हम बात कर रहे थे कि सफलता जो है वो उस पर हमें काम करना कितना जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अपने सपने जो हैं, अगर हम उन पे अगर हम काम करते हैं तो वो यूं कहें कि हम ये देखते हैं कई बार हमें लगता है कि हमारी पढ़ाई जो है वो पीछे छूट जाएगी अगर हम सपनों के पीछे भागे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ साथ धीरे धीरे छोटे छोटे कदम बढ़ाकर जो है वो हम अपने सपनों की ओर बढ़ सकते हैं। साथ ही उनमें अगर यू कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, यानी कि जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा जो है वो हम परफेक्ट बनते जाएंगे। इसलिए जब हम पढ़ाई करते हैं, अब जैसे पूरा दिन हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें से अगर थोड़ा सा टाइम निकाल कर हम अपने सपनों को देते हैं तो उसमें कहीं हमारी पढ़ाई में या फिर अपने सपनों में जो है वो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि हमें कुछ ना कुछ जो वो सीखने को ही मिलता रहेगा। और साथ ही अगर हम बात करें कि हम अपने लाइफ में जो है वो सफलता तो हर कोई चाहता है, लेकिन मेहनत करना जो है वो हर किसी की यूं कहे बस की बात नहीं है, या फिर कोई करना नहीं चाहता। हम जो है वो ये देखते हैं कि हम बिना कोशिश के जो है वो हमें सफलता मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे अपने सपने हो, या फिर हमारा लाइफ का कोई भी काम हो, अगर हम मेहनत करेंगे तभी हमारा काम जो है वो पूरा हो सकता है। इसलिए दोस्तों, जब भी हम कोई काम करते हैं तो पहले से हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि हम इस टारगेट पे जाने वाले हैं, तो इसके लिए हमें ये सारी चीजें करनी है, और इन सारी चीजों में क्या क्या जो बाधाएं हैं वो आएगी और उनको पार हमें कैसे करना है। लोगों से हम सीख भी सकते हैं, कुछ चीजें जो है वो हम अपने अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमें भी कोई सॉल्यूशन मिल सकता है कि हाँ, हमें आगे बढ़ने के लिए ये रास्ता चुनने के बजाय दूसरा रास्ता चुनना चाहिए। साथ ही कई बार हमने बात की कि असफलता हमें मिलती है तो उसके कारण हम जो है वो निराश हो जाते हैं कि अगर अब हमें असफलता मिली है तो अब सफलता मिलने का कोई चांस नहीं है, हम सक्सेस नहीं हो सकते। तो ये जो मेंटेलिटी होती है उसमें अगर हम चलते हैं तो हम सक्सेस शायद नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमें एक बार असफलता मिलती है तो उसमें क्या कुछ हमने सीखा है, क्या कुछ हमने अपनी लाइफ में अचीव किया है, क्या क्या चीजें जो है वो हमने हासिल की हैं, और क्या ऐसी कमियां रह गई जिससे हम सक्सेस से जो है वो पीछे रह गए। अगर उन सारी चीजों पर काम करके हम अपने माइंड को जो है वो पॉजिटिव रखेंगे, एक माइंड सेट हमारा बना रहेगा कि हाँ, हमें जो है वो अपने सक्सेस की ओर ही ध्यान देना है, जो चीजें पीछे छूट चुकी हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, बल्कि ये सोचना है कि क्या कमियां जो है वो रह गई जिनको हमें आगे पूरा करना है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो फिर जो है वो सक्सेस पाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। साथ ही अगर हम अपना माइंड यू रखें कि पॉजिटिव रहें, साथ ही एनर्जेटिक अपने आप को बनाए रखें, और अपने यूं कहें कि एक पॉजिटिव सोच जो है वो अगर हम रखते हैं, क्रिएटिविटी अगर हम अपने माइंड में रखते हैं, तो पढ़ाई के साथ भी हम अपने सपनों पर काम कर सकते हैं और उन सपनों को जो है वो पूरा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा कार्यक्रम युवाणी खास सेगमेंट आपका कल, जिसमें बहुत सारी बातें जो है वो हमने आपके साथ की, जैसे अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस है, संयुक्त राष्ट्र लोक

सेवा दिवस है। साथ ही हम अपने करियर के बारे में अगर बात करें तो पढ़ाई के साथ अपने सपनों पर किस तरीके से हमें काम करना चाहिए और किस तरीके से पढ़ाई के साथ साथ हम अपने सपनों को भी जो है वो साकार कर सकते हैं, वो सारी बातें जो है वो हमने आपके साथ प्रोग्राम में की। फिलहाल जो है वो प्रोग्राम से जाने की इजाजत दे कोमल दैया को। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 107.7 MHz पर। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से, अंग्रेजी में समाचार शाम 6:05 पर आप सुनेंगे, फिल्मी देशभक्ति गीत आप सुनेंगे शाम 6:10 पर, और संस्कृत में समाचारों का समय रहेगा शाम 6:20 पर आकाशवाणी दिल्ली से। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से आप सुनेंगे शाम 6:30 पर, जिले की चिट्ठी का समय रहेगा शाम 6:40 पर, और शाम 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। हमारे किसान भाई बहनों का कार्यक्रम किसानवाणी आप सुन पाएंगे शाम 7 बजे। राजस्थानी लोक संगीत हम आपको सुन पाएंगे शाम 7:30 पर, फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुन पाएंगे रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, और रात्रि 9 बजे समय रहेगा News@9 का। आपके ईमेल्स पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन समय रहेगा रात्रि 9:15 पर। कार्यक्रम हेलो चूरू फोन इन रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुन पाएंगे रात्रि 10 बजे। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से, 11:05 पर समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का। हमारी कल की प्रातःकालीन सभा में सबसे पहले आप सुन पाएंगे सुबह 6 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से, कार्यक्रम विवरण के बाद सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे चिंतन, विषय रहेगा असफलताएं भी देती है सीखने के अवसर। वंदना कार्यक्रम सुनेंगे सुबह 6:15 पर, 6:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार, श्री रामचरित मानस गान सुबह 7:20 पर, और सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे नमस्कार चूरू। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम आप सुन पाएंगे सुबह 8:30 पर, 9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर से, और देशगान सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे। साहित्य सुगंध कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर आप सुनेंगे हिंदी कहानी इतना सा रिश्ता, कहानीकार होंगी स्नेहलता शर्मा। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्र संसार। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम। तो श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। शाम के 6 बजने वाले हैं, आपसे थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले समाचार। इन समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं। ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक एलपीजी कैरियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: इस बीच तमिलनाडु सरकार ने कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्से सिंह मटमुंग और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाव के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी

श्रोताओं, देशभक्ति फिल्मी गीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आपने सुनी पूरब और पश्चिम फिल्म से। आइए सुनते हैं द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म में ए आर रहमान और सुखविंदर सिंह द्वारा गाया ये गीत।

ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।

0: मुख्य समाचार। यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर नई दिल्ली में अहम बैठक हुई। राजस्थान में जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। जयपुर में कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ। किसानों से सीधी खरीद के लिए जरूरी व्यवस्था तैयार। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो प्रभाव से कम बारिश की आशंका को देखते हुए आवश्यक कृषि प्रबंधन उपायों पर व्यापक दिशा निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर आज नई दिल्ली में बैठक हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परियोजना के एमओयू से जुड़े विभिन्न मुद्दों को अंतिम रूप दिया। साथ ही किशाऊ बांध परियोजना पर भी विचार विमर्श किया। इस मौके पर श्री पाटिल ने कहा कि यमुना जल परियोजना को दीर्घकालिक नजरिए के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत पानी को पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाने का प्रस्ताव है, जिससे वितरण व्यवस्था व्यापक होगी। उन्होंने कहा कि केशाऊ बांध परियोजना के बारे में 6 राज्यों के मुद्दों का समाधान हुआ है। जल्दी ही एमओयू भी किया जाएगा।
1: दोनों मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। दोनों ने जो हरियाणा से पानी जो सरप्लस वाटर आज उसका नया एमओयू करके उसका पानी का जो उनका अधिकार है, जितना पानी वो तय हुआ है उतना ही पानी के लिए पाइपलाइन से पानी राजस्थान तक ले जाने के लिए वो दोनों में सम्मति बनी है। आने वाले मंडे को उसके ऊपर साइन होगी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के सामने वो एमओयू का उनको एक्सचेंज करेंगे।
0: मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यमुना जल परियोजना शेखावटी क्षेत्र के लिए अहम है, जल्द से जल्द इसे धरातल पर लाया जाएगा। वहीं श्री सैनी ने कहा कि बैठक में वर्षा के पानी को सहेज कर राजस्थान पहुंचाने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम आज करौली पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में पांचना संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक सिंह धाबाई और अन्य पंच पटेलों की उपस्थिति में समस्या के समाधान के लिए विचार विमर्श किया गया। इस दौरान करौली विधायक दर्शन सिंह और जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा भी मौजूद रहे। उधर पांचना बांध से सिंचाई के लिए नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर सवाईमाधोपुर जिले के खंडीप गांव में किसानों का महापड़ाव आज भी जारी रहा। वहीं धरने के कारण कुछ समय तक रेल यातायात प्रभावित रहा। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जयपुर में आज मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में रियायती दरों पर जमीन आवंटन के प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा कर सहमति दी गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने आज जोधपुर के उम्मेद अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रसूताओं, चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ से बातचीत कर उपचार व्यवस्थाओं पर फीडबैक लिया। साथ ही अधिकारियों को चिकित्सा सेवाओं को अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती राठौड़ ने कहा कि हर मरीज को बेहतर और सुरक्षित इलाज उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आमजन को चिकित्सालय के प्रति भरोसा बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल एसओपी की पालना सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।
2: अभी इनके जो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है, लेबर रूम एरिया है, महिलाओं से भी बात करी है, डॉक्टर्स और स्टाफ से भी बात करी है कि किस तरह से वो लोग एंश्योर कर रहे हैं कि सारे प्रोटोकॉल्स की जो मेडिकल की प्रोटोकॉल्स हो उनकी पालना हो। यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, लोगों का इतना फेथ है तभी 25,000 लोग यहाँ पे आते हैं। बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स है, सारी फैसिलिटीज है।
0: गौरतलब है कि पावटा अस्पताल में सिजेरियन के बाद प्रभावित प्रसूताओं के इलाज और सेहत की सतत निगरानी रखी जा रही है। जिला प्रशासन ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर अपडेट देने के लिए मेडिकल बुलेटिन जारी करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद आज जयपुर में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की जांच के लिए विशेष

0: विशेष अभियान चलाया गया। नगर निगम और पुलिस की टीमों ने शहर में कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के अग्नि सुरक्षा इंतजामों की जांच की। इस कार्रवाई में 14 कोचिंग संस्थानों और पुस्तकालयों को सील किया गया, साथ ही 24 कोचिंग सेंटरों को फायर सेफ्टी नियमों की अनुपालना के लिए नोटिस जारी किए गए। अभियान के दौरान नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों ने संस्थानों में फायर सेफ्टी उपकरण, आपातकालीन निकास मार्ग और फायर एनओसी से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के स्नातक दाखिलों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परिणाम जारी करते हुए बताया कि उम्मीदवार CUET पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। NTA के अनुसार इस साल मई महीने में हुई प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नेफेड के नीलामी पोर्टल का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि किसानों से सीधी खरीद के लिए जरूरी व्यवस्था तैयार कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने अगले 2 सालों में दलहन की खरीद सीधे किसानों से खरीदने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने किसानों की भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
1: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCCF ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो प्रभाव से कम बारिश की आशंका को देखते हुए फसलों को सुरक्षित रखने और आवश्यक कृषि प्रबंधन उपायों पर व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। अलनीनो संकट के संभावित असर से निपटने के लिए आज उन्होंने कृषि मंत्रियों और मौसम विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के सभी जिलों के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार कर ली हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्य सरकारों से इन योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने वैज्ञानिकों से किसानों को समय पर स्पष्ट सलाह पहुंचाने की बात कही।
2: जिस तरह की सहयोग की आपको आवश्यकता होगी हम करेंगे, जहां विशेष परिस्थितियों में जाना आवश्यक होगा हमारी टीम आपके सहयोग करने आएगी भी, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी कुछ राज्यों में जाएंगे। लेकिन आप मानसिकता ये बना लें कि संकट से विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, डट के मुकाबला करना है और हमको इस संकट से पार अपनी जनता को, अपने किसानों को, अपनी कृषि को लेके जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके अपने किसान को किसी कठिनाई का सामना न करने दें और इन विशेष परिस्थितियों में भी संकट की हम अन्न का हो, फल सब्जी का उत्पादन हो, उसको प्रभावित न होने दें। इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करें।
0: राज्य में आज कुछ स्थानों पर प्री मॉनसून गतिविधियों का असर देखने को मिला। सीकर, झुंझुनू और करौली में दोपहर बाद मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ धूल का गुबार छा गया, साथ ही बूंदाबांदी हुई। झुंझुनू में कई स्थानों पर करीब आधा घंटे तेज पानी बरसा। उधर श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़, राजियासर और अन्य कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। भरतपुर में भी धूल भरी आंधी चली, उसके बाद कुछ देर हल्की बरसात हुई। बीकानेर, जैसलमेर और फलौदी सहित आसपास के क्षेत्रों में भी हवाओं के साथ बादलों की आवाजाही देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज 7 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज, वहीं 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 27 जून तक जोधपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर झोंकेदार हवाएं चलने के भी आसार हैं। दक्षिणी राजस्थान में बरसात की गतिविधियों में कमी देखी जा सकती है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया

0: पोस्ट में श्री मोदी ने लिखा कि देश की महान विभूति डॉक्टर मुखर्जी के प्रखर विचार और आदर्श हर पीढ़ी को मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने निवास पर डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का त्याग और राष्ट्र प्रथम का संकल्प देश सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज भरतपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर श्री शेखावत ने कहा कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सेवा के लिए समर्पित किया।
1: जो आज का दिन लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज पूरा भारत एक ऐसे महामना, एक ऐसे विचारक, एक ऐसे विचार के प्रतिपादक व्यक्ति की पुण्यतिथि मना रहा है, जिसने संघर्ष का रास्ता चुनकर के एक विचार को स्थापित किया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 26 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर नई दिल्ली में अहम बैठक हुई। राजस्थान में जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। जयपुर में कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ। किसानों से सीधी खरीद के लिए जरूरी व्यवस्था तैयार। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो प्रभाव से कम बारिश की आशंका को देखते हुए आवश्यक कृषि प्रबंधन उपायों पर व्यापक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख सोमदत्त त्रिपाठी ने तैयार किया है। जून का महीना अब अपने अंतिम चरण में है। इसी के साथ जिले में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। पिछले दिनों कई क्षेत्रों में हुई बारिश और तेज हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के बाद कई जगह मौसम सुहावना हो गया। इससे आम लोगों को गर्मी से राहत मिली है और किसानों ने खरीफ फसलों की तैयारियां तेज कर दी है। खेतों की जुताई, बीज और खाद की व्यवस्था का काम चल रहा है। कृषि विभाग ने इस वर्ष जिले में लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई का लक्ष्य रखा है। विभागीय अधिकारियों को किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज और खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ दिलाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी ओर जल संरक्षण, जनसेवा, पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्यों को लेकर जिले में अनेक गतिविधि आयोजित की गई। आइए भीलवाड़ा जिले की प्रमुख गतिविधियों के बारे में इस चिट्ठी में जानते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का लाभ जिले के किसानों को भी मिला। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। किसानों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। किसानों ने बताया कि योजना के तहत मिलने वाली राशि खेती किसानी के कामों में सहायक साबित हो रही है। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक खेती, पशुपालन, कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने हुरुड़ा पंचायत समिति के खारी का लांबा ग्राम पंचायत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और पशुपालकों से संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी। अगले दिन गांव में भ्रमण कर लोगों से सीधे बातचीत की। इस दौरान ग्रामीणों की मांग पर विद्यालय में विज्ञान और वाणिज्य संकाय शुरू करने, खेल मैदान तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े कामों की घोषणाएं की गई। ग्रामीणों ने अपनी आवश्यकताओं और सुझावों से प्रशासन को अवगत कराया। जल संरक्षण को लेकर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया गया। मेवाड़ के प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां जल स्रोतों के संरक्षण और वर्षा जल संचयन का संदेश दिया गया। अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर जल स्रोतों की साफ

0: सफाई, श्रमदान और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। लोगों को जल बचाने और परंपरागत जल संरचनाओं के संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवा शिविरों का आयोजन लगातार जारी है। भीलवाड़ा शहर सहित जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में पट्टा वितरण, पेंशन संबंधी काम, प्रमाण पत्र, चिकित्सा सेवाएं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला प्रशासन लगातार इन शिविरों की निगरानी कर रहा है। अधिकारियों को प्रकरणों का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे आमजन को राहत मिली है। परिवहन के क्षेत्र में भी भीलवाड़ा जिले को हाल ही में नई सुविधाएं मिली हैं। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत जिले में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया गया है। इन बसों के माध्यम से शहरवासियों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध होगी। ई बसों के चलाए जाने से प्रदूषण में कमी आएगी और यात्रियों को बेहतर यात्रा की सुविधा मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी जिले में प्रशासन और लोगों की ओर से विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी मॉनसून में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिले में बड़े स्तर पर पौधरोपण किया जाएगा। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी से लगभग 35 लाख पौधे लगाने की योजना पर चर्चा की गई है। वन विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों से संबंधित गतिविधियां हुई। जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने आम जन को योजनाओं की जानकारी दी तथा लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। इसी के साथ भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर सु पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: विमर्श करयो गयो। इंद्र चालता करोली विधायक दर्शन सिंह और जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा भी मौजूद रहा। वठीने पांचना बांध सू सिंचाई खातिर नहरा माए पानी छोड़ने ने लेर सवाई माधोपुर जिलेरा खंडीप गांव माए काश्तकारारो महापड़ाव आज भी जारी रहो। वठीने धरने रे कारण कुछ वक्त ताई रेल यातायात भी प्रभावित रहो। मौके माथे मोटी तादाद माए पुलिस बल तैनात है। जयपुर माए आज मंत्रिमंडलीय उप समिति री बैठक भी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवारी अध्यक्षता माए हुई। इन बैठक माए प्रदेश रा न्यारा न्यारा जिला माए रियायती दरा माथे जमीन आवंटन रा प्रकरणा माथे विचार विमर्श करयो गयो। बैठक माए शिक्षा स्वास्थ्य और शहरी विकास सु जुड़िया प्रस्तावा माथे समीक्षा कर सहमति दी गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमारी प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ आज जोधपुर रा उम्मेद सफाखानारो जायजो करयो। वणा प्रसूतावां चिकित्सका और नर्सिंग स्टाफ सू बणतल कर उपचार व्यवस्थावां माथे फीडबैक लियो। साथ ही अहलकारा ने चिकित्सा सेवावां ने बत्ती प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनावण खातिर जरूरी दिशा निर्देश दिया। इंद्र पाछे खबर नवीसा सू बणतल माए श्रीमती राठौड़ कयो के हर मरीज ने चोखो और सुरक्षित इलाज मुहैया करवाणो राज्य सरकार री सर्वोच्च प्राथमिकता है। आम जन ने चिकित्सालय सारू भरोसो बनायो राखणो चाहिजे। वणा कयो कि सगला सफाखाना माए मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल SOP री पालना पक्की करने खातिर जोर दियो जा रियो है।
1: इनके जो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है, लेबर रूम एरिया है, महिलाओं से भी बात करी है, डॉक्टर्स और स्टाफ से भी बात करी है कि किस तरह से वो लोग एंश्योर कर रहे हैं कि सारे प्रोटोकॉल्स की जो मेडिकल के प्रोटोकॉल्स हो उनकी पालना हो, यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। लोगों का इतना फेथ है तभी 25,000 लोग यहाँ पे आते हैं। बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स है, सारी फैसिलिटीज है।
0: ध्यान जोग है कि पावटा सफाखाना माए सिजेरियन रे पाछे प्रभावित प्रसूतावां रे इलाज और सेहत री सतत निगरानी राखी जा रही है। जिला प्रशासन वाणी स्वास्थ्य स्थिति माथे अपडेट देने खातिर मेडिकल बुलेटिन जारी करने रा हुकुम दिया है। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड रे पाछे आज जयपुर माए फायर सेफ्टी व्यवस्थावां री जांच खातिर खास अभियान चलायो गयो। नगर निगम और पुलिस री टीमा ने शहर माए कोचिंग संस्थावां और लाइब्रेरी रा अग्नि सुरक्षा इंतजामा री जांच करी। इन कार्रवाई माए 14 कोचिंग संस्थावां और पुस्तकालयां ने सील करयो गयो। साथ ही 24 कोचिंग सेंटरां ने फायर सेफ्टी नियमां री अनुपालना खातिर नोटिस जारी करया गया। अभियान रे चालता नगर निगम पुलिस और प्रशासन री संयुक्त टीमा ने संस्थाना माए फायर सेफ्टी उपकरण आपातकालीन निकास मार्ग और फायर NOC सू जुड़िया दस्तावेजा री जांच करी। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 स्नातक दाखिला रा नतीजा घोषित कर दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नतीजा जारी करता थका बतायो कि उम्मीदवार CUET पोर्टल माथे आपरा स्कोर कार्ड देख सके है। NTA रे मुजब इन बरस मई महीना माए प्रवेश परीक्षा माए 11,00,000 सू 32 पढ़ेसरी भेड़ा व्याहा। ए समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सू सुन रिया हो। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नेफेड रे नीलामी पोर्टल रो नूवी दिल्ली माए शुभारंभ करयो। इन मौके माथे श्री शाह कयो कि काश्तकारा ने सीधी खरीद खातिर जरूरी व्यवस्था तैयार कर दी गई है। वणा कयो कि सहकारिता मंत्रालय आवता 2 वर्षा माए दलहन री खरीद सीधे काश्तकारा सू खरीदने रो लखस राख्यो है। वणा किसानारी भागीदारी ने मजबूत करने खातिर खरीद कामा माए बिचौलियारी भूमिका ने खत्म करने रो हेलो करयो।
2: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से ना आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCCF ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अलनीनो प्रभाव सू बिरखारी आशंका ने देखता थका फसला ने सुरक्षित रखने और जरूरी कृषि प्रबंधन उपाया माथे खासा दिशा निर्देश दिया है। अलनीनो संकट रे संभावित असर सू निपटने खातिर आज वे कृषि मंत्रियां और मौसम महकमारा अहलकारा खातिर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करी। वणा कयो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देशरा सगला जिला खातिर आकस्मिक योजनावां तैयार कर ली है। केंद्रीय कृषि मंत्री राज्य सरकारा सू आ योजना योजनावां ने प्रभावी रूप सू लागू करने री अरज करी है। साथे ही वणा वैज्ञानिका सू कास्तकारा ने बकत माथे सही सलाह पहुंचाने

0: बात कही है।
1: जिस तरह की सहयोग की आपको आवश्यकता होगी हम करेंगे, जहां विशेष परिस्थितियों में जाना आवश्यक हो हमारी टीम आपके सहयोग करने आएगी भी, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी कुछ राज्यों में जाएंगे। लेकिन आप मानसिकता ये बना लें कि संकट से विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, डट के मुकाबला करना है और हमको इस संकट से पार अपनी जनता को, अपने किसानों को, अपनी कृषि को लेके जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके अपने किसान को किसी कठिनाई का सामना न करने दें और इन विशेष परिस्थितियों में भी संकट की हम अन्न का हो, फल सब्जी का उत्पादन हो, उसको प्रभावित न होने दें। इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करें।
0: और अब मौसम, राज्य माए आज कुछ एक थोड़ा माथे प्री मानसून गतिविधियां रो असर देखण ने मिल्यो। सीकर और करौली माए दोपहरा पाछे मौसम बदल्यो और तेज हवावा रे साथे धूल रो गुबार छाग्यो, साथे ही बूंदाबांदी हुई। वटीने श्रीगंगानगर जिला रा सूरतगढ़, राजियासर और दूजा कई इलाका माए तेज हवावा साथे बरसात हुई। भरतपुर माए भी धूल भरी आंधी चाली, इनरे पाछे कई देर हल्की बिरखा हुई। बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी समेत आसे पासे रा खेतरा माए भी हवावा रे साथ बादलारी आवाजावी देखण ने मिली। मौसम महकमा रे मुजब आ 7 जिला माए आंधी बारिश रो ऑरेंज, वठीने 12 जिला माए येलो अलर्ट जारी करयो गयो है। 27 जून ताई जोधपुर, कोटा और उदयपुर संभाग माए कठई कठई गरज चमक रे साथ हल्की बिरखा हो सके है। इनरे चालता कई जगावा माथे झोंकेदार हवावा चालने रा भी आसार है। दक्षिण राजस्थान माए बरसात री गतिविधियां माए कमी देखी जा सके है। भारतीय जनसंघ रा संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी री पुण्यतिथि माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दूजा कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करी। वाने सोशल मीडिया पोस्ट माए श्री मोदी लिख्यो कि महान विभूति डॉक्टर मुखर्जी रा प्रखर विचार और आदर्श हर पीढ़ी ने मातृभूमि री सेवा खातिर प्रेरित करता रहेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी आपरे निवास माथे डॉक्टर मुखर्जी रा फोटो माथे फूल चढ़ार वाने नमन करयो। मुख्यमंत्री कहो कि डॉक्टर मुखर्जी रो त्याग और राष्ट्र प्रथम रो संकल्प देश सेवारे मार्ग माथे चालने खातिर प्रेरित करतो रहेला। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज भरतपुर माए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रे बलिदान दिवस माथे राखीजा कार्यक्रम माए भाग लियो। इन मौके श्री शेखावत कहो कि वणा आपरो सगलो जीवन सेवा खातिर समर्पित करयो।
2: जो आज का दिन लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज पूरा भारत एक ऐसे महामना, एक ऐसे विचारक, एक ऐसे विचार के प्रतिपादक व्यक्ति की पुण्यतिथि मना रहा है जिसने संघर्ष का रास्ता चुनकर के एक विचार को स्थापित किया।
0: कोटपुतली खेतर्रा बनार गांव रे कने आज एक सड़क हादसा माए एक मीनक हर टाबरी री मौत वेगी। हादसो तेज रफ्तार डंपर री चपेट माए आने सुवियो। घटना रे पाछे खेतर माए शोक री लहर दौड़गी। युवा मामला और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कहो कि भारत अभूतपूर्व खेल क्रांति रो साक्षी बन रियो है। सोशल मीडिया पोस्ट माए आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस माथे आपरे संदेश माए डॉक्टर मांडविया कहो कि देश री खेल क्रांति खिलाड़ियां ने सशक्त बना रही है और हर नागरिक ने खेला ने जीवन शैली रे रूप माए अपनावण खातिर बधाओ दे रही है। वणा कहो कि देश उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान रे ओलंपिक मूल्यां रो जश्न मना रियो है, जको दुनिया भर माए लाखों लोगों ने प्रेरित करे है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 खातिर 31 जुलाई ताई आवेदन किया जा सके है। सगला नामांकन ऑनलाइन लिया जा रहा है। ए पुरस्कार 15-18 बरस आयु वर्गरा टाबरा रे असाधारण साहस और सृजनात्मकता ने समर्पित है। आने 6 श्रेणिया माए दिया जावे है। राष्ट्रपति कानीसू ए पुरस्कार हर बरस नवी दिल्ली माए आयोजित खास जलसा माए प्रदान करया जावे। जलसा माए आयोजन वीर बाल दिवस रे मौके माथे 26 दिसंबर ने करयो जावे है। और आखिर माए खास खबरां एकर फेरू सुनो। यमुना जल परियोजना वारे क्रियान्वयन ने लेर नवी दिल्ली माए अहम बैठक भी। राजस्थान माए जल प्रबंधन ने मजबूती मिलेला। जयपुर माए कोचिंग संस्थाना माए अग्नि सुरक्षा व्यवस्थावां ने लेर विशेष अभियान चलाया गया। नेफेड रे नीलामी पोर्टल रो शुभारंभ। काश्तकारां सू सीधी खरीद खातिर जरूरी व्यवस्था तैयार। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अलनीनो प्रभाव सू कम बारिश री आशंका ने देखता थका आवश्यक कृषि प्रबंधन उपाया माथे व्यापक दिशा निर्देश दिया। इनरे साथे ही प्रादेशिक समाचारों ऊ बुलेटिन अठे ही पूरो व्यो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
3: हम आपकी सेवा में आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं।

0: FM 107.7 MHz पर श्रोताओं, शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं हमारे किसान भाई बहनों का कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत।

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे सगले किसान भाई बहन बावरी और
5: तेजे भाई कंचु मोकड़ा मोकड़ा
4: राम राम
5: राम राम भौरी राम राम। आज आपने किसान वाणी की चौपाल में ठावड़ी सी बातें करने के लिए, ठावड़ी सी जानकारी देने वास्ते पधारे हैं डॉक्टर अनुपम महर्षि, कृषि अनुसंधान अधिकारी हैं, पौध व्याधि और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला झुन्नू में कार्यरत हैं। तो आपने आज बढ़िया सी जानकारी देसी, क्योंकि अब आर आपने बरसात होने लग रही है, कटाई होगी, कटाई थोड़ी सी कमी है, कटाई मतलब फसल बाय दी, तो वर्तमान में जब आप बीज लगावा शुरुआत में अपनी फसल की नींव रखा तो भी वक्त में आपने के की जानकारियां होनी चाहिए, इनसे संबंधित आप बातचीत करांगा। तो डॉक्टर साहब थारा बहुत बहुत स्वागत है, राम राम साहब।
6: राम राम सब किसान भाइयों ने भी राम राम।
5: तो डॉक्टर साहब आज आप किसान भाइयों वास्ते थोड़ी सी जानकारी आई लिया के भी आपने जो बीज है, जो बीजने को वक्त है, तो एक तो आप रोज बातचीत सुना के भी प्रमाणित बीज ही बोनो चीज है। अब प्रमाणित बीज के है और इनकी उपयोगिता की है?
6: देखो, प्रमाणित बीज को मतलब हुआ है सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड का बीज का के कुछ गुण धर्म हुआ, मतलब बीज की क्वालिटी में कई गुण हुए, खाली अंकुरण ही को नहीं हुए। बी की आर्द्रता, बी की शुद्धता, बा वेराइटी जी बता रखी है, बी वेराइटी कोई बीज है को नहीं, बी में खरपतवार को बीज तो मिक्स को नहीं, बी में कोई कीड़ा मकोड़ा को, बीमारी को, कोई प्रकोप तो को नहीं, बी का बाद में अंकुरण, बी को अंकुरण बढ़िया है।

0: क्योंकि हर बीज को अलग अलग मानक निर्धारित करेगा। जी आप कोई भी बीज की बात करें, उदाहरण के लिए आप जहाँ बाजरा ले तो बाजरा में कम से कम 75% अंकुरण होना जरूरी है। 75% को मतलब 100 में से 75 दाना तो अंकुरित होना चाहिए जिससे हेल्दी स्वस्थ पौधा निकले।
1: बिल्कुल बिल्कुल। बीच में बताऊंगा ना, पहले आपने बड़ा बुजुर्ग वो काम कराया करता जब इतना साधन कोनी आ, इतनी जानकारियां कोनी, जब क्या करता कि छांट के बीज रखा करता। फसल होते बीग मा आ देखता के भी वो गुआर को झाड़ू है, इनकी फली बड्डी है, एक माँ पूरा पूरा दाना है और वो बड्डे चोखो है और इनकी फली भी सौड़ लगी है, तो वह झाड़ा छांट लेता, वह छांट के बांगो अलग रख
0: लेता।
1: ये बाजरा का छिट्टा
0: देखो दलहनी फसल में आज चीज आप कर सका। जो हाइब्रिड या संकर बीज कोई जहाँ बाजरा को बीज थे ला रहे हो बाजारों, बिना अगर थे बढ़िया सिट्टा रखोगा तो वो बीसों कौन बना, वो बीसो पिछले साल
1: संकर तो अब चले है, पहले तो देसी वाया करता,
0: देसी का देसी जो दलहनी फसल है नी बामा मूंग मोट
1: में आपने जो रखा करता, जब क्या करता के देवताओं जो अंकुरण की बात क्षमता नापने खातर पहले जहाँ बरसात हो पहले देख लेता, थोड़ी सी जगह भेड़ी होती बिग मैं गिण के दाना गिरता, गिण के माने गुआर का 100 दाना गिरे, पचे कहता वालो छोरो देखो रे कितना उग गया, अब टाबरा के बीच जो खेल हो तो मैं कहता इमो 70 उग गया, इमो 80 उग गया है ना, बिग आधार पर भी बीज ने तय करता।
0: तो अब सबको अंकुरण के अलग अलग, गुआर में 70 अंकुरण होना चाहिए, बाजरा में 75 होना चाहिए, मूंग में 85 होना चाहिए, 85 से कम दाना अंकुरित हो रहा है मतलब वो बीज बढ़िया को नहीं,
1: बढ़िया को नहीं।
0: तो प्रमाणित बीज में थाने सगड़ा गुण धर्म बढ़िया मिलेगी, बाकी आर्द्रता भी मानक आधार पर मिलेगी, बाम थाने बीमारियां कीड़ा मकोड़ा कम मिलेगा।
1: बिल्कुल,
0: जो लिमिट निर्धारित करिए बीज के अनुसार सब चीज हो, तो इसलिए प्रमाणित बीज किसान खरीदेगो तो बीज से भी बढ़िया पैदावार। दूसरी बात, एक बीज खरीदते टाइम किसान ने जरूर ध्यान रखना है कि हमारे पिछले साल के समस्या है बीज की थे, जब तक डिस्कशन नहीं करोगा, जब तक कोई विशेषज्ञ से जानकारी नहीं लो हमारे खेत में। अब जहाँ उदाहरण के तौर पर आपने खेत के मायने हरी बाली रोग बाजरा में बहुत कॉमन, बाजरा में खूब आवा हरी बाली,
1: बिल्कुल
0: दाना की जगह दाका सा बन जाओ। अब थे आई बात विशेषज्ञ सलाह ले लो हमारे खेत में पिछली साल लगी हरी बाली बोली आई, तो मैं किसी वैरायटी लिया तो मैं बता देगा था ना कि थे HHV-67 वैरायटी काम लो रोग रोधी किस्म है। तो किस्म को चयन और बीज को चयन बहुत महत्वपूर्ण है कि थारे खेत में के बीमारी आई, के कीड़ा मकोड़ा आया, किसी परिस्थिति रही, जल्दी बुआई कर रहा हो लेट बुआई कर रहा हो, लेट कर रहा हो तो कम टाइम की थाने बीज लेनो है, कम टाइम में पकड़ा रहो, जल्दी कर रहा हो लंबे संभाली थे फसल ले इसको, तो आ चीज बहुत जरूरी है।
1: आपने के एक चार पांच साल के मैंने आपने जटे सुनना आपने क्षेत्र है जटे आपने रेडियो आवाज जारी है, तो अटे बरानी क्षेत्र के मायने खास तौर से ज्यादा जोर मूंग की फसल पे है और बिंग बाद में बाजरो आवे, ठीक है, तो बिंग बाद में फिर गुआर आवे बाजरो बाद में, मुख्य मुख्य तीन है और थोड़ा जून की तरफ जाऊंगा तो बिंग माँ के चमड़े की किस्म है थोड़ी आवे बिंग माँ, तो बाजरो मुख्य अपमान के चला मूंग और बाजरो। अब बाजरे में थे जो बताया जो बाड़ी आड़ो वो रोग हो गयो, एक बाजरे के मायने हरिया हरिया मूंग सा निकले दाना बन जाए,
0: दानो मोटो हो जाए, कंडुआ रोग बोलना,
1: हाँ कंडुआ, फिर भी कालो कालो पाउडर सो निकले
0: भी, हाँ भीम कालो पाउडर, हाँ। तो कंडुआ रोग है, हाँ। के लिए नहीं बीज उपचार बहुत जरूरी है,
1: हाँ।
0: अब किसान भाई के लिए बीज उपचार अगर कर लगो या एक मायने के वाइटावेक्स नाम की एक दवाई है,
1: हाँ।
0: 2 ग्राम 1 किलो बीज के पीछे बीज उपचार अगर किसान भाई कर ले तो अब बीमारी को नहीं आओगी। हरी बाली के लिए बीज उपचार है, बीज उपचार में दवाई बहुत कम मात्रा में लगे, पहली बात तो जहर दवाई मतलब पेस्टिसाइड काम ले रहा है वो जहर है, ये जहर खड़ी फसल में तो किलो में डालना पड़े और आपा बुआई का टाइम बीज नहीं उपचारित कर लिया नहीं तो भी मैं 2 ग्राम 4 ग्राम 6 ग्राम इतनी रिकमेंडेशन है, इतनी अनुशंसा है। जी हाँ, हरी बाली के लिए एप्रोन 35 HD है, 6 ग्राम 1 किलो बीज के पीछे बीज उपचार कर दो अब बीमारी को नहीं आओगी। कंडुआ थे बात करी भी के लिए 2 ग्राम से बीज उपचार कर दो, बाजरा में आपने बूंदियो बहुत लग है, बूंदियो रोग है तो बूंदियो आपने क्षेत्र में कॉमन है बेरो है हर साल आवे, किसान भाई के लिए बीज उपचार बहुत सिंपल, तो नमक का घोल से 20% नमक का घोल से अगर बीज उपचार कर दे तो कंडुआ रोग को प्रकोप अपने आप कम हो जाएगा। नमक 20% नमक को गोल में समझाऊं किसान ने कि 200 ग्राम नमक 1 लीटर पानी में, मैंने बोला 20% 1 लीटर पानी में 200 ग्राम तो 10 लीटर पानी में 2 किलो नमक, मैंगो को नहीं सबसे सस्ता वाला नमक लिया हो तेजी मिला लो, बीज ने बाजरा गन भी डुबो दो, जब डुबोगा तो जिको बीमारी आरो बीज हो वो भी आप बीज जनित और मिट्टी जनित दोनों तरह की बीमारी, मैक्सिमम इन्फेक्शन बीज सा हो, तो जो

0: हल्को बीज होगो, बीमारी वालो बीज होगो, वो अपना ऊपर आ जाओ, बिंदु हटा दो, और बचड़ा बीज ने किसान भाई तीन चार बार साफ पानी से धोना जरूरी है, ध्यान कर लिया।
1: नमक का पानी कितनी देर रखना चाहिए?
0: नमक का पानी में जितनी देर रखो बीज का हल्का ऊपर आ जाओ,
1: ऊपर आ जाओ,
0: है नी, और ज्यादा देर को रखना, फिर भी निकाल के साफ पानी से जरूर धोनो, नमक लागड़ो बीज अंकुरण कम हो जाओ, और फिर छाया में सुखानो है, अगले दिन बुआई करनी है, मतलब बुआई से पहले दिनों काम करना है। यानी किसान भाई बीज उपचार करके पाछो पोटली बांध दे तो वो खराब हो जाए।
2: अच्छा तो, डॉक्टर साहब देखो के जिया बीज उपचार है जो को किसान भाई कर लियो, जिया थे बतायो के बाजरे को बीज उपचार कर दियो, तो भी है जिया आपने जिया मूंग है, चोंगड़ो है और मोट है, अन्य भी उपचारित आप कर सका?
0: कर सका आप आगे बीमारी फसल के समस्या जिया खास कर आप दलहनी फसल में, एक तो उर्वरक के लिए बीज उपचार जरूर करना, उर्वरक के लिए एक तो राइजोबियम और एक PSP वो बहुत जरूरी है। राइजोबियम आपने के करे दाल आरी फसल अगर ध्यान करो तो आप जिया ही उखाड़ा तो बाकी जेडा में गांठिया पाई जाए, गांठिया में एक जीवाणु है जिन बोले राइजोबियम, वो जीवाणु के एक रहे कि वातावरण की जो नाइट्रोजन आपने वातावरण में हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है बिन खींच कर पौधा उपलब्ध करवा,
1: नाइट्रोजन की फैक्ट्री बोले
0: नाइट्रोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करे। अब इसलिए आपने यूरिया वगैरह दाल आरी फसल कम डालनी पड़े, और आप जमीन में खूब दवाई गिरा, दवाई गिरने से राइजोबियम आपने जमीन में अपना आप कम हो गयो, गांठिया भी कम बने, तो आप अगर बीज उपचार करके चलांगा तो भरपूर मात्रा में गांठिया बनेगी, और गांठिया भरपूर बनेगी तो नाइट्रोजन मिट्टी में खूब जमा होगो, खूब जमा होगो, अगली फसल में भी फायदा मिलेगा, यदि दाल के बाद में अनाज ले तो बढ़िया पैदावार हुआ।
1: अभी को एक फर्क और भी हुआ कि आप दलहन कोई भी फसल है बिन जड़ क्षेत्र नहीं उखाड़नी चाहिए, बिन जड़ अंदर है बिन काटनी चाहिए, अब बात जितनी जड़ जमीन के अंदर रहेगी नहीं तो बात जमीन है बात पोषक तत्व भरपूर रहेगी, क्योंकि बिग अंदर वो राइजोबियम में या जो भी गांठ है
0: वह मौजूद है। दूसरी बात मैं एक जरूर बताना चाहूंगा, कई किसान आप बहुत किसान पूछ रहे कि दाल आर फसल हम तो थे राइजोबियम बता दो, अनाज आर इन क्या उत्साहित करा, तो अनाज आर इन थे एजेटोबैक्टर काम, एजेटोबैक्टर वही काम करेगा दाल आर फसल हम जो राइजोबियम करे, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आप राइजोबियम काम में लियो, ये फास्फोरस की पूर्ति के लिए एक PSP नाम को कल्चर आवे, वो भी एक जैविक उपचार है, जैविक उर्वरक है। देखो मैं थाने एक बात बताना चाहूँ कि किसान DAP को बहुत इस्तेमाल करा है, और DAP की क्या हुआ है कि जितनी DAP थे खेत में डाल दिया नहीं भी को अधिकतम हिस्सो मिट्टी के अंदर अघुलनशील अवस्था में जमा होता
1: जमा,
0: मतलब आप मान लो कि DAP थे 100 किलो गाली 70 किलो DAP जमीन में पड़ी है,
1: हाँ।
0: काम को नहीं आ रही, DAP को गुण हुआ है जिको जड़ का संपर्क में आप वो बाद DAP तो पौधों खींच ला, बाकी DAP वह अघुलनशील अवस्था में पड़ी रहे, और वो PSP के एक सिंपल भाषा में समझाओ तो अघुलनशील बना दे, अभी अघुलनशील फास्फोरस ने गुणनशील फास्फोरस में कन्वर्ट कर दे, देखो जड़ा पानी के सागर जो चीज खींचेगी बी के सागर ही बिन पोषक तत्व खींचे, अब जिकी चीज गुणनशील ही नहीं है वह पौधों को खींच सके
1: बिल्कुल,
0: और मिट्टी में मौजूद DAP नहीं अगर आप काम में ले लियो तो अपन DAP डालने की जरूरत है
1: बिल्कुल,
0: समझ रहे हो, आपने सिर्फ और सिर्फ एक जैविक बीज उपचार करना अपने फास्फोरस की पूर्ति होगी
1: बिल्कुल।
0: तो किसान भाई ज्यादा से ज्यादा जिया राइजोबियम PSB आपको यूटिलाइज एजेटोबैक्टर आपको यूटिलाइजेशन करे, ताकि आपने जैविक भी है चीजा जहर भी को नहीं और आपने पोषक तत्व की पूर्ति भी हो रही है
2: बिल्कुल। और देखो जिया मूंग में भी कई रोग लग जाए तो बा रोगां की रोकथाम और मतलब कि बाकी किसान भाई क्या पहचान कर सकेगा भाई आपने हैजुको मूंग में हैजुको अब समस्या कोई पैदा होगी है?
0: जो मूंग के अंदर तो समस्या खड़ी फसल में आवा जनरली, खड़ी फसल में आपने हटा एक तो सरकोस्पोरा लीफ स्पॉट अब बीमारी कई बार देखने मिल रहा है, सरकोस्पोरा लीफ स्पॉट में क्या होगा आपने पत्ती पे छोटा छोटा छोटा छोटा छेद हो जाए, बाउंड्री ब्राउन सी कलर की हो, अब बीमारी अगर दिखे तो किसान भाई बीमारी एक तो ध्यान करे आप बीमारी के लिए हमेशा फंजीसाइड डल है और कीड़ा को अटैक अभी के लिए कीटनाशक डल है, तो यहाँ नहीं था खेत में आई तो बीमारी अर्थ कीटनाशक डाल, कई बार किसान कंफ्यूज हो जाओ छेद देख कर जाना कीड़ा बटे कीड़ा को नहीं वह बीमारी है भी के लिए थान कार्बेंडा जिम डाल दो, अब कार्बेंडा जिम को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काव कर देगा तो अब बीमारी रुक जाएगी। जहाँ मूंग की थे बात की तो मूंग में एक समस्या लट की हो रहा है, मूंग में चना की लट आजकल बहुत देखने मिल रहा है, जो चना में लागे अगर नहीं बागी बाल लट आपने मूंग में खूब आ बाल लट अगर थान दिखाई दे तो इको एक तो जैविक उपचार बताऊं मैं थाने NPV नाम की दवाई आवे न्यूक्लियर पोलीहाइड्रोसिस वायरस, वो एक वायरस है विषाणु है जो जैविक है वो आपने लिए कोई नुकसानदेह को नहीं, लेकिन मूंग

0: कभी लट के माई ने इन्फेक्शन पैदा करे देखिए आंत खराब कर दे वो मर जाए मर कर लटक जा तो इको छिड़काव कर सको थे 250 एलई कंसंट्रेशन को 750 ml 4 बीघा में 1 हेक्टेयर जमीन का मैं था छिड़काव करना है तो इसे भी लट मर जाएगी और एनपीवी नहीं लेके कोई दवाई लाना चाहो तो भी के लिए इमामेक्टिन बेंजोइट की रिकमेंडेशन है इमामेक्टिन बेंजोइट है विकी 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करने से भी लट मर जाएगी पर जैविक थे कर सको तो बिन प्रायोरिटी में रखो बिन प्राथमिकता दो
1: नहीं डॉक्टर साहब तेज के जैविक के और रासायनिक जो भी बताई दवाइयां आसपास क्षेत्र में उपलब्ध
0: है उपलब्ध है सारी दवाइयां उपलब्ध रहे इसी बात को नहीं देखो जैविक में एक समस्या हुआ है जैविक में क्या समस्या हुआ है कि जैविक में जीव है और आंकी एक उम्र है और किसान भाई अगर नहीं खरीदेगो तो बेचने वाला व्यापारी है वो दुकान में लाकर रखोगे और बाकी तो दवाइयां के जहर को तो एक्सपायरी डेट है 2 साल 2.5 साल 3 साल ऐ तो 2-4-6 महीना में खराब हो जाएगी
1: बिल्कुल
0: अब किसान जब तक जागरूक नहीं हो वो ज्यादा से ज्यादा खरीदेगो नहीं जब तक दुकानदारान को ना खोगो तो किसान अगर डिमांड करेगा तो व्यापारी बातचीत अपना आप रखने लग जाएगा तो इन किसान को बहुत महत्वपूर्ण योगदान है की वो जैविक चीज ना अपनावे ज्यादा से
1: अच्छा एक ट्राइकोडर्मा
0: देखो ट्राइकोडर्मा भी एक जैविक ही फफूद नाशी है एक तरह से वो फफूद है और वो फफूद नहीं मारे वो फफूद होकर फफूद नहीं मारे मिट्टी में मौजूद रहो लेकिन अपा इतो फंजी साइड इतो फफूद नाशी मिट्टी में गेर दियो अपनी मिट्टी में की संख्या होगी कम तो अब अपनी मिट्टी से ही निकाल के और इको मास प्रोडक्शन करके पाउडर रूप में या लिक्विड रूप में बाजार में बिको ट्राइकोडर्मा नाम से और वो ट्राइकोडर्मा केक रहे के इको बीज उपचार भी कर सका भूमि उपचार भी कर सका आप पौध उपचार भी कर सका या कोई टमाटर बैंगन की पौध लो भी की पौध नहीं एक गोल में डुबो दो और फिर डुबो के निकाल के फिर लगा दो तो इसे एक तो मर्दा जनित बीमारी को नहीं आओगी कोई भी मर्दा जनित बीमारी है आपने जिया मर्दा जनित बीमारी थे जिया चना की मूंग की आपने उगटा लागे या जड़ गलन लागे मूंगफली में जड़ गलन लागे गुआर में जड़ गलन लागे कोल्लर रोट लागे जड़ पौधो और जड़ जुड़े है सतह जो है कई बार गोल सो कालो धब्बो बन जा टूट जा तनो
1: बिल्कुल
0: तो ऐ जितनी भी मर्दा में जो बीमारियां हुई नहीं मिट्टी के अंदर ऐ सगड़ी बीमारी को रामबाण उपाय है
1: अपना किसान भाई आ सोचे के दीमक की वजह दीवड़ी लाग गयो
0: देखो दीमक की वजह दीवड़
1: को अलग है
0: दीवड़ को अलग
1: हां वो जो को सतह पर जो गोल चक्कर वाला है
0: वो गोल रोट है वो फफूंद जनित बीमारी है और इसके लिए ट्राइकोडर्मा रामबाण है अब बीज उपचार कर दो चाहे 6 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार काम कर जाओ भूमि उपचार कर दो चाहे गोबर की खाद मिलाओ तो 100 किलो गोबर की खाद में 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर मिलाकर मिट्टी मिलाते हो तो वह मिट्टी में भी काम कर जाओ और सीडलिंग ट्रीटमेंट भी थे वो जिन्हें भी उपचारित कर सको दूसरा एक चीज और बताऊंगा ट्राइकोडर्मा को सिर्फ और सिर्फ रोग बगाने में ही रोल को नहीं ट्राइकोडर्मा पौधा की वृद्धि ने भी प्रभावित करे वृद्धि ने प्रभावित करने का मतलब वो है थे एक खेत में आधा भाग में ट्राइकोडर्मा ट्रीट कर दो बीज या भूमि उपचार आधा मत करो थे देखोगा कि जिगो ट्रीटेड है नहीं बीज के अंदर पौधा की हाइट भी ज्यादा मिलेगी थाने अगर उखाड़ के देखोगा तो जड़ा की वृद्धि भी ज्यादा मिलेगी शाखाएं ज्यादा मिलेगी और बीप जो उत्पाद बनेगो जो आपनो दानो बनेगो वो गुणवत्ता युक्त होगा
1: बिल्कुल
0: बीज की गुणवत्ता निश्चित रूप से ज्यादा होगी बीज के पौधा में बीमारियां भी ऊपर भी कम लगेगी मर्दा की तो खत्म ही कर रही है तो ट्राइकोडर्मा दोनों तरीका से काम करे मर्दा में मौजूद हानिकारक फफूद न मार दे और सागर सागर पौधा की वृद्धि भी बढ़ा दे
1: नहीं एक बार यहाँ भी प्राकृतिक चीज है पौधों जो हम ताकतवर हो सी ने तो छोटी मोटी बीमारियां तो वो
0: अपना आप
1: अपना आप कर ले देख रहे है ना इन खाली कमजोर पौधो है कमजोर जगह के मायने है ट्रीटेड है ही नहीं कमजोर पौधो आदमी पर तो हजारों बीमारियां लागनी है ना सबसे पहली बार टेक बीमारी हो सी
2: तो डॉक्टर साहब देखो के जब आप बीज उपचार कर ला तो कई रोग है जो को तो खत्म हो जाए क्यों कहने के बीज उपचार का सागे ही बहुत सारे रोग थे बताया के खत्म हो जाए और भी हम मान लो के जहाँ थे रहे जो भी हम खतर कर या कर दलहनी पौधा में जो को यो नाइट्रोजन की है जिसकी पूर्ति करे है भी हम मान लो आपने पोषक तत्व या फॉस्फोरस हो तो वो पोषक तत्व की पूर्ति खातर भी कोई बीज उपचार करना पड़े या कोई और तरीको है
0: भी फास्फोरस के लिए मैं बता दियो पीएसबी को यूटिलाइजेशन पीएसबी थे काम में लो बाकी देखो आजकल ये गवर्नमेंट और इनक्रेजमेंट कर रही है कि किसान भाई डीएपी की जगह एसएसपी काम में लो अगर थे देखो के लिए खूब प्रचार प्रसार कर रही है गवर्नमेंट क्योंकि डीएपी जो है नी वो देवे आपने फास्फोरस और नाइट्रोजन दो पोषक तत्व एसएसपी में सल्फर हुआ एक्स्ट्रा एक तो एसएसपी खरीदोगा थे तो वो थायरस

0: सो पड़ेगो कंपेरिजन कर कंपेरिजन को चार्ट बना बना के किसान बांटे जा रहे कई कैंपा के अंदर। दूसरी बात देखो, सल्फर एक बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है पौधा के लिए,
1: बिल्कुल
0: जो खास

0: सिटी तो 40% तेल बनाने की है
1: हाँ।
0: लेकिन भी बन रही है 37% 36% ही, 4% तेल कम होगा तो भाव अपना भी कम मिलेगा बाजार में, तो सल्फर की पूर्ति किसान अगर एसएसपी काम में लेगा तो अपना भी हो जाओगी। दूसरी बात है कि और पोषक तत्वों पर भी किसान ने ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि मिट्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी को नहीं, आपने क्षेत्र की बात करा चूरू झुंझुनू जिलो आ के अंदर अक्सर ज्यादातर मिट्टी का नमूना जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला मार्ग ना हो तो भी मैं देखा गा के अंदर जिंक और लोहा तत्व लगभग मैक्सिमम मिट्टी के नमूना में दोनों तत्व कम है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है कम मात्रा में चाहिए, बीघा का लगभग 2-2.5 किलो की रिकमेंडेशन है
1: हाँ।
0: एक बीघा की ठीक है, आपने अठे जहाँ झुंझुनू बीघो छोटो है बटे 2-2.5 किलो अठे लगभग 4-5 किलो बीघा की रिकमेंडेशन आ जाए, तो जो अपोषक तत्व की कमी अगर मिट्टी में है तो दाना में भी कमी रहे। आजकल आप बात करा आयरन की गोला बांट रहे
1: हाँ।
0: क्यों बांट रहे, क्योंकि खाने से पूर्ति को नहीं हो रही,
1: खाने पूर्ति को पूर्ति होगी कटो। अब एक बात बताओ कि भी गेहूं को उत्पादन नहरी क्षेत्र में
0: हाँ।
1: है, अब नहरी क्षेत्र में थे जो बताओ जो डीएपी और यूरिया के अलावा कोई चीज कौन डाली जा
0: हाँ।
1: आ सोचा कि भाई बटे नहरी क्षेत्र में एक बीघे 12-15 क्विंटल गेहूं हुआ है
0: हाँ।
1: तो बीघे लिए दब्बा दब अब मेरे देखते देखता हमारी भी जमीन है
0: हाँ।
1: तो देखते देखता जिते पूरे 25 बीघा में 5-7 कट्टा ल्याता यूरिया का और 2-4 कट्टा ल्याता डीएपी का और भाई ये बीज तक बड़ो ठाली हो पिछले साल कमजोर रेड हो इनके मैं डीएपी घेर दो अब आप 10 गुना बढ़ी हो, अब सारी खाता 10 गुना बढ़ेगी।
0: देखो खाद जो डीएपी यूरिया की बात कर रहे हो ऐसा रासायनिक खाद है, रासायनिक खाद बहुत ज्यादा मात्रा में डालोगा तो भूमि बंजर हो
1: बंजर होगी बिल्कुल होगी,
0: और इस बहुत अति इस्तेमाल करना आपको बहुत नुकसान,
1: बहुत नुकसान
0: तो जैविक चीज पर जब आप नहीं आऊंगा तो आप लोग समाधान को नहीं। दूसरो पोषक तत्व सारा डालना है जरूरत के अनुसार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिकमेंडेशन फॉलो करनी चाहिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के मिट्टी की जांच कराने पर एक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में एक स्वास्थ्य कार्ड बनाकर दियो जाए, भी मैं लिखियो जावा कि थारी भी फसल ते खुद ही चयन करो ई फसला में थाने ई मात्रा में आ खाद डालनी है,
1: खाद डालनी
0: है थारे कमी के चीज की है और किसी खाद डाला थारी कमी की पूर्ति हो जाएगी।
1: अच्छा गोबर की बढ़िया सड़ेड़ी खाद में डाला
0: हाँ।
1: तो पोषक तत्व की मतलब ज्यादातर पूर्ति होने की संभावना रहे,
0: पूर्ति हो गोबर की खाद से, लेकिन किसान भाई गोबर की खाद में भी एक गलती करे, किसान कह रहे गोबर की खाद डेरी बनाई खाद
1: हाँ।
0: गोबर जैसे पशु बांध रखे
1: बड़े होनी चाहिए एकदम
0: अच्छी से सड़ी गली होनी चाहिए, क्योंकि डेरी बनाई खाद में की है कि बहुत सारा पोषक तत्व तो
1: उड़ जा
0: नाइट्रोजन वगैरह, अरे कुछ पोषक तत्व भी रस के सागे जमीन में रिसिया, अब वो खाली कार्बनिक पदार्थ है जिन्हें किसान खेत में डाला तो भी सब फायदों को नहीं हो जाता। दूसरों के डेरी बनाई खाद नहीं वो कच्ची खाद हुए पूरी तरह से
1: पकावा
0: दीमक की है, दीमक की समस्या बहुत भयंकर हुआ खेत में, आपने दीमक की समस्या आ रही इसे ही है
1: हाँ,
0: एक सिंपल उदाहरण बताऊं, थेपड़ी आपा थापा थेपड़ी के नीचे थान दीमक दिख जाएगी, क्योंकि वो पाको भोजन है और आपका एक रहा किसान कच्चो गोबर लियो और लेकर मिट्टी मिला दी और खुश हो जाओ मैं आपका खूब खाद मिलाई हूँ, लेकिन किसान से नॉलेजेबल आपा को नहीं आप आत्मा कौन कह रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किसान छोटी छोटी चीजें जो विशेषज्ञ बताओ है बन अगर अपना लियो तो
1: बिल्कुल उत्पादन में वृद्धि होगी, गुणवत्ता अनाज वगैरह जो भी आप पैदा करांगे गुणवत्ता होगा, चारो भी बढ़िया मिलेगा, सारी चीज बढ़िया मिलेगी, और भी की देखो देसी कोई चीज होशी ना बढ़िया होशी, अब बोली चीज करने वास्ते तो यह चीज अपनानी शुरू करी यूरिया और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो लेकिन ज्यादा से ज्यादा उत्पादन तो क्यों ज्यादा लेकिन भी गुणवत्ता है जी 50%
0: पर आएगी
1: हाँ 50% पर आएगी, अब वो ही देशी अनाज है बिग माल अब ये कही कह देंगे पहले खिचड़ी रांधता जो भी जोर बहुत हो है ना
0: आज
1: देशी मोट होता और
0: खाने में भी स्वाद है बुजुर्ग से कहेंगे वो अच्छी चीज खाने में भी स्वाद हाँ। ताकत भी बढ़िया मिलती
1: है
0: और कमी कोई चीज की नहीं होती, और आज तरह तरह का फ्रूट भी खा रहे हैं आपा लेकिन शरीर में कमी है फिर भी दवाया ऊपर से लेंगे
1: कोई कोई तरीकों सगड़ी चीजा का मायने आपा जहर ने शामिल करे कोई न कोई रूप में रासायनिक प्रक्रिया के मांगी गुजरे वो चाहे आप फल लिया हुआ और लिया हुआ, अब अपना देशी फल अपना देशी अनाज मैं तो कार्यक्रम का मैंने हमेशा यहाँ कह करा के आप जो पैदा कराने वो अनाज खावा है ना,
0: बाजरी आपने जी
1: हाँ।
0: आप मोटा अनाज को तो वर्ष भी मनाए गए
1: हाँ?
0: मोटा अनाज मतलब बाजरी रागी
1: हाँ।
0: तो आपने तो बाजरी हुए
1: बाजरी हुए
0: देसी बाजरी भी में खूब आयरन है
1: हाँ।
0: लेकिन किसान

0: उगा तो रही है लेकिन आप में खाने लायक
1: किसान खुद भी कौन खा रहे तो देखो बहुत कम अच्छा बानों के काट लेंगे कि भाई यूं तो कब्जी हो जाए या कोनी गर्मी सर्दी में खानी चाहिए और पहले तो छठ बार मैंने खाता क्यों देखने मिलता
0: पाचन शक्ति भी कमजोर होगी आपनी क्योंकि आपका जहर खान लाग रहा है शरीर आजकल तो चनो आपने टेकी दाल ही चनो ही मूंग मोट चनो ऐ तो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: लेकिन चनो आज किसान
1: पापड़ मंगोड़ी मोट का बन लेता दाल होती जिकी लड्डू बनाता मूंग की दाल का और रानम काम आती और चने को सुखी बने बेसन भी ने दाल भी ने चनो भून के चनो रान
0: लेकिन अब रात में कौन खास कर खालत का कब्जी हो जाए
1: हाँ
0: तो वो कारण कई चीजें हैं पाचन शक्ति कमजोर होगी दूसरों आपा स्वादिष्ट के चक्कर में अच्छी चीजें छोड़ दी
1: तो डॉक्टर साहब आपा बातचीत बहुत करी अब एक लोक रचना सुन लिया भवनलाल सोलंकी की गाइडिया लोक रचना है तो लियो सुनो

जी साढ़े मास में मथुरा त्यागी गोकुल ने ध्यायो ध्यायो साढ़े मास में मथुरा त्यागी गोकुल ने ध्यायो रे ध्यायो साढ़े मास में मथुरा त्यागी गोकुल ने ध्यायो एजी झुर झुर मरे बिरज की नारी झुर झुर मरे

0: तो मोहनलाल सोलंकी की लोक रचना के साथ ही डॉक्टर साहब थे बड़ी ठावड़ी जानकारी दी ऐ के लिए थारो बहुत बहुत धन्यवाद और कार्यक्रम है जो को हटे तानी अपा सगला छू सगला जना करा राम राम राम, राम।, राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत। और राजस्थानी लोक संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मांगीलाल पुजारी और साथियों द्वारा गई कुछ लोक रचनाएं।

राजस्थानी लोक संगीत का यह कार्यक्रम श्रोताओं इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से। आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं मांगीलाल पुजारी और साथियों द्वारा गाई कुछ लोक रचनाएं।

राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आपने सुना मांगीलाल पुजारी और साथियों को, और इस लोक रचना के साथ राजस्थानी लोक संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर, रात्रि के 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

फिल्म संगीत की पहली प्रस्तुति हम राज फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर की आवाज में। गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है रवि ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में पहली प्रस्तुति आपने सुनी हमराज फिल्म से। आइए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फिल्म संगीत की अगली प्रस्तुति अब आप सुनेंगे दो बदन फिल्म से। आशा भोसले की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत दिया है रवि ने।

दो बदन फिल्म का यह गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से। किशोर कुमार आशा भोसले की युगल आवाजों में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम गुलदस्ता इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आइए सुनते हैं गुलदस्ता की अगली प्रस्तुति। गुलदस्ता की अगली प्रस्तुति श्रोताओं अब आप सुनेंगे नगीना फिल्म से मोहम्मद अजीज की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत की अगली प्रस्तुति।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
4: श्रोताओं, फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम गुलदस्ता इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चुरू केंद्र से। श्रोताओं, ये सुनते हैं फिल्म संगीत की अगली प्रस्तुति।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये गीत अभी आपने सुना बड़े दिल वाला फिल्म से। फिल्म संगीत की ये प्रस्तुति इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से। आइए बढ़ते हैं फिल्म संगीत की अगली प्रस्तुति की ओर। अगला गीत अब आप सुनेंगे कारवां फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल आवाज़ों में।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से। कारवां फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में। इसी कड़ी में आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का अंतिम गीत, कटी पतंग फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में।

0: होता है।
1: कटी पतंग फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना फिल्म संगीत के कार्यक्रम गुलदस्ता में, और इस गीत के साथ यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। आपसे थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या, और रात्रि 9 बजे समय रहेगा News@9 का।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि

0: चलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी

0: नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
1: रास लफान परियोजना में जो वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
1: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है। कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में

0: 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
1: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation –

कार्यक्रम मन भावन सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आपके बहुत से जो बहुत सारे हमारे श्रोता हैं उनके बहुत से मेल आज हमें मिले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उनके पसंद किए गए गीतों के माध्यम से। सबसे पहले हम जो मेल ले रहे हैं उसका गीत आपको बता देते हैं। दरिया दल फिल्म का ये गीत जिसे पसंद किया है भवन सिंह मीणा, तन्मय मीणा, हमीरी कला, झुंझुनू से। महेश जानू लिखते हैं बहादुरवा झुंझुनू से, सुखजिंदर बुगालिया चिड़ावा झुंझुनू से, बलजीत कांटीवाल बीदासर झुंझुनू से और राजा नंदवाणी, रजत रोहित केशव, मुकुल मनीष, सुमित साक्षी और किरण नंदवाणी नई सड़क चूरू से लिखते हैं। जगदीश मंडल, अभिषेक मंडल गुदड़ी बाजार चूरू से, राकेश कुमार दुधवा मीठा चूरू से, अरविंद खारड़िया लादड़िया चूरू से। साथ में लिखते हैं ये मेल है निशांत फुंडे, ओम प्रकाश मानसी, चेतन गोदिया का, ये लिखते हैं महाराष्ट्र।

से। इसी के साथ मेल है हमारे पास में वार्ड नंबर 47 शीतला चौक वाल्मीकि बस्ती मोचीवाड़ा चूरू से। लिखते हैं बंशीधर पंवार, गोवर्धन पंवार, गुनगुन पंवार, लक्ष्मी नारायण पंवार, हेमंत, मनीष, बेबी, दिनेश, प्रवीण, संजू, सुमन और नानी देवी। पंचमुखी बालाजी मंदिर के पास से लिखते हैं बिलाल खिलजी और पवन कुमार शर्मा। मोचीवाड़ा चूरू से आया मेल हमारे पास में, लिखते हैं रविन्द्र ओझा, लालचंद और दामोदर ओझा। वार्ड नंबर 3 चूरू से ही लिखते हैं दामोदर लाल नागवान, शकुंतला देवी, उमेश, जगदीप, मोनिका, प्रवीण, पद्मा, गणेश और हर्ष नागवान हमें मेल लिख भेजते हैं। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम की ये पहली प्रस्तुति। दरिया दिल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं नितिन मुकेश और विठल भाई पटेल की आवाज में।

तो श्रोताओं, मन भावन कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति दरिया दिल फिल्म से आप सुन रहे हैं। चलिए इस गीत के साथ कुछ मेल्स अब हम शामिल कर लेते हैं। शास्त्री नगर भीड़ शहर से लिखते हैं किशन सपकाल, आशा सोनिया, विशाल, गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा और सार्थक शर्मा। राहुल नगर अमरावती से लिखते हैं सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से लिखते हैं तुलसी मस्कीन, वीणा मस्कीन, आशा राजा, चैतन्य मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से ये श्रोता साथी लिखते हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक और आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्ण और पीहू। हरियाणा से अंकित कागड़ा, मोनी कागड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम कागड़ा, साहिल कागड़ा। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परवणी महाराष्ट्र से लिखते हैं रूपेश संघई, महेश, प्रगेश, प्रीतेश और संघई परिवार के सभी सदस्य। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से लिखते हैं नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक परी और स्वाति प्रयाग चौधरी। ईमेल हमारे पास

मैं शिवाजी नगर वडाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, इनके साथ लिखते हैं शिवशाकर इंद्राताई और छकुलीताई खोबरखेड़े। खांडवी बुल्ढाना से लिखते हैं दीपाली राम धाड़े, स्वराज राम थिलोरी अमरावती से सुनैना पवन भौन।

रानी थांदी और साथ में इनके परिवार के सभी सदस्य है। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से हमारे पास में ये मेल आया है और ये जो श्रोता साथी हैं, ये लिखने वाले श्रोता साथी हैं मोहम्मद सादिक मुश्ताक, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड गोगावा से लिखते हैं हाजी इसाक मोहम्मद उमर और हाजी अयूब शेरी। पाकुड़ झारखंड से लिखते हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद और बोहड़ागाची पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, साथ ही इनके परिवार के सभी सदस्य है। ये मेल हमारे पास में आया है जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उमीर उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल का। मारहरा दरवाजा एटा से लिखते हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज नावेद हसन, सुहेल हसन, अनम यशफ और रशीद अब्बासी। साथ में मेल आया है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये हमें मेल लिख भेजते हैं। तो ये थी कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति, आइए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। दो रास्ते फिल्म की फरमाइश हमारे पास में आई है, इसका जो गीत है इसकी फरमाइश आई है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत के बोल आपने लिख भेजे हैं ये रेशमी जुल्फें। लिखने वाले श्रोता साथी हैं रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी और ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से लिखते हैं सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे कुमार, संचित बयाल, प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख, हर्षिता देशमुख और परिवार के सभी सदस्य। बेलाडीला बस्तर छत्तीसगढ़ से फरमाइश लिख भेजते हैं शिवप्रसाद देवदास, मोहित कुमार, ओमीन उत्तरा, प्रमीला, यमुना, जमुना, अंजुमंजू और इनके परिवार के जो सभी सदस्य हैं ये हमें मेल लिख भेजते हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली प्रस्तुति।

0: कार्यक्रम मन भावन इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से। दो रास्ते फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। पसंद हमारे पास में आई थी रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, और इस गीत के साथ चलिए कुछ मेल्स भी आप शामिल करते हैं। लिखने वाले श्रोता साथी है ग्राम कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हगोणे, योगिता कुमारी प्रियानी और पार्थ हगोणे। साथ में आया मेल हमारे पास में कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से, लिखते हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह, राहुल। नेपानगर मध्य प्रदेश से लिखते हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह। छत्तीसगढ़ मदनपुर से लिखते हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू। मेरठ कैंट से लिखते हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से उदयभान ठाकरे, दीपक, नवीन ग्रंथ और गौरी ठाकरे। छत्तीसगढ़ मदनपुर से लिखने वाले श्रोता साथी हैं श्रवण कुमार साहू और इनके परिवार के सभी सदस्य। दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। सहारनपुर से लिखते हैं आशा, नारंग, सोनाली, सुरेश और जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हुकम चंद कटारिया, पिंटू सैन, हरी निवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा गोल्डन, केपी सिंह चौहान, दीपक सचिन कटारिया, कृष्ण विराज, अर्णव, काव्यांशी, कृतिका और प्रभा कटारिया और साथ ही इनके सभी परिवार के जो सभी सदस्य हैं ये हमें मेल लिख भेजते हैं। साथ में हमारे पास में ये मेल आया है, ये हमारे श्रोता साथी हैं मानेवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर, सुशीला, अनिकत और अंकिता। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरीत रमेश साहू। डुमराव बिहार से डब्ल्यू अली अंसारी और सोनम अदीबा, दानिश अंसारी। गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद और परमानंद आर्य। सरीमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। एक और मेल शामिल करते हैं इस गीत के साथ। लिखने वाले हैं टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से, लिखते हैं ये अशोक, श्याम कुंवर, प्रमीला, चीनू, दीपक, श्याम कुंवर और अनुश्री। बड़ाबम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से लिखते हैं ममता, मार्कंडेय, संजय और बेबी किट्टू। जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से लिखने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोहिनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। गांव पांडर कवड़ा से लिखते हैं अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री और धनश्री। सहारनपुर से ये मेल आया है, लिखने वाले हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से लिखते हैं अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से ये हमारे पास में मेल आया है। साथ में लिखते हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी। ये श्रोता साथी हैं जिन्होंने कि हमें मेल लिखे और इनके मेल आज के इस गीत में हमने शामिल किए। तो चलिए श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: और इस संदेश के बाद फिर से स्वागत है कार्यक्रम मन भावन में, और चलिए शुरू करते हैं आज की अगली फरमाइश को। अगला गीत हमारे पास में कौन सा है सुनवाते हैं आपको, और गीत के बाद में आप सभी श्रोताओं को बताएंगे कि कौन से हमारे श्रोता साथी हैं जिन्होंने कि इस गीत को पसंद किया है। फिलहाल फिल्म का नाम आपको बता देते हैं, प्यासा सावन फिल्म से ये फरमाइश हमारे पास में आई है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की युगल आवाजों।

जी हाँ श्रोता साथियों, तो प्यासा सावन फिल्म का ये गीत इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन में। अब आपको बताते हैं कि कौन से श्रोता साथी हैं जिन्होंने कि हमें ये फरमाइश लिख भेजी है। लिखते हैं माँ नर्मदा श्रोता परिवार शिवकोठी ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश से। आप लिखते हैं राकेश पप्पू सेन, श्रीमती निशा सेन, इनकी मम्मी द्वारकाबाई सेन, इंदौर लिम्बोदी से गिरधारी लाल चौधरी और मनीषा बाई चौधरी हमें मेल लिख भेजते हैं। साथ में ही इसी के साथ उन श्रोता साथियों के इसी गीत के साथ मेल शामिल करते हैं जिन्होंने कि हमें लिख भेजा है कि भाई किसी भी गीत में हम शामिल करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से लिखते हैं गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। अस्तुपुरा जिला मऊ से लिखने वाले हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से लिखते हैं आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद। गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से लिखते हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। सदर बाजार कुरावली से लिखते हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी।

0: राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक भाटिया, धनोरी तेलेवारा से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और अयान बाबू, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सिटी दीवाना। साथ में मेल लिखते हैं हमें कल्याण मुंबई से किशोर हिबराले, सुजाता और प्रतीक, कोहका भिलाई से लिखने वाले हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल। साथ में धमदा ग्राम सुखरी कला से लिखते हैं अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल। सोगा मगर लोड से लिखते हैं फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हयांश कुमार। नागर कोहरा जिला राजानंद गांव छत्तीसगढ़ से लिखते हैं बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता गौड़, लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकजोड़ तिरुपति साहू, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य लाडू कोयल मल्होत्रा, इनके पापा नानक चंद मल्होत्रा, शिवजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुगु भावी का सिक्का और मोर टका माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति, शुभम, देवकिशन, भावना, मन मानस और कनिका पटेल ने हमें ये मेल लिख भेजा है। तो श्रोताओं, मन भावन कार्यक्रम में इन सभी श्रोताओं के मेल्स हमने शामिल किए हैं। फिलहाल सुनते हैं एक संदेश।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
0: फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन। जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, आकाशवाणी के चूरू केंद्र से सुन रहे हैं। अगली जो फरमाइश आई है विश्वास फिल्म से हमारे पास में आई है, मुकेश की आवाज में। तो ये सुनते हैं अगली फरमाइश।

तो श्रोताओं, मन भावन कार्यक्रम में विश्वास फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में आप सुन रहे हैं। गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। अब ये गीत कौन से श्रोता साथी ने सुनना चाहा है, उनका मेल, उनका नाम आपको बताते हैं। लिखने वाले हैं सादुल शहर राजस्थान से, राम कुमार रिवार्ड, चंद्रकला रिवार्ड, साथ में अनारकली बाजार जगराओ से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुचा सिंह पाठक और जयपाल यादव। इन्हीं के साथ कुछ मेल्स को शामिल करते हैं। ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से लिखने वाले हैं गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी और परिवार के सभी सदस्य। ऊपर कोट मोहल्ला चोखुनटी बुलंदशहर से लिखते हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन सुहान, अरजान अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य हमें ये मेल लिख भेजते हैं। इन्हीं के साथ में हमारे पास में मेल आया है जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, आरव और अर्पिता। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पालीरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा लिखते हैं और ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा हमें मेल लिख भेजते हैं। साथ में ही हमारे पास में मेल आया है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। लिखने वाले श्रोता साथी हैं अभिजीत गुआंकर राही, सरिता गुआंकर, प्रिंस एकांश गुआंकर। बदलापुर मुंबई से लिखते हैं प्रणीता गुआंकर, सिद्धांत, अर्जुन और टुक टुक। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से लिखते हैं वैशाली शैलेश, सुमित और कुमारी ध्वनि, परी साथ में लिखते हैं। मानसी अनिल, गौरव, कविता अरोड़ा और ये लिखते हैं फैमिली मेंबर वीवीआईपी रोड नई दिल्ली मोती नगर से। स्थान मुक्कम पोस्ट फूल चिंचोली तालुका पंढरपुर से लिखने वाले हैं जागीर मुलानी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, इनके चाचा चाची और मुलानी परिवार के सभी सदस्य। साथ में मेल हमारे पास में आया है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, जग्गी दुआ, संदीप गोगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और स्प्रीत शर्मा। पोटिया कला दुर्ग से संजय शाहू, सुजाता शाहू, शशांक और सीमा। फरमाइश करने वाले हैं गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युद्धव कड़वासरा हमें मेल लिख भेजते हैं। तो ये थी कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। आइए बढ़ते हैं मन भवन कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति की ओर और इसके बाद आपको बताएंगे कि कौन से श्रोता साथी हैं जिन्होंने कि हमें ये मेल लिख भेजा है कार्यक्रम में, जो ये फरमाइश भेजी है इस फरमाइश को सुनने के लिए। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम की ये अगली प्रस्तुति

मन भावन कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से। गीत के बोल सुनकर जरूर समझ में आ गया होगा कि फिल्म कौन सी है। हालांकि इस गाने की शुरुआत में दो म्यूजिक से आपका सामना हुआ था, पर फिलहाल गीत आप सुन रहे हैं नदिया के पार फिल्म से, जसपाल सिंह और हेमलता की आवाज में।

नदियां के पार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं और अब श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि हमारे कौन से श्रोता साथी हैं जिन्होंने कि हमें मेल लिख भेजा है। ये हमारे श्रोता साथी है ग्राम पंचायत सिरसला फवारा चौक जिला चुरू राजस्थान से लिखते हैं संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल सोनगरा, कार्तिक सोनगरा, सचिन चौहान रामसरा वाले और सोनगरा परिवार के सभी सदस्य लिखते हैं। इनके साथ कुछ मेल शामिल करते हैं। लिखने वाले हैं मजनू कटिल्ला से, कमल बालूजा, मधु सागर सतना एमपी से, उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक, गोविंद पुरा सीकर राजस्थान से, दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला ओम कुमार, आरती सुरलकर, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन आभार ढींगिया, पटेल नगर मलोट से लिखते हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू, यवतमाल विदर्भ से लिखते हैं संतोष खड़से और विनोद खड़से, गांव खोखरा वाली गंगानगर से लिखते हैं विनोद बरासा, विशाल विकास, रोशनी शगुन, गांव हीरा वाली फाजिल का पंजाब से लिखते हैं सुभाष गुदारा, विमला, इंदु पार्वती, हिमांशु गुदारा, गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डूडी लिखते हैं। पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब से ये बबलेश पंवार, डैनी और मनीष पंवार, रामदेवरा से लिखते हैं दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा, कंवर कॉलोनी बड़वाहा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से लिखते हैं बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, रेखा पार्थ कश्यप, जखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। इन श्रोता साथियों ने हमें मेल लिख भेजे हैं और चलिए श्रोताओं शुरुआत करते हैं अब कार्यक्रम के अगले गीत की। मनभावन की अगली प्रस्तुति जिसकी म्यूजिक आप पहले भी अब इसी कार्यक्रम के दौरान सुन चुके हैं, फिलहाल आपको बता देते हैं प्रेम गीत की ये फरमाइश आई है जगजीत सिंह की आवाज में। किन श्रोता साथियों ने लिखा है इस गीत के बाद आपको जरूर बताएंगे।

तो श्रोताओ, मन भावन कार्यक्रम में प्रेम गीत फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में। गीत को लिखा हिंदी वर्ण ने, संगीत दिया है जगजीत सिंह ने। और मन भावन कार्यक्रम के माध्यम से ही आपको बताना चाहेंगे कि इसके जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके जस्ट बाद आप सुन पाएंगे रात्रि 10 बजे से कार्यक्रम हेलो चुरू, फोन इन रिकॉर्डिंग पर आधारित इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुन पाएंगे आज रात 10 बजे। और ये जो गीत आप सुन रहे हैं, इसकी फरमाइश हमारे कौन से श्रोता साथियों ने लिख भेजी है, उनके नाम आपको बता दिए देते हैं। प्रतिष्ठान रेडियो संघ नेहरू चौक पैठण से लिखने वाले हैं ये सुरेश जाधव, अनीता आरती, प्रसाद जाधव, सोनल, बेबीसिया जाधव, और जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता। इनके साथ मेल को शामिल करते हैं, लिखते हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से लिखते हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय। दुईहा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवांकर, निर्मला विशाल। मलकापुर महाराष्ट्र से सोपान तायडे, नारायण, आशीष। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, तानिया। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर शिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा, एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम, गुमला झारखंड से लिखते हैं। साथ में हमारे पास में मेल आया है फजिल का, पंजाब से लिखने वाले खेड़ा परिवार के सदस्य हैं भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, च्वेंसी खेड़ा, वाणी, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह, भूक और खेड़ा परिवार के सभी सदस्य। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंशीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून, निशा, सबिश्ता, मोहम्मद नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी। चंडीगढ़ सिटी से लिखते हैं सतीश अनेजा, विमला अनेजा। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन टिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस टिकेस्ट्रो। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार और साई गायकवाड़। साथ में रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जीशान खान लिखते हैं ये। जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल। ये मेल हमारे पास में आया है बीकानेर से मोहम्मद शफी खींची, मोहम्मद शरीफ खींची, मोहम्मद सुजैन खींची, मोहम्मद आजम खींची, नूर फातमा खींची, अकमल हुसैन बियानी, अमजद अली खींची और एम शफी मिस्त्री। लोको कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, योगेंद्र कुमार और नरेंद्र कुमार चिंडालिया। और ये मेल इस गीत के लिए अंतिम मेल है ये जीटीवी मार्केट अहमदनगर मंडी पंजाब से लिखने वाले हैं मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, जावेद अख्तर, जस्मिन, शकीला और समा, हीना, राजिया, सुल्ताना, सुराज अंसारी और सना, और साथ में इनके परिवार के सभी सदस्य हमें ये मेल लिख भेजते हैं। तो ये थी जो ये कार्यक्रम है मन भावन, इसमें प्रस्तुति जगजीत सिंह की आवाज में। चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रस्तुति की ओर। और अंतिम प्रस्तुति की जो फरमाइश आई है प्यार झुकता नहीं फिल्म के लिए, फरमाइश हमें श्रोताओं ने लिख भेजी है। इन श्रोताओं के नाम आपको पहले आपको बताना चाहेंगे। लिखने वाले हैं दत्तरे की भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखे लाल वर्मा। साथ में मोर टका माफी खंडवा जिला खंडवा से लिखते हैं, किसान श्रोता है ये, जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, शुभम पटेल, देवकिशन, मन मानस और कनिका पटेल। छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका और अनिष्का तन्मय। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। साथ में लिखते हैं हिंगोली महाराष्ट्र से हमारे पास में ये मेल आया है। ये लिखने वाले श्रोता है शाहजी बोरखे, श्रीमती नंदा बोरखे, हनुमान बोरखे और उत्तम जमदाड़े। उत्तम नगर दिल्ली से लिखते हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल। और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा और साहिल प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। तो सुनते हैं

प्यार झुकता नहीं फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की युगल आवाजों में। गीत को लिखा है SH बिहारी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम मन भावन इस समय चल रहा है और जो श्रोता अभी नए जुड़े हैं उनको कहना चाहेंगे कि आज का जो ये कार्यक्रम है मन भावन, इस कार्यक्रम में जो हमसे श्रोता जुड़े हैं उनके हमारे पास में जो मेल आए हैं हमने उनके नाम आप सभी को बताए हैं, और जिन श्रोताओं ने जो नए आज जुड़े हैं और पहली बार ये कार्यक्रम सुना है उनको कहना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है मनभावनचूरू@gmail.com।

0: और इस गीत के साथ कार्यक्रम मन भवन अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त लक्ष्मीकांत ओझा को। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भवन। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। रात्रि के 10 बजे हैं और आइए अब सुनते हैं हेलो चूरू कार्यक्रम।
1: हेलो चूरू कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को कुंज बिहारी का नमस्कार। श्रोताओं, फिर से हम आपके साथ हैं। आप सभी के फोन कॉल्स को लेकर बहुत प्यारी प्यारी बातें हमारे श्रोता करते हैं और उन बातों के साथ हम उनकी पसंद के गीतों को शामिल करते हुए पूरे कार्यक्रम को तैयार करते हैं। आज के कार्यक्रम में बहुत सारे श्रोताओं ने हमें फोन किया, उन तमाम श्रोताओं का हम स्वागत करते हुए शुरू करते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो चूरू। कार्यक्रम हेलो चूरू में आपका स्वागत है।
2: जी, मैं अरुण पवार बोल रहा हूँ सर, रामगढ़ से।
1: क्या करते हैं अरुण जी?
2: जी, मैं फायर ब्रिगेड में ट्रक चलाता हूँ जी।
1: आज यूं लग रहा है कि पहली बार आपसे बात हो रही है इस कार्यक्रम में।
2: हाँ जी सर, पहली बार जी ट्रक में सुना है आपका FM, तो अभी मैंने आपका देखा, वो फेसबुक पे डाल रखा आपने, उसी में देखा है।
1: अच्छा, और रेडियो भी सुन रहे थे साथ साथ में?
2: हाँ जी सर, रेडियो तो अभी नहीं सुन रहा सर।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है, सोशल मीडिया के बहाने हमारे नए नए श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं।
2: सर, अभी देखा था फेसबुक पे, तभी कॉल किया।
1: अरुण जी, ये जो आपका फायर ब्रिगेड का काम है, क्या मानते हैं कितनी जिम्मेदारी का और कितना थोड़ा सा रिस्की काम है?
2: गर्मियों में थोड़ी ज्यादा रिस्क बढ़ जाती है सर।
1: इसका क्या आपने कोई विधिवत कोर्स किया है किसी सरकारी संस्थान से?
2: हाँ जी सर जी, सीकर ITI क्वालिटी सीखी
1: है। अच्छा, वहां से आपने इसका पूरा प्रशिक्षण लिया है। इसमें आपकी जो रेस्क्यू का जितना कुछ इस तरह की टाइमिंग भी सेट होती है।

0: कि आपको इतने मिनट में या इतनी देर में पहुंचना है, थोड़ा सा बताएंगे हमारे
1: श्रोताओं के लिए? जी सर, जब कॉल आती है फायर के लिए तो एक मिनट के अंदर अंदर निकलना होता है सर,
0: तुरंत निकलना होता है,
1: पहुंचना। हाँ जी सर,
0: आपकी जो दमकल है वो तैयार रहती है पानी से भरी,
1: एनी टाइम सर, एनी टाइम चौबीस घंटे रहती है।
0: बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं और इस बीच आप आकाशवाणी चूरू के लिए समय निकाल रहे हैं। हमारे प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: जी सर, नियमित सुनता हूँ।
0: कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: जी सर, वो फेसबुक वाला से, उसी से मैंने स्टार्ट किया था सर, फेसबुक से कमेंट उठा के बताते हैं ना सर।
0: जी जी, दिल से दिल तक इंस्टेंट फरमाइश, बहुत सारे कार्यक्रम हमने नए नए शुरू कर रखे हैं हमारे श्रोताओं के लिए। चलिए अरुण जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: जी सर, वो दिल है ना, दिल है कि मानता नहीं है ना सर, आमिर खान,
0: दिल है कि मानता नहीं।
1: हाँ जी,
0: बहुत अच्छा गीत आपने पसंद किया है, सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए शुक्रिया।

0: कार्यक्रम हेलो चोरू।
1: नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर बोल रहा हूँ सर जी।
0: विजय सुरलकर जी बोल रहे हैं, हमारे नियमित श्रोता हैं आप तो?
1: जी जी कुंज बिहारी सर जी, मैं आकाशवाणी चोरू के सभी कार्यक्रम सुनता हूँ समय समय पर।
0: बहुत अच्छी बात है, देखिए आप इतनी दूर से हमें सुनते रहते हैं, आपके सभी जो कार्यक्रमों में उपस्थिति दर्ज रहती है वो चाहे सोशल मीडिया पर हो, ईमेल पर हो, सब तरह के कार्यक्रम आप सुनते हैं।
1: जी जी सर जी।
0: विजय जी कुछ बताएंगे अपने बारे में? हमें लग रहा है कि आज आपसे हमारी पहली बार बात हो रही है।
1: मेरे सर आपसे तो पहली बार हो रही है, लेकिन आकाशवाणी चोरू में भी मेरा पहली बार फोन लगा सर। सर मेरी दुकान है सर घड़ी की।
0: अच्छा,
1: मेरी घड़ी और गॉगल का मेरा धंधा है सर जी, और मेरे दुकान में दिन भर रेडियो चलते रहता।
0: बहुत बहुत बढ़िया बात है, देखिए आप लोगों को समय की अहमियत बताते हैं, आप समय की कीमत बताते हैं आप।
1: जी सर जी जी।
0: क्या लगता है आजकल दीवार घड़ी के साथ साथ हाथ में बांधने वाली घड़ी है, कौन सी घड़ी इन दिनों ज्यादा चलती है, किसका चलन है?
1: ऐसा है सर कि जब से मोबाइल निकले है तब से घड़ी का चलन थोड़ा कम हुआ है, पर फिर भी सर घड़ी का जो अस्तित्व है अभी भी टिका हुआ है, चालू है अभी भी। घड़ी दीवार की घड़ी हो या रिस्ट वॉच हो, घड़ी चलती है सर अभी भी, और हमारे पास से

0: उसकी घड़िया रिपेयर के लिए आती भी है सर।
1: अच्छा, आप रिपेयरिंग का भी काम करते हैं?
0: जी जी सर, रिपेयरिंग भी करते हैं हम।
1: तो मेरा मानना है कि बहुत पुरानी दुकान है फिर तो आपके, कोई जो से आपके पिताजी दादाजी इस समय की दुकान है क्या?
0: जी जी सर, बहुत पुरानी दुकान है हमारे 30 सालों से।
1: तब तो श्रोता भी आप, ये पीढ़ी दर पीढ़ी है, हमारे श्रोता भी आप इसी प्रकार से बने रहते हैं।
0: जी जी सर, अब कैसा है, आने वाली पीढ़ी करती है या नहीं हमें तो पता नहीं, पर सर हम तो कर रहे हैं और अच्छा धंधा है।
1: नहीं, बढ़िया है, हाथ पर मैंने घड़ी बांध रखी है। और आप कहते हैं कि मोबाइल आ गया तो ठीक है, थोड़ा सा इस चीज का फर्क पड़ा है, लेकिन जो घड़ी का एक जिनको शौक मान लीजिए या वो कहीं ना कहीं घड़ी का इस्तेमाल जरूर करते हैं, ये अपना अपना अंदाज होता है सबका।
0: जी सर। जी
1: विजय जी, आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
0: सर फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल
1: जी,
0: और गीत के बोल है आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा।
1: ये गीत आपको क्यों पसंद है कुछ बताएंगे?
0: सर पुराने जो गीत है सर, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, ये गीत सर बहुत अच्छे लगते हैं और बचपन से सर हम रेडियो सुन रहे थे, ये गीत हमें अच्छे लगते हैं सर जी।
1: चलिए, आपकी पसंद को पूरा कर रहे हैं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा विजय जी, फोन करने के लिए शुक्रिया।

0: कार्यक्रम हेलो चोरू।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सर जी, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा बोल रहा हूँ।
0: सतीश भाई, स्वागत है आपका।
1: बिल्कुल भाई, आपका भी अभिनंदन करते हैं प्रोग्राम में।
0: जी सतीश भाई की आवाज़ देखिए बहुत अंतराल के बाद सुनने को मिली है। हमारे श्रोता कितनी हमारी अपील का कितना ख्याल रखते हैं।
1: बिल्कुल भाई, और इत्तेफाक की बात भी, पहली कॉल डायल करते ही आपसे रूबरू बात हो रही है।
0: अच्छा, पहली कॉल भी?
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
0: तो अभी तो तीसरा फोन है आपका, इसका मतलब भाई लक, ये कहते हैं ना कि आदमी की किस्मत भी कुछ ना कुछ तो काम करती है।
1: बिल्कुल, जस्ट मैंने फेसबुक पे आपकी वो देखा, मैंने आपका जो पोस्ट कर रखा है, तो जल्दी से जैसे ही मिलाया और सबसे पहले बैल गई।
0: क्या बात है, देखिए आपके लिए हमने, हमारे श्रोता आपसे पहले विजय सुरलकर जी से बात हो रही थी, उनका फोन काटा और तुरंत आपका फोन आ गया।
1: बहुत प्यारे दोस्त हैं विजय सुरलकर जी मेरे।
0: बहुत अच्छी बात है। देखिए, रेडियो ने दिलों की दूरियां खत्म कर दी है, और जब से हम मोबाइल एप्लीकेशन पर आए हैं तब से तो श्रोता पता नहीं कहां कहां से उनका ताना बाना जुड़ गया है, एक दोस्ताना बन गया है। आप मानते हैं ना इस बात को?
1: परसों मेरा जन्मदिन था
0: जी,
1: और आप यकीन करके मनीब, रात को मैं 1:30 बजे से आया हूँ, जैसे 12 बजने के बाद जन्मदिन शुरू हुआ, इतनी फोन कॉल और इतनी दुआएं, इतना प्यार जो मेरे श्रोताओं ने रेडियो आकाशवाणी परिवार से मेरे को मिला है,
0: बहुत अच्छी बात है। देखिए, रेडियो से आपका इतना प्यार है और आपके जो कार्यक्रमों में भागीदारी रहती है उससे भी हम महसूस करते हैं कि जो एक रेडियो के प्रति आपका दीवानापन है वो अपने आप में बहुत अनूठा है।
1: सर ये दिल्ली, ये परमात्मा की तरफ से ऐसे लगा लो सर, कोई वरदान ही मिला हुआ, जिससे मोहब्बत करते हैं सर, सच्चे दिल से करते हैं, और आकाशवाणी चूरू से

0: हमारा ऐसा लगाव है सर, ऐसे लगा लो भी हमारी रूह की खुराक है। आकाशवाणी थ्रू को जब भी जितने भी प्रोग्राम सुनते हैं सर, तो सर बिल्कुल मजा है सर। ऐसा लगता है हमारे परिवार के अंदर से ये कोई प्रस्तुतकर्ता जो पेश कर रहा है और हम सारे उसका आनंद उठा रहे हैं।
1: सतीश भाई, कब से सुनना आप शुरू कर चुके हैं चुरू को? पहले दिन कब सुना था आपको, कुछ याद है?
0: चुरू तो सर मैं करीब, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, करीब 3 साल पहले की बात है मैंने सुना था।
1: अच्छा, किसी ने बताया या फिर अपने आप ही कुछ ट्यून करते करते?
0: रेडियो वाले तो जो हम रेडियो के दुकान सर इधर उधर आपको पता है सोशल मीडिया पे ढूंढ लेते हैं, और फिर जब से ये आपका ये प्रोग्राम हुआ है ना, जब से दिल प्रोग्राम आता है तो सर इसने तो ऐसे लगा लो, ये तो मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम आज तक किसी भी आकाशवाणी केंद्र पर प्रसारित नहीं हो रहा, इतना ज्ञानवर्धक प्रोग्राम।
1: इस कार्यक्रम के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है, श्रोता कुछ लिखते भी हैं, कुछ पढ़ते भी हैं, कुछ सुनते भी हैं,
0: और सर जो विचार जो आरजे पेश करता है सर, उसको जब हम सुनते हैं ना सर, तो हम कुछ ना कुछ जरूर नया सीखते हैं
1: जी।
0: बहुत अच्छा लगता है सर।
1: चलिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें सतीश भाई आप हमेशा ही करते हैं। अब हम आपसे गीत भी जानना चाहेंगे।
0: सर गीत तो सारे अच्छे हैं, लेकिन आप चलो आपने पूछा तो गीत लगाओ आप आज मेरे लिए। नी मैं यार मनाना नहीं, ये गीत है दाग फिल्म का, लता और मीनू पुरुषोत्तम ने गीत गाया, बहुत प्यारा गीत है, और जब भी ये गीत बजता है तो ऐसे लगा लो मेरी रूह खुश हो जाती है।
1: वाह, बहुत हटकर गीत सुना है सतीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार इसी प्रकार हमारे साथ बना रहे,
0: हमेशा रहेगा सर। थैंक यू,
1: शुक्रिया।

0: कार्यक्रम हेलो चूरू।
1: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। सर
0: लोकेंद्र जी का आज बड़े दिनों के बाद फोन आया है।
1: जी सर जी, बीच में थोड़ा दूसरे हमारे दोस्त भी आपके प्रोग्राम में जुड़ते हैं, थोड़ा समय उनके लिए भी हमें छोड़ना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम सभी के दोस्त की कॉल को सुनना पसंद करते हैं कि सबकी कॉल आए और हम भी उनके पसंदीदा गीतों की और उनकी बातचीत को सुने, इसलिए थोड़ा बीच में एक आध महीने का गैप दे देते हैं। सर
0: लोकेंद्र भाई, आप जब जिस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं उस कार्यक्रम को भी सुनते हैं या फिर सिर्फ अपना जो आपका नाम जहां आ रहा है या फिर आपकी आवाज जहां आपको सुनने को मिल रही है उसी को सुनते हैं, ये बताएं थोड़ा सा ईमानदारी से बताइए।
1: सभी प्रोग्राम सुनता हूँ मैं, अधिकतर 50% तो मैं फोन वाले प्रोग्राम सुनता हूँ जहाँ अच्छा। कॉल रहती है मेरी, और उसके अलावा जो दूसरे प्रोग्राम रहते हैं जैसे युवानी का प्रोग्राम रहा है या किसी बातचीत रहती है, किसी वार्ता रहती है किसी, और हेलो डॉक्टर का जो प्रोग्राम रहता है, ये मेरा सबसे पसंदीदा प्रोग्राम है, क्योंकि वार्ता जो किसी इंसान की जो उपलब्धि हासिल रहती है किसी कार्य में, और उसकी वार्ता जो बताते हैं ना उद्घोषक महोदय, उनसे पूछते हैं कुछ कि आपकी जिंदगी शुरुआत कैसे की आपने, तो वो वार्ता अच्छी लगती है क्योंकि उससे एक प्रेरणा मिलती है सर कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितना आगे बढ़ने के लिए कितना परिश्रम किया है, तो ऐसा वो वार्ता अच्छी लगती है
0: जी। और लोकेंद्र भाई, आकाशवाणी का मकसद भी यही है कि हर एक्सपर्ट्स को हम यहाँ हमारे स्टूडियो में बुलाते हैं, वो चाहे आपके हेल्थ से जुड़ा मामला हो, किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, हर जो बातें हैं वो हम आप तक पहुँचाते हैं और आप सुनते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मकसद है वो उसमें हम कामयाब हो गए।
1: बिल्कुल, और कामयाब भी होते हैं सर आकाशवाणी अपनी तरफ से, जो अभी ये 90 वर्ष पूरे हुए 8 जून को
0: जी,
1: 90 वर्ष यूं ही आकाशवाणी का इतना सफर लंबा, सब आप जैसे उद्घोषक महोदय और आकाशवाणी की जो टीम है जो इस कार्यक्रम को आगे बनाती है और इस आकाशवाणी को आज 90 वर्ष पूर्ण करके लिए है, पूर्ण हुए हैं
0: जी,
1: उसमें सभी का सहयोग रहा है।
0: बहुत अच्छी बात है, देखिए श्रोताओं के बिना हम अधूरे हैं और आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लोकेंद्र भाई कौन सा गीत सुनेंगे?
1: ये गाना है सर, ये काली घटना फिल्म का गीत है, आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है उज्जैन में, आज शुरुआत हुई है, तो उसका एक गीत है बहुत ही सुंदर, काली घटा छाई प्रेम ऋतु आई के आई आई तेरी याद आई।
0: वाह, बहुत बढ़िया गीत आपने सुना है और आपने इस गाने को गुनगुना के भी सुनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद लोकेंद्र भाई।

0: धन्यवाद सर, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर।
1: गर्ग साहब, कौन सा गीत सुनेंगे आज हेलो चूरू में?
0: उम्मीद फिल्म होगी, उम्मीद इसका गीत है जी, रवि का गाया हुआ है, रवि का गाया हुआ है।
1: बताइए
0: उसके भी बोल मेरी चाय के चरण में बता।
1: जरूर जरूर स्वागत है।
0: मेरा दिल है प्यार का शिया, जहाँ जी तो लूंगा करार से मेरा।

0: चमनलो मैं डरा हुआ हूँ, बहार से मेरा दिल है प्यार काशिया।
1: बहुत अच्छी गायकी का शौक रखते हैं गर्ग साहब, दिल खुश कर दिया आपने गाने को सुना के। हमें तो ये लगा कि हम रेडियो पर ही सुन रहे हैं आपकी आवाज।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: गर्ग साहब बहुत अच्छा गीत गाया, बहुत अच्छा गीत आपने पसंद किया, इसके लिए शुक्रिया। सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना।

0: कार्यक्रम हेलो चूरू।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: नाव डांगरी जिला जैसलमेर से बाबूराम जयपाल।
0: जैसलमेर जिले से आवाज आ रही हमारे तक?
1: हाँ सर जी।
0: क्या नाम बताया आपने?
1: बाबूराम जयपाल।
0: बाबूराम?
1: हाँ सर जी।
0: बाबूराम जी स्वागत है आपका। क्या करते हैं बाबूराम जी, थोड़ा बताएंगे?
1: हमने तो घर पे वो विकलांग खेती बाड़ी करते हैं, हमारे परिवार मेंबर वाले।
0: अच्छा, तो ये जो अभी आपने हमें फोन मिलाया, कैसे पता चला, याद आया कि आपने कहीं फेसबुक पर देखा या हमारे रेडियो पर सुना?
1: नहीं, आप फेसबुक पर भी देखा था, कार्यक्रम विवरण में भी बताया था।
0: अच्छा, आपने कार्यक्रम विवरण सुना?
1: हाँ सुनते हैं हम तो मशहूर, मतलब हमारा तो अब तो पहले नहीं, अब हमारा फेवरेट चैनल हो गया है।
0: क्या बात है, आपने शुरू के लिए अपने दिल में जगह बना ली है आपने।
1: नहीं, मैं मेरे मन की बात बताऊं, पहले तो हम जोधपुर जयपुर ज्यादा सुनते थे, अब तो आपने सूरतगढ़ और ये अपना शुरू सबसे फर्स्ट में सुनते हैं।
0: वाह, आपने बहुत हमें एक सम्मान दिया है।
1: यहाँ से आप बहुत अच्छे प्रोग्राम प्रसारित करते हो।
0: ये देखिए, आपकी मेहरबानी है, हमारे श्रोता इतना प्यार देते हैं तो हम भी बड़े उत्साह के साथ नए नए कार्यक्रम आप तक लेकर आते हैं।
1: हाँ जी सर,
0: बहुत अच्छा लगा। बाबूराम जी, कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है एक महल और सपनों का, गाने के बोल है देखा है जिंदगी को इतना करीब से, मनु किशोर कुमार की आवाज में।
0: वाह, आज तो हमारे श्रोता एक से बढ़कर एक सुन रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी पसंद आ रही है।
1: एक दो दोस्त

0: कार्यक्रम हेलो चुरू।
1: हेलो नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सर सुनील बोल रहा हूँ बादरा से।
0: सुनील जी, आप तो हमारा प्रसारण मोबाइल के माध्यम से सुनते होंगे।
1: यस सर।
0: कितने टाइम हो गए आपको सुनते हुए? साल, 12 महीने?
1: नहीं, कभी टाइम मिलता है तो सर, वर्किंग हूँ तो थोड़ा टाइम कम मिलता है।
0: जी, वर्किंग क्या करते हैं काम?
1: मैं सर प्राइवेट बैंकिंग में हूँ सर।
0: एक जिम्मेदारी भरा काम आप कर रहे हैं, तो आज क्या छुट्टी मना रहे हैं या फिर कहाँ से कर रहे हैं फोन?
1: नहीं सर, एक्चुअली के आज के फील्ड में आए हुए थे तो अभी जस्ट फेस ऊपर अभी देखा तो मैंने कॉल लगाया आपको।
0: क्या बात है, आपने हमारा पेज फॉलो कर रखा है।
1: यस सर।
0: सुनील जी, ये जो रेडियो के प्रति आपकी दीवानगी है, ये क्या लगता है आपको, कितना आपके मन को टटोलती है, कितना आप रेडियो को सुन के सुकून महसूस करते हैं?
1: सर क्या मेरा मानना है एक्चुअली के आज भले ही हम के डिजिटल मोड में आ गए हों, लेकिन के जो रेडियो है ना, आज भी इससे सुकून मिलता है। अलग से के एक तो के कहीं मान लो डिजिटल मोड से सुन सकते हैं, लेकिन जैसे अपन रेडियो या एफएम से सुनते हैं वो मजा सर अलग ही है सर।
0: सही बात है। देखिए, रेडियो का और खासतौर पर आकाशवाणी का जो प्रसारण का तरीका है, जो उद्घोषणाएं हैं, जिस प्रकार से कार्यक्रमों का जो प्रस्तुतिकरण है, उससे हमारे श्रोता दिल से जुड़ जाते हैं और उनको लगता है एक अपनापन सा महसूस होता है।
1: जी सर, वही है।
0: सुनील भाई, कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: सर मेरे को तो एक्चुअली देशभक्ति गीत का है सर।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: बॉर्डर फिल्म का
0: संदेश से आते हैं।
1: जी सर।
0: चलिए, आपका संदेश तमाम श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं। आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम हेलो चोरू
1: जी कुंज बिहारी जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
1: मैं डॉक्टर तरुण बोल रहा हूँ, मंडावा गोपुरा जिला झुंझुनू से।
0: बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
1: जी धन्यवाद आपका।
0: जी तरुण जी, नियमित रूप से आप सुनते रहते हैं हमें पता है, लेकिन हमारी एक अपील की, हमारी एक जो हम आपसे आग्रह करते हैं तमाम श्रोताओं से, उनको आप समझते हैं और बहुत दिनों के बाद आप फोन करते हैं तो अच्छा भी लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, काफी दिनों से मेरे ध्यान में था। फेसबुक पे अभी 2 बजे आपकी रील थी, 3 बजने से 2-3 मिनट पहले
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: फिर मैंने सोचा आज अपने को 2-2.5 महीने हुए, चलो कॉल करते हैं। और मौका भी है, कल योग दिवस भी है, तो मैंने कहा एक विश्वास था मन में कि कॉल लगेगा।
0: सही बात है। देखिए आप नेचरपैथी से जुड़े हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर आज हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जब ये कार्यक्रम प्रसारित होगा उस दिन यानी हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे होंगे। क्या मानते हैं आप, योग ने हमारे देश की और हमारे सामान्य जनजीवन की कैसे दिशा बदल दी?
1: देखिए जैसा नाम स्पष्ट है, योग यानी मिलन, जोड़ करना किसी भी चीज का, किसी भी चीज को मिलान करना, तो वो चीजें अध्यात्म में, अध्यात्म के लेवल पे होती है, सामाजिक लेवल में, सामाजिक लेवल पे होती है। लेकिन इसमें एक मैं छोटा सा संदेश ये देना चाहूंगा, कल ये न्यूज पढ़ी थी कि आजकल कुछ ऐसे स्टार्टअप भी चले हुए हैं कि लोगों में एकाकीपन बहुत आ रहा है, हद से ज्यादा एकाकीपन है। यानी पहले सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों का आपस में सामंजस्य था, लेकिन आजकल इतना ये हो गया कि शॉपिंग करने जा रहा तो उसको पेड साथ में कोई व्यक्ति चाहिए जा रहा है, और इसके अलावा घर में कुछ टीवी देखने के लोगों को पहले बैठ के लोग परिवार के साथ देखा करते थे, आजकल वो नहीं है। तो एकाकीपन से बचना है तो व्यक्ति यदि योग का सहारा लेगा तो फिर वो मानसिक रूप से उसका स्तर मजबूत होगा मानसिक, और फिर उसको ये एकाकीपन और ये चीजें नहीं सताएंगी।
0: सही बात है। देखिए तरुण जी, ये बहुत अच्छा आपने एक संदेश दिया है कि जिस प्रकार से समय बदल रहा है, उस समय के साथ साथ अगर हम अपने आप को शारीरिक के साथ

0: मानसिक रूप से फिट नहीं रखेंगे तो उसके परिणाम कुछ ना कुछ गलत ही निकलेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही। कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: देखिए मुझे महेंद्र कपूर साहब की आवाज पसंद है, तो आप महेंद्र कपूर साहब की आवाज में कोई भी गाना सुना दीजिएगा।
0: बहुत अच्छी आपने पसंद रखी है और गाना आपने मेरे पर छोड़ दिया है, इसका मतलब मैं आपको एक बहुत अच्छा सा गीत सुनाऊंगा।
1: जरूर।
0: थैंक यू तरुण जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया।

0: हेलो चुरू।
1: हेलो चुरू, नमस्कार सर। योगेश
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: पुनिया बोल रहा हूँ सर, कुलसा राजगढ़ से। कुंज बिहारी जी को मेरा प्रणाम। कैसे
0: नमस्कार जी, आपको भी प्रणाम हमारी तरफ से।
1: हो सर?
0: बहुत बढ़िया। और हमारे श्रोताओं के फोन आ जाते हैं, उनसे बात हो जाती है, नए नए श्रोता हमसे जुड़ते हैं तो और भी अच्छा लगता है हमें।
1: मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके। और तकरीबन तकरीबन 20 साल के बाद जो है वो मैं रिकनेक्ट हुआ हूँ सर,
0: बीस
1: तो
0: साल
1: थोड़ा टाइम
0: बाद
1: हो। जी जी सर, मुझे याद है कि अप्रोक्स 2005-06 में और फ्राइडे को इवनिंग में जो है वो 10 बजे के आसपास आपका फोन इन प्रोग्राम आता था,
0: जी,
1: और यकीनन जो खुशी उस टाइम पे मिलती थी ना सर, वही मुझे आज फील हो रहा है सर। बड़ा
0: बहुत
1: मुश्किल से कॉल लगा
0: जी।
1: है लेकिन लग गया सर।
0: आपकी इस खुशी को, आपके इस अनुभव को हम महसूस कर पा रहे हैं कि आप वाकई आज इस कार्यक्रम में शामिल होकर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और
1: बहुत बहुत
0: इतने,
1: अच्छा जी सर।
0: हाँ, लंबे समय तक आप जुड़े रहे, बहुत अच्छा लगा। देखिए, पुरानी बातें आपने कही, हम संडे को रिकॉर्ड करते थे और उस कार्यक्रम को फ्राइडे को हम ब्रॉडकास्ट करते थे।
1: बिल्कुल
0: आपने
1: सर, बिल्कुल।
0: एकदम दुरुस्त
1: और
0: फरमाया
1: अब
0: है।
1: तो थोड़ा सा बिजी लाइफ है ना, वो थोड़ा बिजी शेड्यूल है सर, तो ऑनलाइन के माध्यम से अब कनेक्टिविटी होती है, उतना ज्यादा तो नहीं टाइम दे पाते, बट सर जब भी सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर।
0: सही बात है। देखिए, जब प्यार होता है तो आदमी वक्त

0: तो निकाल ही लेता है, जहाँ चाहे वहाँ हमें सुन सकते हैं। और मोबाइल में आप जरा सा भी हमें सर्च करेंगे तो आकाशवाणी शुरू आपके लिए उपलब्ध रहेगा, और प्रसारण का समय भी पहले से काफी बढ़ गया है।
1: और सर मेरा ये कितना अच्छा लग है कि उस टाइम पे आप मेरे फेवरेट आरजे हुआ करते थे और आज आपसे बात हो रही है सर।
0: आपका प्यार है, आपका बड़प्पन है। देखिए, हमारे श्रोताओं की बदौलत ही हम में वो उत्साह रहता है, हम नई ऊर्जा के साथ और आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। और 20 साल बाद एक फिल्म हुआ करती थी और 20 साल बाद आज आपसे हमारा मिलना हो रहा है इस ध्वनि तरंगों की ताल पर, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: योगेश जी, कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: सर मैं मूवी है बातों बातों में और उसका ये गाना है कि कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो डालेंगे।
0: वाह, बहुत अच्छी बात, अच्छा संदेश देने वाला गीत है वो आपने सुना है, और हमारे श्रोताओं तक ये गीत पहुंचेगा तो उनके मन को भी भाएगा। योगेश जी, फिर से फोन कीजिएगा एक अंतराल के बाद, हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज आपको हम धन्यवाद देते हैं।
1: थैंक यू सर, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर।
0: शुक्रिया।

0: कार्यक्रम। हेलो चूरू।
1: हेलो शुरू, कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है सर। बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं कौशल शर्मा पत्रकार बोल रहा हूँ।
0: कौशल जी, स्वागत है। हमारे नए नए श्रोता जुड़ते हैं और आज आपने वक्त निकाला है आकाशवाणी चूरू के लिए। रेडियो सुनते हैं या टाइम कम मिलता है
1: रेडियो
0: आपको?
1: निरंतर सुनता हूँ, लेकिन जब समय मिलता है तो
0: जी
1: कुछ प्रोग्राम आजकल फैसिलिटियां ऐसी मिल गई मोबाइल में कि आप पीछे के प्रोग्राम भी सुन सकते हैं,
0: सही
1: तो बड़ा
0: बात
1: ही
0: है।
1: रोचक प्रोग्राम है आज। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने पहला फोन मिलाया और पहले फोन में मेरा फोन लग गया, क्योंकि
0: देखिए बहुत अच्छी एक
1: आपकी श्रोताओं की लिस्ट बड़ी लंबी है, न जाने लोग कितने ट्राई कर रहे होंगे और मेरा नंबर लग गया सर।
0: ये तो बहुत किस्मत वाली बात है। देखिए दूर दूर तक हमारे श्रोता आजकल हमें सुनते हैं। हमारे पास अलग अलग प्रांतों से फोन आते हैं कौशल भाई, और इस बीच आपने हमें याद करके फोन मिलाया है, तो ये हम ये मानेंगे कि आपका प्यार ही हमें इस कड़ी से कड़ी
1: बिल्कुल,
0: जोड़ रहा है।
1: शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया, सब आपका शुक्रिया।
0: कौशल भाई कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: ये तो बहुत सुनना है मेरे को कि सब

0: कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी सच है दुनिया वालों कि हम है नाड़ी।
1: तो देखिए आप तो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और मैं मानता हूँ कि एक पत्रकार के कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, तो अनाड़ी जैसी बात तो हम नहीं मान सकते आपके साथ।
0: क्योंकि दुनिया मानती है सर, आप नहीं मानते सर क्या है।
1: अच्छा, अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया रहता है और कई
0: लोग अनाड़ी समझते हैं जब इंकलाब लेके आता है कोई पत्रकार
1: जी,
0: तो बड़ी उम्मीदों के साथ निकलता है बाहर, जो कैमरा घुमाता है, जो वो कलम उठाता है, तो ये सोचता है कि कुछ लोगों का हम भला कर सके।
1: सही बात।
0: और जब हम भला करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, वाच करते हैं, फॉलो करते हैं खबरों को, तब कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें अनाड़ी बता देते हैं।
1: देखिए
0: तो
1: कौशल भाई,
0: देखिए
1: कौशल भाई, कई बार क्या होता है कि हम किसी काम की तह तक जाने के लिए अगर अनाड़ी भी बनकर रहें तो फायदा ही है ना, एक नई चीज
0: हाँ
1: हमें।
0: मसला कहाँ है सर, अगर ऑर्डिनरी हो जाता है वो सारी चीजें जब काम अच्छा होता हो।
1: बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा, खास तौर पर आपने हमारे लिए समय निकाला और ये गीत भी आपने बहुत अच्छा पसंद किया है। कौशल भाई फोन करने के लिए शुक्रिया और ये गीत आप तक पहुंचा
0: आपका
1: रहे
0: भी
1: हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया कुंज बिहारी जी, ऐसे ही नवाचार करते रहें, शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
1: थैंक यू, थैंक यू। सब कुछ

0: हेलो।
1: नमस्कार सर
0: नमस्कार जी, कार्यक्रम हेलो शोरूम में आपका स्वागत है।
1: जी धन्यवाद सर।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गांव डेर तहसील जिला पाटन गुजरात से रहता हूँ, अहमदाबाद धीरज रबारी बात कर रहा हूँ। एम छो
0: बहुत बढ़िया, मजे में छे।
1: मैंने गुजराती में सर पूछा, धन्यवाद
0: सर। देखिए, गुजराती तो मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं आती, लेकिन एक जो बात आपने पूछी वो आपका पूछने का तरीका अच्छा लगा, और मैंने भी मेरे अंदाज में आपको उसका
1: जवाब
0: रिप्लाई
1: दिया,
0: करना।
1: उत्तर दिया।
0: क्या करते हैं धीरज भाई?
1: मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और समय मिलने पर आकाशवाणी से जुड़ता हूँ।

0: आपने वीडियो जो हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले
1: जी,
0: तो फिर लगा कि चलो आकाशवाणी शुरू फोन के जरिए से चले जाते हैं तो बहुत अच्छा लगा।
1: कितनी देर से आप ट्राई कर रहे थे?
0: सर देखा जाए तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, अभी एक बार ट्राई किया और अभी ट्राई किया तो लमसम 2 मिनट में लग गया।
1: धीरज भाई, आकाशवाणी चूरू का कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जो आपको अच्छा लगता है?
0: सर ज्यादातर मैं फोन इन कार्यक्रम सुनता हूँ, क्योंकि फोन इन कार्यक्रम में हमारी जो श्रोता बंधु होते हैं वो कई अच्छी जानकारी देते हैं और वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, धार्मिक स्थल है, तो उसमें हमारे भारत भर के श्रोताओं की जो भी जानकारी हो आपके फोन इन के जरिए से हमें मिल जाती है, तो फोन इन से ज्यादा जुड़ता हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए, फोन तो 10-12 ही मिलते हैं लेकिन सुनने वाले हजारों लाखों हमारे श्रोता हैं और आपने फोन मिलाया। धीरज भाई, कौन सा गीत सुनेंगे आप?
0: गाना सुनना है पंख होती तो उड़ाती रे, पहरा तुमका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, सुनवा रहे आपको आपकी पसंद का ये गाना।

0: कार्यक्रम हेलो चुरू।
1: हेलो,
0: हाँ जी स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं?
1: राम राम सर जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सुरेश गगनेजा, जलालाबाद वेस्ट पंजाब से जी।
0: सुरेश भाई स्वागत है, आज के इस कार्यक्रम में अंतिम फोन है आपका।
1: जी बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: तो कितनी देर से ट्राई चल रही थी आपकी?
1: जी 3 बजे से लगा हुआ था, पहले मैं खाना भी खा रहा था, साथ में आपको फोन भी कर रहा था।
0: अच्छा,
1: लेकिन अभी खाना 10 मिनट हो गए तो उसके बाद मैं थोड़ी तेजी कर दी फोन मिलाने में।
0: एक फोन से मिलाते हैं या कई हमारे श्रोता कहते हैं कि हम दो दो तीन तीन फोन से मिलाते हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं तो एक से मिलाता हूँ, लेकिन कुछ श्रोता हैं जो दो दो तीन तीन से मिलाते हैं।
0: अगर आप सच्चे दिल से चाहेंगे मिलना तो मुलाकात जरूर होती है। ये जो
1: बिल्कुल
0: हमारी कुदरत है, जो कायनात है, वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए और हमारे जो तार है वो जोड़ देती है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल जी।
0: गगनेजा जी, क्या खास चल रहा है इन दिनों? कई दिनों के बाद बात हो रही है आपसे।
1: जी बिल्कुल, मेरा ख्याल 6 महीने के बाद बात हो रही है जी।
0: जी क्या कुछ खास बताएंगे?
1: बस जी खेती का काम करता हूँ तो व्यस्त हूँ, सीजन में धान की रोपाई हो रही है जी।
0: अच्छा,
1: तो काम बहुत ज्यादा है, अभी तो घर में हूँ, खाना खाया है, अभी शाम को जाएंगे 6 बजे, क्योंकि गर्मी बहुत है, गर्मी में कम ही निकलता हूँ
0: जी। जी, और आपने देखिए अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए समय निकाला, फोन मिलाया, इतनी अच्छी बात की, बहुत अच्छा लगा। सुरेश भाई कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: गीत सुना दें, फिल्म है बैजू बावरा का, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द प्रेम मेरे नाले।
0: वाह, बहुत अच्छी पसंद है, फोन करने के लिए शुक्रिया। सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम हेलो चूरू। आज के कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी श्रोताओं को बधाई और उनसे आग्रह कि आप अब कम से कम 2 महीने तक हमें फोन ना करें, ताकि नए जो श्रोता है या जो श्रोता हमसे जुड़ने की भरसक कोशिश करते हैं लेकिन लाइन व्यस्त होने के कारण वो हमें फोन नहीं लगा पाते। तो ऐसे श्रोताओं के लिए आप थोड़ी सी जगह छोड़िएगा और अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा। फिलहाल हम आपको बताते चले, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग मिला गुलजारी लाल मीणा का। कार्यक्रम में सूत्रधार स्वर कुंज बिहारी बिरमेवाला और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता निरंजन कुमार शर्मा।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो चूरू। कार्यक्रम के सूत्रधार थे कुंज बिहारी बिरमीवाला। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं और अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार। इन समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।